0: टोरंटो तैयार हो जाओ, सबसे ज्यादा इंतजार करने वाली फैमिली एंटरटेनमेंट नाइट इनाम घर कनाडा 28 जून को, जिसमें शामिल हैं मजेदार डिनर, दिलचस्प गेम, बड़े इनाम और लाइव कॉन्सर्ट। टिकट सिर्फ $25, 10 जून के बाद $39। बुकिंग के लिए अभी कॉल कीजिए 416-710-6777, e-transfer inamgharcanada@gmail.com।
1: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में। Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर। चरगा, लाहौरी फिश, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम चॉप्स, अफगानी टिक्का, नेहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो, Barbecue Tonight Restaurant, 9052680088, इट्स 9052680088, हाईवे 10 और डंडास के इंटरसेक्शन में सिसागा। सिटी ऑफ ब्रामटन शहरियों को 7 जून दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक गेज पार्क ब्रामटन में ईद की खुशियों में शामिल होने की दावत देती है। इस फैमिली फ्रेंडली तकरीब में बच्चों के लिए फ्री एक्टिविटीज, लाइव कल्चरल परफॉर्मेंसेज, दिलचस्प खेल और हलाल फूड के स्टॉल्स होंगे। मेहमानों से गुजारिश है कि वो मकामी तंजीमों की सपोर्ट के लिए नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स या नए अनरैप्ड खिलौने लेकर आएं। मजीद मालूमात के लिए brampton.ca/ईद पर लॉगिन हों।

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
4: हाँ हाँ, Brampton TV and Appliances, जहाँ special sale चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
3: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
4: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
3: दैट्स वंडरफुल।
4: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
3: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
4: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट brampton appliances.ca।
5: विशाल त्रिवेदी, वही जाना पहचाना नाम, लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो स्पेशलिस्ट। अब विशाल से ही लीजिए गारंटीड कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, इनकम रिप्लेस insurance, super visa insurance, travel insurance, visitors to Canada insurance. Compare with Vishal and get the best possible discounts on visitors and super visa insurance. Call Vishal Trivedi at 647-767-9852. That's 647-767-9852. Vishal Trivedi.
6: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही, तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपने सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 647-271-4147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं, लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 647-271-4147। क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं? तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। For booking information, call 905-514-7877. वही जायका, वही लज़त और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
7: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM स्टूडियोज़ में रबते के नंबर 416-593-0003। बाज़ुकात मैं कुछ ख़बरें पढ़ता हूँ, मुझे उसकी समझ नहीं आती कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये ख़बर क्यों है, लेकिन बहरहाल उसमें तजस्सुस ज़रूर बरकर रहता है और किसी न किसी हवाले से लोग उस पर या तो मुस्करा देते हैं या कोई ना कोई कमेंट कर देते हैं। पाकिस्तान में इदारा शुमारियात ने बताया कि मुल्क भर में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात की जानिब से गधों, भैंसों, बकरियों, भेड़ों और ऊँटों और दीगर मवेशियों की तादाद जारी की गई है। अब तमाम इसमें मवेशियों के नाम हैं, लेकिन जो सुर्खी बनी है हेडलाइन, वो गधों के हवाले से। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में गधों, भैंसों, बकरियों, भेड़ों, ऊँटों और दीगर मवेशियों की तादाद में गुज़श्ता एक साल के दौरान नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गधों की तादाद में 1,13,000 का इजाफा हुआ है। अब इनकी मजमू तादाद 60,47,000 से बढ़कर 61,60,000 हो गई है। भैंसों की तादाद में 14,17,000 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब भैंसों की तादाद 4,76,88,000 से बढ़कर 4,91,05,000 तक पहुंच गई है। भेड़ों की तादाद में भी 3,92,000 का इजाफा है। भेड़ों की तादाद 3,31,19,000 से बढ़कर 3,35,11,000 हो गई है। अगर बकरियों की तादाद की बात करें तो 24,22,000 हजार का इसमें इजाफा हुआ है। अब इनकी तादाद 8,93,93,000 से बढ़कर 9,18,15,000 हो गई है। दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क भर में ऊंटों की तादाद में 16,000 का इजाफा हुआ है। अब ऊंटों की तादाद 11,77,000 से बढ़कर 11,93,000 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में घोड़ों की तादाद में 3,000, खच्चरों की तादाद में 4,000 का इजाफा हुआ है। घोड़ों की तादाद 3,86,000 और खच्चरों की तादाद 2,21,000 हो गई है। इदारा शुमारियत के मुताबिक गुज़श्ता एक साल में मुल्क भर में मवेशियों की तादाद में 22,49,000 का इजाफा हुआ है, जबकि मवेशियों की कुल तादाद 5,97,11,000 से बढ़कर 6,19,60,000 हो गई है। अगर मुल्क में 25 करोड़ इंसान बसते हैं तो साथ ही तकरीबन 6 करोड़ के करीब मवेशी भी बसते हैं। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

0: since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of Leading Edge Mortgage Experts, 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
2: बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेस। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल, जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग, 905-839-0002। बटकड़ाही, जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता।
3: SSR ऑटो सर्विस, 921 पेप एवेन्यू, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टिमोर। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज। इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782, 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस, 921 पेपे।
4: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Our students are up number 416-593-0003. Pakistan, Australia की क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच मंगल को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया पहला वनडे 5 विकेट से जीत लिया था। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और 44.1 ओवर्स में 200 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। पाकिस्तान ने 201 रन का दफ 43वें ओवर्स में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 94 गेंदों पर 69 रन की पारी खेली, जबकि गाजी गौरी 65 रन के साथ नुमाया रहे। साफजदा फरहान ने 28, मां सदाकत ने 8 और सलमान अलियागा ने 6 रन बनाए। अरफात मिन्हास ने 18 और दसवंत 1 रन के साथ नाकाबले शिकस्त रहे। इरफात मिन्हास ने अपने पहले ही वनडे में 5 विकेटें हासिल की और पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए जिन्होंने अपने डेब्यू पर वनडे में 5 विकेटें हासिल की हैं। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में अब 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूं।
2: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
3: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के तावन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861।
1: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। हमारे स्टूडियोज़ में रब्ते के नंबर 416-593-0003। बिलाल जमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं। खुश आमदीद कहेंगे बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल साहब, गिलगित में सियासी मैदान जो है वो सजने को है। इसी वीकेंड में वहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं। तमाम सियासी जमातों के लीडरान इलेक्शन कम्पेन के लिए भी वहाँ पे मौजूद हैं और सर्वेज भी किए जा रहे हैं। अच्छा, अब कुछ डिफरेंट किस्म के सर्वे हैं। मैं डिफरेंट सर्वे देख रहा था। एक में कहा कि जी PTI की लीड है, कन्फर्म लीड है। एक ने कहा कि 8 सीटें जो हैं नून लीग को कन्फर्म है उनकी। इस तरह से पीपल्स पार्टी की भी सीटें, 31 टोटल सीटें हैं। तो अब क्या है, सिस्टम भी अपना जोर लगाने में मसरूफ़ है, तो क्या होगा? जमहूरियत की जीत होगी, सिस्टम की जीत होगी, जनवन इंतखाबात होंगे, कैसा आपको लगता है?
4: देखिए, मुल्क में इंतखाबात जनवन इंतखाबात जो है वह ख्वाब बनकर रह गए हैं और ऐसा नहीं है। देखिए, हम मुख्तलिफ किस्म के मुदाखलत की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पे जिस जमात को, जिस सिस्टम को जब फायदा पहुंच रहा होता है तो सब मतलब ये उसी सिस्टम का हिस्सा बन के जो है ना, वो आपको याद होगा कि जो 2013 के इंतखाबात थे तो जरदारी साहब ने उनको आरओस का इलेक्शन कहा था। यही 2018 के जो इलेक्शन थे उनको मुस्लिम लीग नून ने RTS का जो है ना वो इलेक्शन कहा था। और फिर हमने देखा कि 2024 का जो इलेक्शन था वो फॉर्म 45 और 47 का इलेक्शन जो है ना वो कहलाया। तो सिस्टम जो है वो अपने नाम बदलता रहता है। कभी वो फॉर्म्स की सूरत में सामने आता है, कभी वो RTS की सूरत में सामने आता है, कभी वो आरओस की सूरत में जो है ना वो सामने आता है। लेकिन बहरहाल जो अवाम का असल एक जो एसेंस है जमहूरियत का, ठीक है कि हमारे यहाँ पे जमहूरियत मैं समझता हूँ कि उतनी सूटेबल भी जो है ना वो नहीं है, मेजोरिटी नहीं है हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर, सियासतदानों के अंदर, तो वो मतलब है कि वो भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इतना सूटेबल नहीं है। ये एक अलग मतलब है कि डिबेट है जिसके ऊपर हम मतलब वो कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो एहसास है जमहूरियत का कि आप लोगों को मतलब है कि वो दें, लोगों को शऊर दें, लोगों को एक जो है ना वो एनवायरमेंट ऑफिस है जो है ना वो प्रोवाइड करें।

0: प्रसिद्ध थोड़ा सा किया जाता है कि सर्वे करके आप कहने की हिंट जो है ना वो दिया जाता है, वो इसलिए किया जाता है, मैंने पहले भी अर्थ किया था कि बातों का नब्ज जो है ना पढ़ने के लिए भी किया जाता है कि वहां पे लोगों की जो है ना मतलब कि नब्ज क्या है, लोग जो है वहां पे क्या चाह रहे हैं, फिर उस हिसाब से फिर सीटों की जो है ना वो डिवीजन की जाती है। तो अब जो है ना वो वहां पे पीपल्स पार्टी भी अपना जोर लगा रही है, मुस्लिम लीग नून भी जोर लगा रही है। अमूमन होता ऐसे ही है कि जिसकी सेंटर के अंदर गवर्नमेंट होती है, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और जो पहले फाटा के एरिया थे, वहीं वहां पे जो हुकूमतें बनती थी वो ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ना वो फॉलो करती हैं, क्योंकि
1: जी
0: आपको बहुत सारी स्कीमें चाहिए होती हैं, आपको बहुत सारे काम निकलवाने होते हैं। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग यही पिच कर रही है वहां पे इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी, कि आप अगर अपने मतलब के मसाइल हल चाहते हैं, आप जो है ना वो अपने डेवलपमेंट चाहते हैं, तो बाहर हुकूमत जो है वो इस मामले में आपको ज्यादा सपोर्ट कर सकती है। तो देखें
1: सही
0: ये 7 जून को क्या
1: क्या
0: रिजल्ट
1: होता है।
0: निकलता है।
1: अच्छा, बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शगर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि फार्म 45 आप संभाल लें, 47 को बंदोबस्त मैं कर लूँगा। तो क्या ये इशारा उनका है कि हुकूमत को फिर फार्म 47 की हुकूमत कह रहे हैं वो, अगर इस तरह की बात है तो?
0: नहीं देखिए, वो कहते हैं ना कि जो है ना वो जानते हैं, वो शायद मशहूर फिल्म है थ्री इडियट्स, उसका डायलॉग है कि जो है ना वो जानते सब हैं बोलता कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ना मतलब बिलावल भुट्टो ने भी जो है ना वो देखें इसका जिक्र करके तो शायद इसी बात को जो है ना वो एक्सेप्ट किया है। लेकिन बात ये है कि मैंने सब पहले कहा ना कि आप कुछ सिस्टम जब आपको फेवर कर रहा होता है तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आप लोगों के इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर तमाम जमातें जो है ना वो मतलब देखिए वो चाहती हैं कि जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो और उनका जो उम्मीदवार है वो जीते, वो सामने जो है ना वो आए। तो इसलिए जो है ना वो वहां पे फिर हकीकतें जो है ना वो खुलती हैं, इस तरह के बयान सामने आते हैं। लेकिन बिलावल का एक और प्रॉब्लम भी है कि बिलावल वहां पे अपनी लेगेसी भी लेकर गए हैं। वो कहते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी, और वहां पे उन्होंने भुट्टो का पूरा जो है ना वो एक आप कह लें गर्दान जो है उसकी वो उन्होंने वहां पे पड़ी है। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि जी कराची के ये जो इस्लामाबाद के जो बाबू हैं इनको नहीं, बल्कि हम जो है ना वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो अपनी किस्मत का फैसला खुद करें। यही सेम वो जो मतलब एक पैटर्न है गुफ्तगू का, ये 2024 के इलेक्शन में भी था। ये 2024 के इलेक्शन में सिंध के लोगों को जो है ना वो यही बात कही जाती थी और ये कहा जाता था कि जी ये जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं इनको कुछ पता नहीं है और ये जो पॉलिसीज हैं वो हम सिंध की पॉलिसीज जो है वो सिंध के अंदर बैठ के बनाएंगे, कराची की पॉलिसी कराची में बैठ के बनाएंगे। लेकिन क्या कर लिया आपने उसके बाद? कोई एहतजाज नहीं, कोई कुछ नहीं। आप खुद जो है ना पीपल्स पार्टी उस सिस्टम का हिस्सा बनी, खुद उसी हुकूमत को जो है ना वो सपोर्ट की और आज वही बाबू जो है वो बैठ के सारे पॉलिसीज बना रहे हैं और उसको जो है ना वो कंट्रोल कर रहे हैं।
1: सही
0: तो ये सियासी बयान में खाते लोग भी जो है
1: सही
0: ना आवाम भी अब काफी हद तक जो है ना वो इन बातों को समझते हैं और अब देखते हैं कि आवाम इन इन झूठे दावों और वादों के ऊपर जो
1: क्या
0: है वो किस
1: कहती है।
0: तरीके से रिएक्ट करते हैं।
1: अच्छा, पीटीआई के पार्लिमानी इजलास था जो केपी का, उसमें गैर हाजिर अरकान असम्बली की वज़ीरा से मुलाकात हुई है, राबता हुआ है, उन्होंने इजलास से गैर हाजिर रहने की वजाहत भी कर दी है। पार्टी में बगावत की बात कर रहे थे वो तो शायद इस तरह से नहीं है, लेकिन अब क्यों मतलब इतने लोग नहीं आए और अब आके जो उन्होंने कहा कि नहीं हम ये मसला था, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सारे लोग ही मतलब काफ़ी हद तादाद में लोग गैर हाजिर हों उसके बाद अपनी कोई वजाहत कर दें? तो उसके पीछे क्या कोई सेटलमेंट हो गई है और क्या वज़ीरा सुहेल अफरीदी को हटाने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं? पार्टी में सब अच्छा है या इत्तेफाकन यही मामला था?
0: नहीं, सही कहा आपने कि देखें कोई ना कोई जो है ना वो रीजन होती है। ऐसा नहीं होता कि देखें ना ये पार्टियों के इजलास फौजी मरकजी बुलाए जाते हैं, इनके पीछे प्लानिंग होती है, रबते होते हैं और वजाहतें पहले दी जाती हैं। जब आप इजलास में नहीं आ सकते होते, आप नहीं अवेलेबल होते, आप नहीं पहुंच सकते और किसको नहीं पता होता, जो जो पार्लियामेंट लीडर होते हैं, जो वजीर आला है, वजीर आला का सेक्रेटरी होगा, उनकी पूरी टीम होगी, रबते में होती है, पता होता है कि जो है ना वो कौन अवेलेबल है कौन नहीं है, कौन शहर के अंदर है कौन शहर से बाहर है, कोई मुल्क के अंदर है मुल्क से बाहर है, किसकी क्या मजबूरी है, कोई बीमार है, कोई नाराज है, जिस तरह मतलब के सीएम जो साबिक सीएम है अली अमीन जंडापुर, और सबको पता है कि उन्होंने नहीं आना था, वो किसी भी एक्टिविटी के अंदर जाना वो शामिल नहीं हो रहे, तो वो नाराज है और उन्हीं के साथ एक ग्रुप है पूरा लोगों का जो मतलब है आपको पता है कि जी वो उनके साथ है, तो वो भी नाराज है, वो भी जो है ना वो शामिल नहीं होंगे। आप जितनी मर्जी जो है ना वो जाते दें, वो ऊपर ऊपर से जारी बात है पार्टी का भी प्रेशर होता है। अब जो सीएम है इस वक्त सुहेल अफरीदी, वो इमरान खान साहब के नॉमिनेटेड है, सब जानते हैं इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया हुआ है और अलीमा खान भी मतलब उनकी मतलब फेवर में है। तो इसलिए मतलब कि खुल के कोई नहीं बोलता, लेकिन अंदर खाते जो है वो प्रेशर बहुत ज्यादा है और तब्दीली बिल्कुल जो है ना वो मतलब कि चाहते हैं तब्दीली सेंस के अंदर नहीं, लेकिन एक ग्रुप है जो पूरा मतलब
1: हुकूमत ही चेंज करना
0: लगाता है।
1: चाहते हैं।

0: मतलब रीजन ही आना बेसिकली, वो उसका रीजन ये होती है कि आप चाहते होते हैं कि ऐसा बंदा हो जो हमारी फेवर के अंदर हो, हम अपने काम निकलवाएं। बाजू का आप गरीबन सीएम के पास पावर होती है, फंड सीएम के पास है, प्यारा सीएम के पास है, और वो नहीं मतलब है कि मतलब अपने लोगों को या कुछ सीएम या लोग इस तरह नवाजने वाले नहीं होते, तो वो फिर जो है ना वो जो पार्टी के अंदर जो कुछ ग्रुप्स होते हैं, आप याद होगा मतलब 2018 के अगर हम चले जाएं तो जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी दोनों का क्या ग्रुप था, यही था ना कि हमारे बंदे ज्यादा आए ताकि हम पावर में होके तो हम इमरान खान को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकें।
1: तालिबान अमीर की टीडीपी को वार्निंग, तालिबान रवैये में ठोस तब्दीली नहीं आई है, दहशतगर्द नेटवर्क्स में अफगानों की भर्ती अभी जारी है, पाकिस्तान ने इस हवाले से गैर मुतमईन है, उसने इस हवाले से ये राय है उनकी। तो क्या तालिबान हुकूमत सिर्फ मुतमईन करने के लिए ऐसे बयान दे रही है, संजीदगी से पाकिस्तान को राजी करने की कोशिश है? एक
0: जी देखिए, ये वहाँ पे वो पहले भी इसको बयान कर चुके हैं कि हमारा खुद इख्तियार नहीं है, पाकिस्तान इसको जो है वो डिफरेंट समझता है। जब अभी ये वफादारी का जो बयान दिया गया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो तालिबान है उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान यही समझता है कि दो चीजें हो सकती हैं, या ये कि आपके वो कंट्रोल में नहीं है, अगर नहीं है तो आप हमें बताएं, हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं, और अगर आपके कंट्रोल में है तो फिर आप क्यों उनको जो है ना वो रोकते नहीं है, या क्यों आप उनको मना नहीं करते कि ये काम जो है ना वो आपने नहीं करना। पाकिस्तान का बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि तालिबान की जो हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है कि जब वो हुकूमत बनी थी इमरान खान साहब का दौर था, पाकिस्तान ने सबसे पहले उनको रिकग्नाइज किया, ताल्लुकात भी जो है ना वो अच्छे थे, वो जो क्या कहते हैं अपना फैज अमीर की चाय है वो सबको मतलब कि वो बोले इमेजेस याद है, लेकिन उसके बाद फिर पॉलिटी के अंदर एकदम से जो है ना वो शिफ्ट आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या मामला थे, वो सारी बात है वो तो इनसाइडर्स जो है ना वो जानते होंगे कि क्या जो है ना कहाँ मामला खराब होने शुरू हुए। मौलाना फजल रहमान तो आज भी कहते हैं कि आप हमें इस्तेमाल करें, हम आज भी आपके ताल्लुकात जो है ना वो ठीक कर सकते हैं, क्यों नहीं उसको इस्तेमाल किया जाता, क्यों दोबारा हम ताल्लुकात जो है ना वो ठीक नहीं करना चाहते। और मौलाना बड़े क्लियर है मतलब बहुत तनकीद करते हैं कि आप ना अटैक करें, आप ना वो करें, बाहर मतलब कि जैसा मैंने कहा ना कि हम क्योंकि उतने वेल जो है ना वो कनेक्टेड नहीं है कि हमें अंदाजा हो सके कि कब ये मामला हुआ, लेकिन बाहर उधर का सारा शिफ्ट जो है वो भारत की तरफ हुआ। फिर हमने देखा कि अमीर मुत्तकी हो, अमीर जो है ना वो भारत भी गए, भारत के जो जयशंकर हैं वो अफगानिस्तान गए, ताल्लुकात जो है ना वापस में बढ़े, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर ये हमले जो है ना वो वहां से होने शुरू हुए। तो हमारा बड़ा क्लियर जो है ना वो स्टांस है इसके ऊपर कि या आपकी हुकूमत जो है वो ये वो कहते हैं ना कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो ये वाला मामला जो है ना वो तालिबान के साथ चल रहा है, और वो अभी तक खुद भी जो है ना वो क्लियर नहीं है कि वो किसके साथ है।
1: ओके, अच्छा जनाब, सोमालिया में जो पाकिस्तानी कह लीजिए कि यरगमाल पाकिस्तान को वीडियो आया है उनका कि जी हमारी मदद ना की तो हम मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकते, यासिर खान दीगर पाकिस्तानी ने हुकूमत से अपनी ज़िंदगियों की भीख भी मांगी है, तो क्या हुकूमत किसी सतह पर इन यरगमालियों के लिए कुछ कर रही है, या इनके जान की कोई कीमत नहीं, या पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकती, क्यों कई जगह ऐसी होती हैं उस पर आप कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब क्या करेंगे वहाँ जाके, या तो अगर वो पैसे मांग रहे हैं तो पैसे दे सकती है गवर्नमेंट वहाँ पर?
0: जी जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, और देखिए आप बहुत सारे लोगों के जो है ना वो जाने छुड़वाते हैं मुख्य ममालिक के अंदर जेलों से पैसे दे के, तो हुकूमत ममालिक अंदर बने हुए यही काम करते हैं, आप देखें उनकी डिमांड क्या है, क्या मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं,
1: पैसा ही अगर है तो पैसा दें उनको, ठीक है।
0: आप मतलब इंगेजमेंट देखें जो है ना वो आपके मुल्क के आपकी जिम्मेदारी है शहरियों की जो है ना वो प्रोटेक्शन, एक जान भी जो है ना वो कीमती है, और अगर पैसों की पैसे देकर भी वो जान बचाई जा सकती
1: तो जरूर बचानी चाहिए,
0: तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी जो है अपने भाई को बचाने के लिए
1: इतना हक तो है,
0: अगर हुकूमत
1: बिल्कुल
0: जो है ना वो नहीं दे सकती तो मतलब किसी ना किसी लेवल के ऊपर एंगेजमेंट की खबर, इसके ऊपर एक्शन, कहीं ना कहीं वजाहत की क्या मामला चल रहे हैं, कहाँ मामला अच्छे हुए हैं,
1: पूरे
0: भी बात जो है वो
1: बिल्कुल ठीक है। और चले कॉल ले लेते हैं, 416-593-0003 हमारे रबते के नंबर है, फर्स्ट कॉलर है 5415 5415, चॉइस साहब आप ऑनलाइन बात कीजिए।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम
2: सलाम।
1: जी वालेकुम सलाम जनाब।
2: जनाब पटेल साहब की हालत ठीक
1: है? बिस्मिल्लाह बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर।
2: अच्छा पटेल साहब गल्ले वे के जेड़े गलगित बिल्टिस्तान दे इलेक्शन ने चलो जो रिजल्ट आएगा पता लगेगा हारने वाली पार्टी जी आखेगी भाई
1: कदम हो गई है। हाँ जी बिल्कुल
2: जितना आखे कि इनकलाब लै आंदा तो लिहाजा पट्टी साहब तुम पता ही है जो भी साडे कौम का मिजाज है क्योंकि असा ना कद किसी ने हार मनी है ना किसी ने जितते जित के भी लोगों कभी एनालिसिस नहीं किया कि अभी जीते भी सही है मकली है वनू तो एक साइड देते करने पट्टी साहब मेन गल देखो जी तालिबान वाली गल कर रहे थोड़ा आखिर पट्टी साहब गल ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਐਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੱਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਦਾਨ ਫੜੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਖੇਡ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤਹਿ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੰਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਤੁਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਇਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਲੈਣਾ
3: ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋ ਕਾ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ, ਕਿ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੋ,
1: ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੋ ਖੈਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਤਾ ਕਿਆ ਹੁਆ,
3: ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਪੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਤਾ ਇਨ ਪਾਰਟੀਓ ਕੋ, ਤੋ ਯੇ ਵਹਾਂ ਜਾ ਕਰ ਜੋ ਪੜਾਵ ਡਾਲ ਦੀਏ ਇਨ ਲੋਗੋ ਨੇ, ਬਾਤ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਮੇਂ ਐਰਰਸ ਹੋਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਂਗੀ, ਮਗਰ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਛੁਪਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਛੁਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਅਗਰ ਆਪ
1: ਸਰ ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਹੋਤਾ ਉਨਕੋ ਸਾਰੋਂ ਕੋ ਸਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਬਾਤ ਹੀ ਕਿਆ ਥੀ,
3: ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮਤ ਲੜੇ ਫਿਰ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ,
1: ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਫਿਰ, ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਥੋੜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਥੋੜੀ ਹੋਤਾ।
3: ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਚਲੇ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਕੋ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਇਸਲਾਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਇਸਲਾਹ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਤੀ ਹੈ,
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
3: ਵਕਤ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋ ਖੁਦ ਉਨਮੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਸਮ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਏਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਫੇਵਰ ਮੇਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਤੇ, ਏਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਪੜਾਵ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਅਬ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਕਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ KPK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਵਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਕੀ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਵੋ ਪਠਾਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਬਾਇਲੀ,
1: ਠੀਕ
3: ਹੈ, ਯੇ ਤਾਂ ਤਰਦਦ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜਾ ਕੰਫਲਿਕਟ,
1: ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 9779 ਜਨਾਬ ਨੂਰਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜੀ, ਬਾਤ ਕੀਜੀਏ। 7997
4: कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया सर।
4: अभी बात जनाब ये है कि कितने भी इलेक्शन कर ले, लोग वैसे डेमोक्रेसी लाने के लिए पाकिस्तान में अभी तक लोग ना तैयार है, ना पॉलिटिकल जिनको हम कहते हैं वो अपने लोगों को ट्रेन भी नहीं करते, वो इश्यूज से भी नहीं बात करते हैं। अभी PTI को देख ले, वो एक ही बात कर रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दे, ठीक है एक वो लीडर है उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो ये क्यों नहीं कहते कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंसाफ लाए, ये बात नहीं करते।
1: सही,
4: इमरान खान को छोड़ दे उसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, बात करें एक नेशन के लिए,
1: ठीक। ऑलराइट सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अक्रम साहब 5794 चौधरी अक्रम साहब आप ऑन एयर हैं सर, बात कीजिए।
5: अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम सर।
5: देखिए भट्टी साहब, ये गिल बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के लोग बड़े सियाने चलाक हैं, उनको पता है कि भाई हमारे जो भी काम होने हैं, जिस तरह बिलाल साहब ने फरमाया कि अगर फॉर एग्जाम्पल उधर वो PTI की गवर्नमेंट अगर आ जाती है तो उनको क्या होगा कि वो लड़ेंगे, पागल है वो, काम करवाने होते हैं। तो ये वहां कोई रिगिंग नहीं होती, प्री रिगिंग इसी को ही कहते हैं, और ये सब सामने आ जाता है। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वहां 5,000 वोटों पे लोग 5,000 पे एनालिसिस होता है, तो 5,000 वोटों में बटी साहब 45-47 इस तरह के मामला तो नहीं होते, ये पहले ही होता है और पता पहले ही चल जाता है। अब बात जो करने वाली है, देखिए बिलावल साहब ने जो बातें की है ना भाई, ये उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ की है। तो भाई सबसे पहले उन्होंने जो बगावत अगर कह ले की है, तो पहले भाई फिर अपने अब्बा जान से बात कर लेना। अब्बा जान ने तो कल भी कहा है ना, मैं नहीं कह रहा कि भाई हम सब मिलके एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, क्या कहा कि नहीं उन्होंने?
1: जी, जी सही।
5: तो बट्टी साहब बात ये है, बिलावल भी जो है ना वो अभी नापोहता किस्म का, वो भी जब मुंह से बातें करता है ना तो उससे पता नहीं होता कि मैं क्या गुफ्तगू कर रहा हूँ, या उसकी वो मैच्योरिटी का भी वो लेवल नहीं है। अब हम कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी को गुस्सा लगे, बात बड़ी बट्टी साहब सिंपल है। उसका रोना धोना भी ये साबित कर रहा है कि वहां मुस्लिम लीग नून या सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ही आने के चांसेस हैं। बाकी आ जाएगा रिजल्ट तो उसमें जो भी होगा, तो बाकी पीटीआई वाली बात तो बट्टी साहब के बाद पीटीए तो पागल लोग हैं कि पीटीआई आगे फिर वो यानी हम धरना कर रहे हैं, हम छोड़ देंगे, हम ये करेंगे। देखिए बात बड़ी सीधी साधी है, वैसे सोशल मीडिया पे आप जीते हुए हैं, वो आपको मुबारक हो, वो कोई मामला तो नहीं होते। तो बाकी रह गई बात भट्टी साहब दूसरी छोटी सी, चले अब देखे जो बंदे बातें करते थे कि नवाज शरीफ जी ओ जी चुप है फला है, अब वो भी तो जा रहे हैं, कल वो जो बातचीत करेंगे या जलसे से खिताब करेंगे तो फिर कोई क्लैरिटी सामने आएगी कि उन्होंने भी क्या गुफ्तगु की है।
1: थैंक यू, बहुत
5: ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच साहब।
1: सलमान कुरैशी साहब आप बात करना चाहेंगे? सलमान कुरैशी साहब आप ऑन एयर है, बात कीजिए सलमान कुरैशी साहब। अच्छा आप नहीं शायद सुन रहे हैं। 6121 आप बात करना चाहेंगे? 6121 6121। अच्छा और सैयद बुखारी साहब आप बात करना चाहेंगे? सैयद बुखारी साहब चलिए बिलाल साहब आप क्लोज कीजिएगा, फिर उसके बाद अजान का वक्त हो गया। जी बिलाल
0: जी, जी देखें मैं ना थोड़ा सा हमारे कॉलर ने बात की थी उससे मैं डिसएग्री करता हूँ। उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के अंदर कोई मानता नहीं है, लेकिन आप देखें कि जब 2024 के इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर बहुत सारे रहनुमा ऐसे थे जिन्होंने अपनी हार को तस्लीम किया, ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि सियासत से अपने आप को अलग किया, और ये मेजोरिटी थी उन सियासतदानों की। अगर आप देखें खुर्रम दस्तगीर को देखें, आप जहांगीर तरीन को देखें, आप को देखें, आप जावेद लतीफ को जो है ना वो देखें, तो इस तरह और नाम भी है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम इसी तरीके से जो है वो चलता है, कुछ लोग बगावत भी करते हैं और अच्छी बात है कि सिस्टम से बगावत नहीं होगी, इस तरह के लोग सामने नहीं आएंगे और सियासतदान खुद मिलकर फैसला नहीं करेंगे कि
1: तो फिर कौन करेगा। बिल्कुल ठीक,
0: वो नहीं करना तो फिर ही बेहतरी है।
1: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और लिसनर्स यहीं टॉक शो ख़त्म करेंगे और टोरंटो के गिरदनों में क्योंकि अजान मगरिब है, तो आइए पहले अजान सुनेंगे फिर क्लोज करेंगे। स्टे ट्यून,
6: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में, रबते के नंबर 4165930003। टोरंटो और इसके गिरदनवा में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी निज़ाम औक़ात के मुताबिक मगरिब की नमाज अदा करें। टोरंटो और इसके गिरदनवा में अजान मगरिब। Allah

0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
2: Kaheen mat jaiye.
0: Don't touch that dial.
2: Hum bas yo dale hain.
0: After a short break and a few messages from our sponsors. Stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
3: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर अते उन्हां दी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
3: आप सुन रहे CMR at 9, Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.

0: $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9059461000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 4167571000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
4: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: आप सुन रहे हैं CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम provide करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील. कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Another Don clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स it deserves.
5: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Another Don clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर अते उन्हां दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट

0: बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।
1: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ It deserves.
5: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Cashpoint, one stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

Tie your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: Another Don clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Don Platinum, the better grease getter.
0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Another Don Clean with the Don Dux.
2: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Don Platinum, the better grease getter.
4: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
5: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: Listen to us. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का

0: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
1: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
0: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
2: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
0: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
3: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
0: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यू, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 और बाहर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट अबाउट 25 टुडे, मिनिमम बीइंग 13, टुमारो 29, Thursday 29 and Friday also 29 to 30 degrees Celsius expected. Weekend ko barish bhi batai ja rahi hai, so it will get a bit cooler than the temperatures that we are going to see in the next 3 days or so. Studio ka number 416-593-0055. Sawa bara ki headlines bilkul hamari ready hai aur ye pyara sa geet meri jung film se jo ki humne line up kiya tha aapke liye, jisse humne din ki shuruaat ki hai aur zindagi bhi ek jung hai aur is jung ko ladna hamara फ़र्ज, काम, धर्म, करम सब कुछ है, बिकॉज इसके अलावा हमारे पास शायद कोई और ऑप्शन होता भी नहीं है। सो ऑल वी हैव टू डू और शुड डू इज कीप फाइटिंग। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन, 905-450-2828, 11 AM to 7 PM। देर ओपन 7 days a week और सुल्तान जी ने अमेजिंग डील्स लगाई हुई हैं जिनका फ़ायदा लीजिए। अब अगर आपने टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री सेक्शन से कुछ भी परचेज करना है, बंडल पैकेजेस में और भी ज़्यादा डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं। एंड द सेगमेंट इज़ ऑल्सो ब्रॉट यू बाई राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, जो कि 30+ लोकेशन से 100% प्योर वेजिटेरियन फूड सर्व करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी मिठाइयाँ होती हैं, 100% प्योर वेजिटेरियन, राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। एंड काफ़ी खबरें हैं आप तक जो आज हम पहुँचाएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग पीस ऑफ न्यूज़ भी है जहाँ पर चाइना और ताइवान की एक ओपन वॉर चलता है, जहाँ पर यू कैन कॉल इट अ कोल्ड वॉर, एंड और ताइवान पर पूरा कब्जा करने के फिराक में ऑलवेज चाइना रहता है, उसे अपनी ही टेरिटरी भी बताता है। तो अब ताइवान ने भी कुछ रोबोट डॉग्स की टेस्टिंग की है जो कि वो गार्ड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर मूविंग, यू नो, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मोटरसाइकिलिस्ट क्रिटिकली इंजर हुआ है कलिजन में विद एन एसयूवी एट विंस्टन चर्चिल एंड एग्लिंगटन इन मिसिसागा। एंड रिसेंटली अ लॉट ऑफ दीज मोटरसाइकिलिस्ट वाले एक्सीडेंट्स हम रिपोर्ट कर रहे हैं, खासकर इस जैसे ही स्प्रिंग समर वाला वेदर शुरू होता है, देन ऑल काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स जो हैं सामने आती हैं। और ब्रैम्पटन में तो अक्सर ये देखा ही जाता है कि यू नो कुछ मोटरसाइकिलिस्ट जो है मैं नोटिस करता हूँ, दे ड्राइव लाइक और दे राइड द बाइक जस्ट लाइक बैक होम किया जाता है, क्रिस क्रॉस जिगजैगिंग करते हैं, दे डोंट गो इन देयर लेन, और जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि उनका टू व्हीलर है दे हैव द राइट टू गो इन बिटवीन कार्स, जो कि नॉर्थ अमेरिका में, कैनेडा में अलाउड नहीं है। यू कैन गेट अ टिकट फॉर जिगजैगिंग एंड गोइंग इन बिटवीन कार्स जस्ट टू गेट अहेड व्हाइल देयर इज अ रेड लाइट। सो इस तरह की हरकतें जो है ब्रैम्पटन में तो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। बाइकर्स को इन्जॉय करना चाहिए इफ दिस इज़ वॉट दे लाइक, यू नो, राइडिंग द मोटरसाइकिल, लेकिन फिर भी वो प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। डजन्स ऑफ टिकट्स फॉर कैनेडाज ओपनिंग मैच स्टिल अवेलेबल एंड फीफा की काफ़ी धूम है, लेकिन जो टिकटों के प्राइसेस हैं अनबिलीवेबल हैं। न्यूयॉर्क के मेयर जो है ममदानी, उन्होंने 1000 टिकटें जो है पब्लिक को पहुंच, क्योंकि एवरी प्लेस जहां पर फीफा का वर्ल्ड कप होता है सिटी को 1000 टिकटें मिलती हैं। कैनेडा में टोरंटो वैनकूवर को मिली है नहीं मिली है आई हैव नो आइडिया बिकॉज नोबडी हैज एनी आइडिया व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, बट न्यूयॉर्क सिटी में जो 1000 टिकटें मिली थी, न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने उसे ऑक्शन करने, लॉटरी सिस्टम में देने का ऐलान किया है। सो एवरीबडी बायज $50 में परचेज करते हैं और जिसका नाम लॉटरी में निकला, इट्स ऑलमोस्ट लाइक बाइंग अ लॉटरी टिकट फॉर $50, और अगर आपका नाम निकल गया तो 1000 लकी लोगों को टिकट्स जो है फ्री मिलेंगी। सो इट्स अमेजिंग, $50 इसमें पैसे भी रेज हो रहे हैं सिटी, न्यूयॉर्क सिटी के लिए, और जो फीफा के लवर्स हैं दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड वॉच द गेम। बट जहाँ से भी अगर आप कहीं से मार्केट प्लेस या अलग अलग ऑनलाइन जगहों से फीफा की टिकटें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, बी वेरी केयरफुल बिकॉज लॉट ऑफ crazy stuff is also happening और tickets के prices जो हैं unbelievable हैं। Hotel prices have also are being reported going up, literally like double हो रहे हैं prices, जो मैं कल देख रहा था, चाहे वो 5-star hotels हैं या फिर the second slot 3-star 3.5-star के hotels हैं, everywhere you know the prices are going up in GTA during the World Cup, so you know make sure that whatever you purchase उसे ध्यान से क्रॉस चेक कर लें. विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. 12:15 की हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव. चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम. हर जर्नी को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज. ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर. Wayne's Auto Group इज ऑलवेज देयर. आज ही विजिट करें waynesautogroup.com.
2: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी. फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक. बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी. 6478631940 6478631940.
3: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 to $6,000 US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters. 289-748-4040 289-748-4040.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
6: Jab

0: Special. Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: She is right, चाहे बच्चे हो या बड़े, wear smart glasses every day। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
4: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।

Welcome back, friends. The headlines are brought to you by Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Homeo Care, McVean Dental Care, Cholebature.ca, Brampton TV and Appliances, and Win Lifetime Trading. Shuru karte hain taza tareen headlines. Taiwan ne robot dogs ki testing ki hai, जो कि साउथ चाइना सी आइलैंड्स को गार्ड करेंगे. यूएस से 30 इंडियंस को डिपोर्ट किया जाएगा फॉर वर्किंग इलीगली एज ट्रक ड्राइवर्स. लेबनान का कहना है कि हिजबुल्ला ने यूएस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया फॉर द म्यूचुअल हॉल्ट टू अटैक्स विद इजराइल. फ्लोरिडा ने चैट जीपीटी सेफ्टी रिस्क को लेकर ओपन एआई को सू किया है और कहा इट्स इंडेंजरिंग आवर किड्स. पीस टॉक क्लिफ हैंगर जारी है. ईरान ने न्यू फ्रंट्स पर वॉर की धमकी दी. 120 मीटर इटालियन केव में स्टक व्यक्ति को 53 रेस्क्यूअर्स ने सेव किया. रशिया ने एविएशन फ्यूल एक्सपोर्ट्स को बैन किया एज यूक्रेन टारगेट्स रिफाइनरीज. और ईरान ने यूएस स्टॉक्स को सस्पेंड किया ओवर सीजफायर वायलेशंस ऑन ऑल फ्रंट्स. यूनाइटेड नेशन काउंसिल ने इमरजेंसी मीट की तैयारी की. दूसरी ओर इसराइल ऑर्डर्स स्ट्राइक ऑन बेरूत. चाइनीज फर्म ने टेक्नोलॉजी डेवलप की दैट यूजेस एआई टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्रोटेस्टर्स. एंड 70 शिप्स ने डार्क पैसेज का इस्तेमाल किया टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. यूएस ने की मदद. दूसरी ओर लोकल समाचारों में रिटर्न टू ऑफिस ऑर्डर ने कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल केस को स्पार्क किया. टोरंटो के वेस्ट एंड में टू टीटीसी बसेस के कोलिजन से 13 लोग पहुंचे अस्पताल. और मिसागा में हुए मोटरसाइकिल कोलिजन से मैन सफर्स लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. हैमिल्टन मैन हु वैनिश्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फाउंड डेड. पुलिस ने होमसाइड इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है. मेल डेड आफ्टर ड्राइवर ऑफ द व्हीकल हिट्स पार्क्ड ट्रक इन इटोबिको. भारतीय समाचारों में आरसीबी सेलिब्रेशंस के दौरान फैंस ने बसेस को डैमेज किया. 18 अरेस्टेड इन आंध्र प्रदेश हैदराबाद. और पंजाब गवर्नमेंट स्कीम के अंडर कैशलेस हार्ट ट्रीटमेंट से महिला रिकवर हुई. यूएपीए अक्यूज्ड को कस्टडी में 5 साल बाद मिली बेल. आईपीएल बेटिंग रैकेट को फाइनल्स के दौरान गुवाहाटी में बस्ट किया गया. 8 लोगों को हिरासत में लिया गया. त्विशा शर्मा मामले में पुलिस ने फोरेंसिक डिटेल्स को फिर से चेक किया. और गौतम अडानी ने 17 स्टार्टअप फाउंडर्स से मीटिंग के बाद कहा इकोसिस्टम्स बिल्डिंग नेशंस. जम्मू कश्मीर में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले महबूबा मुफ्ती पार्टी लीडर को हिरासत में लिया गया. हेल्थ प्रोक्योरमेंट एजेंसी में दिल्ली गवर्नमेंट ने 40 से ज़्यादा स्टाफ को रीशफल किया. IPS ऑफिसर ने चिंता जताई ओवर इंडियंस कॉन्डक्ट अब्रॉड और कहा ब्रिंग्स अ बैड नेम टू द कंट्री. जोधपुर में एक टॉय ट्रेन से गिरने के बाद 5 साल की लड़की की मौत हुई. ट्रेन्स की व्हील्स के नीचे आकर हुई मौत. इंडिया ने तैयारी की टू बाय 114 मोर रफेल फाइटर्स. एयर चीफ 4-डे विजिट पर पहुंचे फ्रांस. और सेंटर ने रजिस्ट्रेशन रूल्स को रिवाइज किया फॉर फॉरनर्स स्टेइंग बियॉन्ड 180 डेज. पाकिस्तान के खबरों से मिडल ईस्ट क्राइसिस के बीच पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से गुहार लगाई टू मेक मीडिएशन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स. पाकिस्तान ने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और डिप्लोमेसी को बैक किया. पाकिस्तान भर में एयर कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करने के मकसद से अथॉरिटीज ने इनएक्टिव एयरपोर्ट्स को रिवाइव करने का ऐलान किया. कराची के PAA हेडक्वार्टर्स में यह फैसला लिया गया. डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट को रिसेंटली रिस्टोर किया गया आफ्टर ईयर्स ऑफ इनएक्टिविटी. डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने वार्न किया अगेंस्ट बिलीविंग तालिबान रिजीम्स मिक्स सिग्नल्स. बोले मिलिटेंट्स के लिए सपोर्ट बिल्कुल इंटैक्ट है. आसिफ ने तालिबान रिजीम से गुहार लगाई टू एंड द सपोर्ट फॉर TTP कंप्लीटली. और यह भी कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है टू काउंटर एनी फ्यूचर इंडियन अग्रेशन. ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने इस्लामाबाद से गुजारिश की टू कंटिन्यू एफर्ट्स टू हेल्प फैसिलिटेट डीएस्केलेशन इन द रीजन. इशाक डर ने चिंता जताई ओवर इसराइल सीजफायर वायलेशन इन लेबनान. फीफा और AFC ने अर्जेंट रिविजन की मांग की है इन रिगार्ड्स टू PFF कॉन्स्टिट्यूशन. पाकिस्तान इटली ने अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए टू वेव वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स. बायलैटरल और मल्टीलैटरल फोरम्स पर कोऑपरेशन को रिव्यू किया गया. नवाज शरीफ पहुंचे गिलगिट पर फॉर कैंपेन विजिट. 5,000 पंजाब पुलिस पर्सनल टू बी डिप्लॉयड. स्पोर्ट्स जगत से आरसीबी की बैक टू बैक आईपीएल टाइटल्स के बाद फॉरेन मीडिया ने रिएक्ट करते हुए कहा विराट इज किंग. फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन एंड्रू फ्लिंटॉफ टेक्स अ बिग कोचिंग रोल इन ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर बिग बैश लीग. आरसीबी स्टार बैटर टिम डेविड को सस्पेंड किया गया फ्रॉम आईपीएल गेम डे आफ्टर विनिंग 2026 आईपीएल टाइटल. अक्यूमुलेटेड 2 डीमेरिट पॉइंट्स फॉर ब्रीचिंग लेवल 1 ऑफ द आईपीएल कोड ऑफ कॉन्डक्ट. 10th ओवर के दौरान टिम डेविड ने अंपायर की ओर आइस बैग को अग्रेसिवली फेंका था.
दूसरी ओर बॉलीवुड की खबरों से एक्टर बॉबी डियोल का कहना है कि नो वन कैन प्ले माय डैड धर्मेंद्र ऑन स्क्रीन, नाइदर मी नॉर माय ब्रदर सनी डियोल। बॉबी डियोल ने करियर स्लम के दौरान अल्कोहल एडिक्शन का खुलासा भी किया और कहा, वाइफ तानिया सेव्ड माय लाइफ। अक्षय कुमार की नई फिल्म वेलकम टू द जंगल ने सॉन्ग ऊंचा लंबा कद को रिक्रिएट किया है, मगर इंटरनेट ने उसे रिजेक्ट करते हुए कहा, दिशा पाटनी कैंट रेप्लिकेट What Katrina Kaif did. Drishyam 3 shooting finish hui. Delhi High Court ne Varun Dhawan ke personality rights ko protect kiya from fake endorsements and deepfakes. Aur veteran singer Suman Kalyanpuri ko cremate kiya gaya in Mumbai with full state honors. Publicist ne reveal kiya ki Imran Hashmi ki serial killer image was part of a planned PR campaign. Ye thi South Asian Unlimited Radio ki taza Tareen Headline. Studio ka number 416-593-0055, 416-593-0055 studio ka number hai jis par aap kar sakte hain call. Aur aapki request hai, ye actually request mujhe kal aayi thi, I just didn't have enough time to play the song. Ye ek aisi film hai jahan par showman Subhash Ghai do legends ko ek saath lekar aaye the, Dilip Kumar and Raj Kumar, aur in dono ko एक छत तले लाना, इन दोनों को एक फिल्म में लाना, इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग इम्पॉसिबल टास्क जो कि शोमैन सिर्फ और सिर्फ सुभाष घई हासिल कर पाए. सौदागर वॉज अ ह्यूज हिट एट द बॉक्स ऑफिस. दो नए फेसेस भी नज़र आए थे, मनीषा कोइराला एंड विवेक मिश्रान. एंड लेकिन इस फिल्म का गीत इमली का बूटा फिल्माया ऑन राजकुमार एंड दिलीप कुमार. इन्जॉय, आई विल बी बैक.

0: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
4: अच्छी याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
3: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
5: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। choleBhature.ca, कॉल 905-458-2448.
6: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
0: जय श्री राम।
2: 10 मीटर, बस इन्ना को याद रखो, तुहानू उपरों लंघ दियां बिजली दियां पावर लाइन्स तो घट्टो घट 3 मीटर दूर रहना चाहिदा है। ओंटारियो विच बिजली तो होण वाली मौतां दा एक प्रमुख कारण पावर लाइन्स हन, अते बिना छुए भी तुहाडी मौत दा कारण बन सकदियां हन। जेकर तुसीं बाहर काम कर रहे हो तां उपरों लंघ दियां पावर लाइन्स वल ध्यान दिओ। अपने आप नूं अते अपने उपकरणां नूं इन्हां तों घट्टो घट 3 मीटर दूर रखो। इलैक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों सुनेहा, esasafe.com/stop-look-live ते होर जाणो।
3: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: Real estate is not easy business, और जो easy नहीं उसे easy बनाते हैं Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley। घर खरीदना या फिर घर बेचना, first time home buyers या फिर investors, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल, ये है Raj Joshi, Realtor बेमिसाल। Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086, 647-866-1086। Raj Joshi, सिर्फ नाम ही काफी है।
5: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं, करते हैं थोड़ी सी रियल एस्टेट की बातचीत। राज जी, आपका स्वागत है।
6: सर जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको और प्यारे लिसनर्स को, वेरी गुड आफ्टरनून
5: जी आपको।
6: सर जी, आज हम ऑरेंजविल से स्लाइटली नॉर्थ शेलबर्न के एरिए की इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पर मूव इन रेडी होम्स हैं और कमाल की बात है कि प्राइस सिर्फ 548,000 से स्टार्टिंग है। इमीडिएट क्लोजिंग अवेलेबल है। एंजॉय अ ब्रांड न्यू होम विदाउट द कंस्ट्रक्शन वेट। अप्रोक्सीमेटली 1530 स्क्वायर फुट से लेकर 1615 स्क्वायर फुट के ये टाउन होम्स हैं, जिसमें वन कार गैराज और साथ में ड्राइववे में वन कार पार्किंग भी अवेलेबल है। अमेनिटीज आर ऑल अराउंड। लोकेशन है फोर्थ लाइन और हाईवे 89 से जस्ट स्लाइटली नॉर्थ। ऑल अमेनिटीज आर अराउंड। हमें कॉन्टेक्ट कर लें इसकी अगर कोई डिटेल्स चाहते हैं आप। अगेन, यूनिट 1530 स्क्वायर फुट से लेकर 1615 स्क्वायर फुट के अवेलेबल है और साथ ही साथ 3 बेडरूम के टाउन्स वाटर डाउन में ये कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी है। न्यू होम कंस्ट्रक्शन हो रही है, मॉडल होम तैयार हैं, स्टैक टाउन्स हैं ये। और अगर आप विजिट करना चाहते हैं, हम आपके लिए सेटअप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इनकी फिनिशेस, लेआउट, डिजाइन डिटेल्स और इस कंप्लीटेड होम को देखकर आप फैसला कर सकते हैं क्या आपके लिए ये लेआउट काम करता है या नहीं। वाटर डाउन की ये अपॉर्चुनिटी अगर आप अवेल करना चाहते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर लें। बहुत सारी ऐसी जबरदस्त प्री कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज ऑल अराउंड अवेलेबल हैं सरी जी, सदर्न ओंटारियो। बहुत सारे डिफरेंट बिल्डर्स के साथ हम काम कर रहे हैं। एक और बता दूं, जबरदस्त कलेक्शन ऑफ 10 सिंगल डिटैच होम्स हैं एलिस्टन में और ये मिड 900 से डीटैच होम स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें तो हमें कॉल कर लें। बहुत सारी ऐसी एक्सक्लूसिव जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं और अगर आप सीरियस हैं और आपके पास कोई सवाल है या आप कंफ्यूजन में हैं और आप डायरेक्शन की तलाश में हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर लें। वी वॉन्ट बी योर हेल्पिंग हैंड इन योर जर्नी इन रियल एस्टेट। और हमेशा साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो लिसनर्स के लिए एक जबरदस्त पैकेज रहता है हमारी ओर से और साथ ही साथ अगर आप लिस्ट करना चाहते हैं तो फ्री होम एवैल्यूएशन इज ऑलवेज अवेलेबल। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून, थैंक यू सो मच
5: जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज जी। 6478661086 राज जोशी जी का डायरेक्ट नंबर है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं या फर्स्ट टाइम होम बायर हैं या फिर सेलर हैं। 6478661086 स्पेशल इंसेंटिव भी आपके लिए अवेलेबल हैं। 6478661086 बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
6: शुक्रिया
5: जी। एंड बाहर का तापमान हो चुका है 24 डिग्री सेल्सियस। एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में आपकी रिक्वेस्ट लाइनअप कर दी है, राम लक्ष्मण का म्यूजिक, देव कोहली के लिरिक्स फ्रॉम द मूवी हम आपके हैं कौन। लेकिन उससे पहले कॉलर को ले लेते हैं, आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड।
7: कैसे हैं आप?
5: जी जी ठीक, आप सुनाइए।
7: आज का कोई टॉपिक रखा है या नहीं है? कुछ भी नहीं
5: जी, नहीं कोई टॉपिक तो है नहीं, आप ही टॉपिक छेड़ दीजिए जो आप चाहते हैं बात करनी।
7: मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये जंग का तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा।
5: जी बिल्कुल,
7: तो अभी ये ऑयल कुछ नीचे आया है, वो गवर्नमेंट का इंसेंटिव जो शुरू हुआ था वो अभी हुआ है या अभी भी उस पर कुछ वर्कआउट हो रहा है?
5: नहीं, और गैस प्राइसेस जो है कल ऊपर जा रहे हैं,
7: ऊपर जा रहे हैं।
5: यस दे आर गोइंग अप आई बिलीव बाय 8 सेंट्स, और अगर आप यू नो 8 सेंट्स अ लीटर ज्यादा नहीं देना चाहते तो अभी का अभी गैस भर लीजिए आज। पिछले हफ्ते से न्यूज थोड़ी पॉजिटिव थी, वी गॉट अ बिट लकी, लेकिन आई थिंक अगेन इट्स अ चेकमेट सिचुएशन बिटवीन यूएस एंड
7: अभी भी 92 है सर, क्या प्रॉब्लम हो गया? 92 अंडर 100 है, तो ऊपर जाने का कोई सेंस तो ऐसे बनता नहीं, पता नहीं। एनीवे काफी होशियार लोग बैठे हुए कर रहे हैं काम
5: जी,
7: तो बहरहाल आप मैं तो ये सफर करते रह गए। और मॉर्गेज की क्या सिचुएशन, एक जवाब मैं आपसे लेना चाह रहा था
5: जी।
7: जिसमें मॉर्गेज जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें लिखा होता है कि कहाँ होता है कि ये कंपनी 100 लेंडर से बात करके फिर आपको प्राइस को, ये 100 से बात कर सकते हैं किसी की मार्जिन मॉर्गेज लेने के लिए?
5: नहीं मतलब 100 कंपनी के साथ बात तो कर सकते हैं, बट समटाइम्स आई थिंक एक्सपीरियंस मॉर्गेज एजेंट के पास एक आइडिया होता है इतनी डील्स के बाद कि कौन से फाइल के लिए कौन सी लेंडर जो है सबसे बेस्ट साबित होगा फॉर देम। सो आई थिंक दे रियली डोंट हैव टू टॉक टू 100 ऑफ देम, और इवन इफ दे आर डीलिंग विद 40-50, सबके साथ बात करने की तो जरूरत नहीं होती, बट अंडर राइटर्स के साथ संपर्क में जरूर होते हैं मॉर्गेज एजेंट्स और ब्रोकर्स। सो आपको आइडिया सॉर्ट ऑफ होता है कि इस फाइल को किस लेंडर के पास लेके जाना चाहिए।
7: अभी जो सिचुएशन है ना रियल इस्टेट की, तो उसमें इस वक्त अगर कोई बिल्डर जो है ये ऑफर करे ओनली इंटरेस्ट चार्ज करे 3 साल तक या 4 साल तक, ठीक है, मॉर्गेज की पेमेंट में इंटरेस्ट चार्ज का अपना वेंडर टेक बैक या जो भी है, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी
5: जो
7: भी कोक में ना
5: जी,
7: ठीक है, उसमें मैं सिर्फ इंटरेस्ट पे करता था ना
5: जी,
7: 900-800 हजार डॉलर कुछ ऐसा करता था
5: जी।
7: उसके बाद 2 साल बाद मैंने उसको फ्लिप किया, कुछ पैसे भी बन गए थे
5: जी।
7: तो अभी जो एनवायरनमेंट है उसमें तो ये कर सकते, पता नहीं क्यों मुझे कोई ऑफर नजर नहीं आ रही है ऐसे, अगर किसी की हो किसी रियल एस्टेट वाले के पास, लाइक टू हियर दैट।
5: ठीक है जी, आप यू नो राज जोशी जी को कॉल कर सकते हैं, बट रियल एस्टेट से ज़्यादा आई थिंक यू प्रॉब्ली लुकिंग फॉर अ मॉर्गेज स्पेशलिस्ट। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं ऑलवेज ये कहता हूँ कि जहाँ पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे आपने 2-3 साल के लिए कहा, कहीं ना कहीं आप उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके हाथ से ना निकल जाए, कहीं ना कहीं आप एक्विटी की संभावना देख रहे हैं कि भाई व्हेन द मार्केट गेट्स गुड एक्विटी मेरी बन जाएगी एंड स्टफ लाइक दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे ये मैथ आपने खुद करना होता है कि डज इट इवन मेक सेंस टू पे इवन $900 अ मंथ फॉर 3 years जस्ट टू होल्ड ऑन टू दैट प्रॉपर्टी, दैट इज समथिंग।
7: प्रॉपर्टी होल्ड नहीं, आप उसमें मूव होते हैं, आप उसमें रहते हो।
5: आई नो, बट यू आर ट्राइंग टू जस्ट होल्ड ऑन टू इट and you're just paying interest, आपका principal तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। So I think it's a personal decision जो हर एक को लेना है अपने।
7: ऐसा product मुझे नजर नहीं आ रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, और कोई बात नहीं। Okay, thank
5: ठीक है जी, thank you, बहुत बहुत शुक्रिया। I think as मैं खुद mortgage करता हूँ, मैं कई बार ये चीज़ जो है मुझे लगता है कि हमें सबको अपनी पर्सनल स्थिति पता होती है, मतलब हमें ये पता है कि हमारी आमदनी इतनी है, खर्चा इतना है, तो सम ऑफ द डिसीजंस दैट आर टेकन, आप सिर्फ इसलिए वो डिसीजन ना लें बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं फॉर द टाइम बीइंग जो है ये बैंडेड लगा लूँगा और मैं बच जाऊँगा, बिकॉज इफ द वूंड इज डीप वो बैंडेड लगाने से ठीक नहीं होगा. इट्स समथिंग टू you know, ponder and maybe sit with a good mortgage specialist or jisko aap apni sthiti bataye aur kuch masla ya hal nikle. Chaliye, SP Balasubram ki Maniam ki awaaz mein ye pyara sa geet and Clear Optical by Varun Kanda, Brampton, Georgetown, do locations se serve karte hai. Eye exams ke liye doctors available 7 days a week. Enjoy the song. I'll be back.

0: राजधानी राजधानी राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info।
3: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
4: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।
3: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
4: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ AB ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ।
3: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ।
4: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਨੂੰ
3: 647-739-7710 6477398710। License number M200034504.
5: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek suneya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
6: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
7: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
8: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
9: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
8: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
9: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
8: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.

0: किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है, कहीं खो दिया कहीं पा लिया, कहीं रो लिया कहीं गा लिया, कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबान बेहिसाब है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM। एंड हमारे साथ अलका जी हैं, रितेश पुरी जी हैं फ्रॉम ब्रोकर यूनियन, एंड हर हफ्ते ये टीम ऑन एयर इसलिए आते हैं ट्यूसडे के दिन ताकि हमें बताएं कि भाई इंश्योरेंस के जो प्लसेस माइनसेस हैं, जो इंश्योरेंस की बारीकियाँ हैं। कई बार हम इंश्योरेंस लेकर बिल्कुल सो जाते हैं, मतलब वी आर इन दैट स्लीप मोड थिंकिंग दैट इंश्योरेंस ले ली है, अब मैं फुली प्रोटेक्टेड हूँ, मेरा परिवार प्रोटेक्टेड है। इट्स ओनली द टाइम व्हेन कोई इमरजेंसी होती है इस जब आंखें खुलती हैं कि ओ माय गॉड। सो वो ओ माय गॉड आप इस तरीके से ना कहें। उसके लिए पहले तो बात है कि अलका जी का नंबर नोट कर लें, 416-505-2735, 416-505-2735, एंड इस नंबर को नोट करके रखिए फॉर ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस दैट यू नीड इफ योर रिन्यूअल्स कमिंग अप, या कोई भी सिचुएशन होती है जहां पर आपने ऑब्वियसली शॉप अराउंड करना है, पर इतना ओवर शॉप अराउंड करने से कई बार आप अपना नुकसान कर लेते हैं। ये मैंने देखा है, मेरा पर्सनल मानना है कि शॉप अराउंड इज ओके बट डोंट जस्ट गो ओवर बोर्ड विद इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट टू मेक श्योर अबाउट हाउ दीज थिंग्स आर प्रोटेक्टिंग यू। अलका जी आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सनी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन द शो।
0: जी रितेश आपका भी स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच सनी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
0: सेम हियर ब्रदर, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू गाइस, एंड एक्सपर्ट्स के साथ बात करना और कुछ ना कुछ मेरे लिए भी नया पता चल जाता है। पहले ऐसे करते हैं, हॉट सीट पे अलका जी को डालते हैं और अलका जी से ही पूछ लेते हैं कि भाई अलका जी, व्हेन पीपल कॉल एन इंश्योरेंस ब्रोकर, व्हाई, व्हाट डू दे यूजुअली आस्क फॉर, द चीपेस्ट इंश्योरेंस और द बेस्ट कवरेज?
1: सनी, आई विल से 8 out of 10 कॉल्स हमेशा यही होती हैं कि कितने पैसे कम करवा दोगे। आई विल से इट इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, द वे दैट क्लाइंट सेज, राइट, कितने पैसे कम करवा दोगे। नो वन, देयर इज हार्डली एनीवन हु विल से कि आप मुझे कौन कौन सी कवरेजेस दे रहे हो, कैन यू एक्सप्लेन दैट? इट्स मोस्टली अबाउट मनी, एंड विच इज नॉट रॉन्ग, पैसे सब बचाना चाहते हैं, हमारी हार्ड अर्न्ड मनी है, एवरीवन वांट्स टू सेव, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू के थोड़े से पैसे बचाने के लिए कई बार आप अपना बहुत नुकसान करवा लेते हो। ओके, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल विच इज अ लेटेस्ट एग्जांपल। डे बिफोर यस्टरडे मेरे पास एक क्लाइंट आए हैं जिन्होंने, और जहां से इंश्योरेंस ली हुई है उनको $300 ईयर के लेस मिली है वो,
0: ठीक है,
1: बट अब उनको प्रॉब्लम क्या आई, कवरेजेस पूछ ही नहीं, राइट, बस इंश्योरेंस ली, एंड विच मोस्ट ऑफ द पीपल डू, राइट, तो इंश्योरेंस ले लिया, अब उनका एक्सीडेंट हो गया, अब रेंटल कवरेज चाहिए थी, एंड देन दैट्स द पॉइंट व्हेन दे केम टू नो कि उनके पास रेंटल कवरेज थी ही नहीं।
0: wow.
1: वो ऑप्शन निकाली गई थी उनको इंश्योरेंस कम देने के लिए, पैसे कम करने के लिए।
0: wow.
1: अब जब उन्होंने रेंटल कार ली है 2 weeks के लिए, सारा पैसा बराबर हो गया।
0: Wow, yeah, that's absolutely true. वो 300 जो बचाने की कोशिश की गई थी unknowingly या knowingly, उसकी भरपाई जो है फिर काफी महंगी पड़ जाती है। अलका जी,
1: जी बिल्कुल, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कवरेजेस जरूर जरूर पूछें कि मुझे कौन कौन सी कवरेजेस अवेलेबल हैं। मे बी नहीं जरूरत पड़े, मे बी जरूरत जब पड़ जाए तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 6505-2735 पर, एक बार आए, नॉलेज लें थोड़ी सी, पूछें कि कौन कौन सी कवरेजेस अवेलेबल हैं, क्या क्या मुझे कवरेजेस मिल सकती हैं, और किन कवरेजेस से मेरी इंश्योरेंस कम हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि कवरेजेस डलवाने से इंश्योरेंस बढ़ेगी, कई बार कम भी हो जाती है। विंटर टायर्स हैं आपके पास, आपकी गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स ज्यादा हैं, ऑल दीज थिंग्स कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स कि आपकी इंश्योरेंस कम भी हो सकती है।
0: बिल्कुल, अलका जी का नंबर 416-505-2735, 416-505-2735। अलका जी, अगला क्वेश्चन पूछने से पहले इसी क्वेश्चन में से एक छोटा सा क्वेश्चन निकल के बाहर आता है कि फर्ज किसका है। ब्रोकर का भी

0: फर्ज है एज वेल एज जो बंदा जो क्लाइंट है कस्टमर है उसका भी फर्ज बनता है कि इन चीजों के ऊपर गौर करना या शुड बी जस्ट लीव इट टू द ब्रोकर एंड से कि भाई तुमने मुझे क्यों नहीं बताया.
1: सनी बहुत अच्छा क्वेश्चन. दोनों की ड्यूटी बनती है बट एक ब्रोकर की ड्यूटी ज्यादा बनती है. आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक कस्टमर को तो देनी नहीं है. वर्ड ऑफ माउथ बाहर जाता है. अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें. सर्विस से ज्यादा नहीं आता है कस्टमर नहीं आता है क्लाइंट कोई बात नहीं. नॉलेज तो प्रोवाइड करें सो दैट लाइक आपको ये हो कि मैंने सारे ऑप्शन दिए थे बट इफ दैट पर्सन डजंट वॉन्ट टेक इट इट्स अप टू देम. बट अपना आपका हमेशा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट यू हैव टू गिव देम द होल नॉलेज.
0: बिल्कुल. एंड जिसके लिए सेगमेंट के बाद अलका जी और इनकी टीम के साथ संपर्क करें 416-505-2735 416-505-2735. दोस्तों मैं बता दूं वैसे अलका जी की आवाज़ बड़ी फेमिलियर भी आपको लग रही होगी बिकॉज एक अलग फ्रीक्वेंसी पर फॉर क्लोज टू अ डेकेड अमन जी एंड अलका जी की आवाज़ बड़ी दूर दूर तक गूंजती थी एंड दस का दम शो होता था आप सबको याद होगा. सो दैट इज़ ऑल्सो वेयर वी नो अलका जी फ्रॉम. एंड जहां पे अमन जी अमेजिंग फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे लिसनर्स को वहीं पर इंश्योरेंस नीड्स के लिए ऑलवेज रिमेंबर अलका जी एंड हर टीम 416-505-2735. अलका जी मेनी पीपल सिंपली पे देयर रिन्यूअल प्रीमियम और एंड दे मूव ऑन. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू रिव्यू योर इंश्योरेंस एवरी टाइम जब ये रिन्यूअल आता है इसे रिव्यू करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्यों लाजमी है.
1: वेरी गुड क्वेश्चन अगेन सनी. ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ. मेरे एक फैमिली फ्रेंड्स ही हैं उनको पता चला कि भी आई एम इनटू ऑटो अगेन तो उन्होंने मुझे बोला कि भी अलका मेरा रिन्यूअल आने वाला है कैन यू प्लीज चेक फ्रॉम द लास्ट गुड 15 years. उन्होंने देखा ही नहीं कि रिन्यूअल आ रहा है. अपने आप रिन्यू होती जा रही है हर साल पॉलिसी जाती जा रही है. दे डिडंट इवन बॉदर. एक कंपनी के साथ हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं. तो मैंने उन्हें बोला मैं क्या आपने कभी आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया है कि आपके पास ऑटो चेंजेस हैं आपके पास होम चेंजेस हैं घर में नए टेनेंट्स रखे हैं विच कैन अफेक्ट योर पॉलिसी. जब क्लेम आएगा इट विल डेफिनेटली अफेक्ट. आपने कभी उनको बताया आपने गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशंस करवाई हैं सेफ्टी फीचर्स लगवाए हैं कैमराज डलवाए हैं विंटर टायर्स डलवाए हैं. इंश्योरेंस कम हो जाती है उससे तो आप मुझे प्लीज अपनी पॉलिसी मेरे पास एक बार लाएं. आई जस्ट लाइक गो थ्रू इट बिफोर योर रिन्यूअल. जब मैंने उनकी पॉलिसी पढ़ी सनी यू वॉन्ट बिलीव जितना वो सिर्फ अपनी ऑटो का दे रहे थे अब मंथली $20 लेस में ऑटो एंड होम दोनों दे रहे हैं.
0: वाओ वाओ दोस्तों देखिए
1: सेव दिस मनी वे बैक लॉन्ग.
0: या एंड आई थिंक अक्सर हम इन चीज़ों को बड़ा लाइटली लेते हैं. ये एग्जांपल आपने बड़ा ज़बरदस्त दिया बिकॉज आई पर्सनली नो सम पीपल जो रिन्यूअल आता है बस यू नो दे जस्ट गो फॉर द फॉलोइंग ईयर एंड द फॉलोइंग ईयर. ये हमारा बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है अलका कि हम बताएं मतलब अपने ब्रोकर को कॉल करके. अगर आप मेरी ब्रोकर हैं तो इट इज़ ऑब्वियसली माई ड्यूटी टू लेट यू नो कि मेरे होम में क्या चेंजेस आए हैं मेरी गाड़ियों में क्या चेंजेस आए हैं क्या अलग अलग प्रोटेक्शन मैंने उनमें डाली है स्नो टायर्स डाले. ऑब्वियसली दैट इज माई ड्यूटी राइट.
1: जी डेफिनेटली. यूजली रिन्यूअल से पहले 1 or 2 months पहले वी ऑलवेज कॉल आर क्लाइंट्स. बट अगर उससे पहले कोई चेंजेस हुए यू नेवर नो क्लेम कब आ जाए. क्लेम 2 महीने रिन्यूअल से पहले ही नहीं आएगा उससे भी पहले आ सकता है. तो जब भी कोई घर या कार में चेंजेस हो अपने एजेंट को ऑटो इंश्योरेंस एजेंट को जरूर जरूर बताएं सो दैट दे कैन जस्ट पुट इट इन द रिकॉर्ड्स. गॉड फॉरबिड्स कोई क्लेम आता है तो देन वी हैव इट ऑन फाइल कि जी इन्होंने हमें चेंजेस पहले बताए थे.
0: जी एंड दोस्तों ये वो बात भी है जो अलका जी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है कि जैसे इंश्योरेंस इज अ बिजनेस दे आर लुकिंग आउट फॉर देमसेल्व्स दे आर प्रोटेक्टिंग यू बट एट द सेम टाइम यू हैव टू लुक आउट फॉर योरसेल्व्स. जो सस्ता खरीदेंगे फिर वो सस्ता होगा और फिर गॉड फॉरबिड अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है देन व्हाट डू यू डू. आई मीन आपको तो जवाब नो का मिल जाएगा. सो माइट एज वेल कोई भी इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर है इस सेगमेंट के बाद अलका जी और उनकी टीम से संपर्क करें 416-505-2735 पर. चलिए रितेश जी को हॉट सीट पे डालते हैं. कपल ऑफ क्वेश्चंस उनके लिए भी मेरे पास रेडी हैं. रितेश जी व्हेन पीपल हियर साइबर क्राइम दे ऑफ्टन थिंक ऑफ लार्ज कॉरपोरेशंस शुड स्मॉल बिजनेसेस बी कंसर्न टू. क्योंकि स्मॉल बिजनेस को लगता है कि भैया हमें तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं है.
2: बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने सनी जी। होता है क्या है कि लोगों को ज्यादातर लाइक केसेस में यही लगता है कि ये जो साइबर इंश्योरेंस चाहिए वो एक लार्ज कॉरपोरेशंस को ही चाहिए होते हैं, बट वो ये चीज भूल जाते हैं कि ये जो हैकर्स होते हैं इनके लिए स्मॉल बिजनेस को टारगेट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो एक आपको जेन्युइन ईमेल आता है और आप क्लिक कर लेते हो और आपका लैपटॉप का पूरा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और उसके बाद जो क्लाइंट आप पे एक्शन ले सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए जो ये साइबर इंश्योरेंस होती है ये आज के टाइम में फायर और थेफ्ट जितना नुकसान दे सकती है।
0: वाओ, समथिंग वी डोंट रियलाइज। अच्छा, एक हमारे लिसनर है, आखिरी सवाल लिसनर की तरफ से ही आपको पूछ लेते हैं कि कुछ बिजनेस ओनर्स ट्राई टू सेव मनी, जो कि हम सब चाहते हैं, बाय नॉट परचेजिंग द कमर्शियल जनरल लाइबिलिटी इंश्योरेंस। सवाल यह है कि व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस विदाउट द लाइबिलिटी कवरेज।
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये भी आपने। तो जनरली हमारा जो माइंडसेट होता है वो यही होता है कि आज तक हमारा कोई क्लेम तो आया नहीं है, तो आगे भी हमें ऐसे लाइबिलिटी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट पे कस्टमर आया, स्लिपरी फ्लोर थी और वो फिसल गया, और जो इंजरीज होती हैं वो सीरियस भी हो सकती हैं। अब उस केस में अगर आपके पास लाइबिलिटी इंश्योरेंस नहीं है तो आपको अपनी पॉकेट से उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, उसकी जो इनकम थी वो आपको पे करनी पड़ जाती है, और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं जो आपकी अपनी पॉकेट से जाएंगे। इसलिए बेटर होता है कि आप अपने सारे कवरेजेस को समझे, आप अपने ब्रोकर को कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि कौन कौन सी कवरेजेस आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फ्रॉम योर पॉकेट।
0: जी, एंड इन फैक्ट आई थिंक अलका जी और आप अग्री करेंगे कि कई बार किसी रेस्टोरेंट बिजनेस की जहां पे हम बात कर रहे हैं, या कोई भी बिजनेस होता है जहां पे देयर कुड बी अ वाटर स्पिल, कोई गिर जाए, तो नेग्लिजेंस पर सू होने का भी खतरा होता है।
2: बिल्कुल सनी जी, होता है, क्योंकि वो पूरी रेस्टोरेंट की ही ड्यूटी होती है
0: exactly.
2: कि जो भी उनका रेस्टोरेंट है वो वेल मेंटेन्ड और क्लाइंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो।
0: बिल्कुल, चलिए मैं आपका नंबर, अलका जी और पूरी टीम का नंबर दे देता हूं ताकि हमारे लिसनर्स जो हैं जल्द से जल्द उन्हें कॉन्टैक्ट करें। 416-505-2735 पर 416-505-2745, 416-505-2745 फॉर ऑटो, होम, कमर्शियल, एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस। कॉल अलका जी एंड हर टीम एंड गेट द नॉट ओनली द बेस्ट कंपेटिटिव रेट्स बट एट द सेम टाइम द बेस्ट सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली एंड योरसेल्फ। अलका जी, रितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच सनी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।
0: एक्सलेंट, सुपर, टेक केयर। 416-505-2735 is the number, 416-505-2735। साधना सरगम की आवाज में अलका जी और उनकी टीम की तरफ से ये प्यारा सा गीत रिक्वेस्ट किया है, इंजॉय करें सात समुंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग, 905-206-1008। आई विल बी राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव, चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हर जर्नी को बनाए खास। Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ, ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज, ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स, फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर। Wayne's Auto Group इज ऑलवेज देयर, आज ही विजिट करें waynesautogroup.com।
2: McQueen Dental Care, Dr. Rajgill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hain. Talk to Seerat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hain, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
7: एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर न थी कुछ सुबह की न शाम का भी ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। मां की कहानी थी, परियों का फसाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, आखिर क्यों हो गए हम इतने बड़े? इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था।
8: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे वन से। कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ 416-666-2745।
9: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहाँ गया वो बचपन का ज़माना? हम सब याद करते हैं क्योंकि जब बड़े होते हैं फिर जिम्मेदारियाँ होती हैं, हमसे उम्मीदें हो जाती हैं और अब हमारे बच्चे जो हैं वो आगे चलकर ये सोचेंगे जो अब हम सोच रहे हैं। बट दैट्स हाउ लाइफ इज़, यू नो, इट जस्ट एक सर्कल है और ये कुछ इसी तरीके से, यू नो, हो जाता है ख़त्म और इसी तरीके से फिर आगाज़ हो जाता है एक नई जनरेशन का। चलिए ऐसे करते हैं कि हमारे बहुत ही ज़बरदस्त लोकल डेवलपर बिल्डर अतीक खान साहब हमारे साथ हैं। एज़ ऑलवेज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स सदर्न अंटारियो में इंगेज रहे हैं सिंस 2000, ही इज़ बिन डूइंग ग्रेट वर्क। एक प्रोजेक्ट की जानकारी लेकर आए थे अतीक भाई लास्ट वीक, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। $60,000 इन्वेस्टमेंट फॉर 1 acre लैंड, इसको लेकर बातचीत करेंगे। एंड देन आई ऑल्सो हैव अनदर क्वेश्चन जो हमारे लिसनर की तरफ से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लिसनर ने पूछा है और देखते हैं हमारे एक्सपर्ट अतीक भाई का क्या होता है जवाब। 416-666-2745 416-666-2745 अतीक भाई का नंबर है। अतीक भाई आपका स्वागत है।
10: थैंक यू सो मच सनी साहब, आपको, आपके लिसनर्स को गुड आफ्टरनून।
9: गुड आफ्टरनून जी। पहले लिसनर का सवाल पूछूं या पहले अपना सवाल पूछूं?
10: सर आपने अपना काम करना है, डराना है मुझे, आप कहीं से भी डरा लें।
9: चलिए लिस्टनर का ही पूछ लेते हैं, क्योंकि सबसे जैसे कहते हैं सबसे बड़ा रुपया, वैसे ही सबसे बड़ी आवाम होती है जनता, जनार्दन है। तो जनता का सवाल पहले पूछ लेते हैं। हमारे लिस्टनर आपसे पूछ रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंसियर, ऑनेस्ट एंड सीरियस क्वेश्चन, कि जिस तरह से रियल एस्टेट की मार्केट चल रही है अतीक भाई, क्या इस ये जो लैंड वाली अपॉर्चुनिटी है, उनका पूछना है कि अगर वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ, क्या इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर रियल एस्टेट की मार्केट का लैंड अपॉर्चुनिटी प्रॉपर्टी पर भी पड़ता है इन अ नेगेटिव मैनर और नो?
10: सर क्वेश्चन तो अच्छा है, आई थिंक इसका आंसर सबके पास है और हर कोई चाहता है किसी और के मुंह से ये आंसर सुन ले।
9: एग्जैक्टली
10: अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, उनकी लैंग्वेज होती है प्लेबुक। प्लेबुक वो होती है जिसमें आप बैठ के गेम प्लान बताते हो कि आज का मैच हम कैसे खेलेंगे, पिच इतनी सूखी हुई है, घास इतनी बड़ी है। कहने का मतलब ये, वो प्लेबुक डिसाइड करती है कि आपका आज का मैच क्या होने वाला है। एग्री? सेम यही है रियल एस्टेट में, लैंड डेवलपमेंट की प्लेबुक ये बता रही है आज की तारीख में सबसे अच्छा है कि अपनी लैंड की जोनिंग चेंज कराओ, उस पर सर्विसेज लेकर आओ, उसकी डेंसिटी बढ़ाओ, उसका यूजेज बढ़ाओ और राइट अवे किसी और को सेल करके अपना पैसा डबल ट्रिपल करके बाहर आ जाओ। जब मार्केट चेंज होगी 2 साल 4 साल 5 साल बाद, उस वक्त आप बिल्ड करना। राइट नाउ बिल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से लैंड में पैसा बनाइए और लैंड अपनी वैल्यू नहीं गिराती है। मैं रिपीटेडली ये बात बता रहा हूं, सालों से काम कर रहा हूं, लैंड ग्रेजुअली बढ़ती ही गई है
9: जी। जिसके लिए इस सेगमेंट के बाद अतीक भाई से संपर्क कर लें। दोस्तों मैं तो आपका एक जेनेरिक तौर पे या जो ब्रीफ सा क्वेश्चन होता है वो पेश कर सकता हूं, बाकी उसके पीछे कितने और क्वेश्चंस हैं ये आपका काम है कि अतीक भाई से अपॉइंटमेंट बनाएं, जूम मीटिंग कर लें, वीडियो कॉलिंग कर लें, जाकर ऑफिस इनसे मुलाकात करें एंड आस्क ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव इन माइंड। नंबर है 416-666-2745। चलिए अगला सवाल अब मेरा है। पिछले हफ्ते आपने बात की थी $60,000 इन्वेस्टमेंट की फॉर 1 acre लैंड। मैं चाहूंगा कि इस पे आप थोड़ी सी और रोशनी डालें, बिकॉज ऑब्वियसली द लैंड दैट यू वर टॉकिंग अबाउट इज अ बिग बिग पीस ऑफ लैंड। मैं चाहूंगा ये थोड़ा सा आप हमें फिर से जो है थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको लेकर।
10: जरूर। तो सर वो लास्ट वीक मेरे लिए भी एक गेम चेंजर वीक बना था, क्योंकि आई थिंक जस्ट इन लास्ट वीक मे बी आई गॉट 100 फोन कॉल्स फ्रॉम different radio shows where I usually go.
9: Wow.
10: तो लगता यही है कि लोगों के पास छोटी अमाउंट पड़ी हुई है पार्क करने के लिए, कि उस पैसे को आप मल्टीप्लाई करें, ग्रोथ करें। तो ये प्रोजेक्ट 100% उन लोगों के लिए है कि जिनके पास 60,000 या उससे ऊपर का पैसा पड़ा हुआ है। अब 60,000 मुझे 3 इंस्टॉलमेंट में चाहिए, तो आपने राइट अवे नहीं पे करना, आप 20,000 की 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट देंगे। प्रोजेक्ट क्या है, 100 एकड़ की लैंड रिसीवरशिप में चली गई है और कोर्ट के पास से ऑर्डर इश्यू हो गए हैं, अब उस लैंड को सेल करना है और डिफॉल्टर्स के पैसे देने हैं। ये तो हो गया फ्रेमवर्क के डील क्या है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि 10 मिलियन की लैंड आपको मिल रही है 4 या 5 मिलियन के अंदर, तो आप क्या रिएक्ट करोगे उसके ऊपर? आप यही कहोगे कि लग नहीं रहा इतनी अच्छी डील कहीं से मिलेगी।
9: बिल्कुल।
10: बट मॉर्गेज जब डिफॉल्ट होता है तो यही होता है, और सनी साहब आप मुझे सालों से यही सुनते आ रहे हो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, लैंड पे फाइनेंसिंग मत लो, लैंड कैश पे लो, लैंड पे फाइनेंसिंग मत लो, लैंड कैश पे लो। जितनों ने सुना सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना उनका लॉस है, क्योंकि जब भी आप लैंड पे मॉर्गेज लेते हो वो फर्स्ट मॉर्गेज, सेकेंड मॉर्गेज, थर्ड मॉर्गेज की शक्ल में जाता है। यू पे 14-18% इंटरेस्ट इन सम केसेस। इस केस में यही हुआ, वो 100 एकड़ की जमीन समझ लीजिए 30-30-30 एकड़ करके 3 जनों के पास थी, तीनों ने फर्स्ट और सेकंड मॉर्गेज डिफॉल्ट किया। मैं मॉर्गेज परचेज कर रहा हूं, आई रिपीट, मैं मॉर्गेज परचेज कर रहा हूं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। यही रीजन है कि वो लैंड मुझे आधी से भी नीचे की प्राइस में मिल रही है, $60,000 पर एकड़ के हिसाब से। आप जितनी एकड़ उसमें लेना चाहें लें, वहां पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अपार्टमेंट बिल्डिंग, सीनियर होम, रिटायरमेंट होम, इन सब चीजों की जरूरत है उस नेबरहुड में। सिटी यहाँ से घंटा भर दूर, बे ऑफ क्विंट के ऊपर मेन रिवर के पास 401 से लगी हुई ये लैंड 100 एकड़ की। राइट अवे कॉल करा लीजिए, अपना नाम रजिस्टर करा लीजिए, आप आ जाएं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे टेक्स्ट और व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा। साइन अप कर लीजिए और फिर देखिए आप आज के दौर में इस नई प्लेबुक के हिसाब से 2026 और 2027 में डबल ट्रिपल पैसा कैसे बनाते हैं। ये मेरी जॉब है, आपको एक्सप्लेन करना, आपको सेटिस्फाई करना। प्रॉपर्टी पे आपका नाम, ओनरशिप आपके नाम पर, आई एम ऑल्सो योर पार्टनर, आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी। 416-666-2745
9: जी दोस्तों, एक और कॉन्फिडेंस की बात है जहां पर अतीक भाई खुद कह रहे हैं कि भाई मैं भी इस चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि जो लैंड की जोनिंग बदलनी है, सारा जो काम करना है, दैट इज वेयर उनकी एक्सपर्टीज सामने आती है, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली एवरीथिंग दैट ही डज फॉर यू फॉर अस। और आपने सिर्फ ये देखना है कि भाई किस तरह से आपका पैसा ग्रो हो रहा है। 416-666-2745 416-666-2745 द वन एंड ओनली अतीक खान साहब। अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया,
10: थैंक यू सो मच सर,
9: थैंक यू ब्रदर। 416-666-2745 416-666-2745। अच्छा मुझे इसमें एक बात और, एक बात क्या मतलब, ये बात जो है प्राइमरीली अच्छी लगती है कि व्हेन यू बिकम अ पार्टनर ओनर ऑफ द लैंड आपका टाइटल पर नाम होता है। लैंड खरीदी जाती है, डेवलप की जाती है, जोनिंग बदली जाती है, एवरीथिंग जो पेपर वर्क है अतीक भाई जो है मेक श्योर करते हैं, वो लॉयर के सामने, लॉयर के पास होता है। तो आपको ये नहीं है कि भाई मैंने पैसे डाल दिए, मुझे क्या पता ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक बार कॉल करें, गेट answers to all the questions that you may have. 416-666-2745 cholebhature.ca. चार लोकेशन से सर्व करते हैं, दिल्ली वाले वर्ल्ड फेमस छोले भटूरे, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन वॉन, 1 इन मिसागा। टेक आउट डाइन इन ऑप्शन दोनों आपके लिए अवेलेबल हैं। एंड चलिए गीत भी अवेलेबल है कुमार सानू की आवाज़ में, कहीं प्यार ना हो जाए, फिल्माया ऑन सलमान खान एंड रानी मुखर्जी।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।

0: them at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: क्रेडिट कार्ड जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद, सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577, 416-671-0577, alldebtsolutions.ca.
2: Hi अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 905-457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.
5: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाहर का तापमान हो चुका है तकरीबन 24 डिग्री सेल्सियस, एंड टुमारोज विल बी 27, एंड देन थर्सडे 28, एंड 29 डिग्रीज ऑन फ्राइडे। एंड फीफा की बड़ी ज़ोरों से, धूमधाम से तैयारी चल रही है, एंड लॉट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स आर ऑब्वियसली लुकिंग टू वर्क फ्रॉम होम अराउंड दैट टाइम जब मैचेस होंगे, बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रैफिक जो कि डाउनटाउन में देखा जाएगा। लेकिन फोर्ड सरकार के हिसाब से जो फरमान आया है वो ये है कि भाई, योर मैनेजर विल हैव टू गिव यू स्पेशल परमिशन टू वर्क फ्रॉम होम, एंड दैट ओनली दैट विल बी 2 days a week, नॉट 5 days a week. सो दैट इज़ समथिंग दैट वो मैनेजर आपका ये डिसाइड करेगा आपके लिए। एंड चलिए, रियल्टर जतिंदर गंदम हमारे साथ हैं। मस्कोका में एक बहुत ही अमेजिंग कॉटेज है इन मस्कोका, और सेलर इज़ वेरी वेरी वेरी मोटिवेटेड। सो देखते हैं कि जतिंदर जी क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। नंबर है 416-265-2222, 416-265-2222। जतिंदर आपका स्वागत है।
6: हेलो, सत श्रीकाल जोशी भाजी, गुड आफ्टरनून। तो अज आप अपने स्रोतों लिए मस्कोका के कॉटेज लैके आए हैं। ये जी कॉटेज है 2 acre के लॉट के बनी हुई है। 2 साल तो घट समा हो इस कॉटेज में बने हुए, 3 bedroom ने, 3 washroom ने, प्लस थोड़े को अनफिनिश बेसमेंट है जिद एक्सट्रा बैडरूम बना सकते हो। फुली अपग्रेड प्रॉपर्टी है। यह प्रॉपर्टी एयरबीएनबी उत्ते चल रही है पिछले 1.5 साल तो। लास्ट ईयर 2025 के लगभग $1,00,000 के लगे है एयरबीएनबी उत्ते रेवन्यू से, प्लस ओनर आप भी उत्थे जाके रह रहे हैं। जे तुसी इस प्रॉपर्टी नूं लेना चाहुंदे हो इदां दी कॉटेज, ते साडा नाल गलबात कर लिओ। साडा नंबर 416-265-2222। रियल स्टेट दी मार्केट दे विच कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहुंदे हो जां सेल करना चाहुंदे हो, कॉल 416-265-2222। थैंक यू वेरी मच
1: जी। जतिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा। 416-265-2222, 416-265-2222, 416-265-2222 पर आप जतिंदर गंदम जी से कॉल कर सकते हैं। 2 acre की ये प्रॉपर्टी है, मस्कोका में कॉटेज है, एंड इसकी जानकारी के लिए, एयरबीएनबी से अच्छी खासी इनकम जो है लास्ट ईयर आई है, सो यू कुड बी द ओनर ऑफ इट। कॉल जतिंदर 416-265-2222। एंड यूक्रेन में एटलीस्ट 18 सिविलियंस आर डेड आफ्टर वेव ऑफ रशियन ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स हुए हैं पिछले कुछ घंटों में ऑन सेवरल सिटीज। एंड दूसरी तरफ जो है, टोरंटो टू होस्ट प्राइड नाइट ऑन फ्राइडे विद लाइव ड्रैग परफॉर्मेंसेज, ग्लैम बार्स एंड स्पेशलिटी कंसेशंस। क्वींस पार्क की तरफ से MPP's राइजिंग फॉर द समर टुडे, लेजिस्लेचर वोंट रिज्यूम अंटिल सितंबर। सितंबर तक अब लेजिस्लेचर वापस नहीं आएगा। एंड नॉर्थ यॉर्क में 3 suspects वांटेड हैं इन डेडली शूटिंग ऑफ हुसैन एलमी, 27, नियर शेपर्ड एंड जेन ऑन फ्राइडे। पुलिस की जांच बिल्कुल जारी है। चलिए, किशोर कुमार साहब की आवाज़ में, ये किशोर कुमार साहब का गीत है, वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स फिल्माया ऑन लेजेंडरी धर्मेंद्र एंड राखी। एंजॉय।

0: Nishant. Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. एंड कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी प्रेडिक्ट करते हैं 8 सेंट्स इंक्रीज पर लीटर फॉर गैस टुमारो. सो इट्स एक्सपेक्टेड टू क्लाइम. आज फटाफट जो है भर लीजिए अपने गैस टैंक्स, और फिर ऐसा होगा कि भाई कल 8 सेंट ऊपर गई, ऐसा ना हो परसों फिर कुछ और ऊपर चले जाए. एंड सो बी वेरी केयरफुल. मोटरसाइकिल्स पेडेस्ट्रियन डेथ्स अप सिग्निफिकेंटली ईयर ओवर ईयर, जो कि मैं कुछ देर पहले भी कह रहा था कि काफ़ी इस तरह के एक्सीडेंट्स अप गए. मोटरसाइकिल्स डेथ्स अप 500% कंपेयर टू द सेम टाइम लास्ट ईयर, मतलब मई जून 2025 और अब से लेकर पेडेस्ट्रियन डेथ्स आर अप 56% एंड 500% ऑन द मोटरसाइकिल्स. तो यू नो देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जो नंबर्स हैं सामने आ रहे हैं, एंड दे आर प्रीटी स्केरी नंबर्स जो सामने आ रहे हैं. यू नो दिस काइंड ऑफ वेदर पीपल डू टेंड टू गो अ लिटिल फास्ट ऑन द मोटरसाइकिल, सो वो केयरफुल रहने वाली बात है. आयशा मुनव्वर जी हमारे साथ हैं, डेथ सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट, इंसॉल्वेंसी काउंसलर. और आयशा जी जब भी ऑन एयर आती हैं हमें अलग अलग ऑप्शंस देती हैं फॉर डेथ सेटलमेंट, किस तरह से कर्जों से हमें छुटकारा मिल सकता है. विद ओवर 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, शी इज़ एन एक्सपर्ट एट वॉट शी डज. नंबर आयशा जी का नोट करें, 416-428-2165. आप चाहे तो अपने डेट को गुड बाय कहने की शुरुआत इस सेगमेंट के बाद से कर सकते हैं. यू रियली डोंट हैव टू वेट, बिकॉज वेट करते करते कर्जा जो है वो वेट नहीं करेगा, उस पर इंटरेस्ट लगकर वो मल्टीप्लाई होगा और भी क्रेजी सिचुएशन हो जाएगी. टॉक टू आयशा मुनव्वर, 416-428-2165. आयशा जी आपका स्वागत है.
2: थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन एयर. सबसे पहले तो मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता दूं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, इसके अलावा जो है बैंक्रप्सी में भी हम हेल्प आउट करते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक्रप्सी जो है वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन हो, दैट कैन बी ऑलवेज अ लास्ट ऑप्शन. देर आर ऑप्शन जिसमें आपको बैंक्रप्सी नहीं करनी पड़ती और क्रेडिट भी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिव्यू करते हैं, असेस करते हैं, देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी किस चीज में है, कौन सी चीज का आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि हर पर्सन की ऑप्शन जो है वो सारी नहीं हो सकती. सो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंसेस, डिपेंडिंग ऑन योर एसेट्स एंड एवरीथिंग, वी हैव टू फर्स्ट रिव्यू एंड सी, एंड वी हैव टू एडवाइज यू. और उसके बाद फिर हमें वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होती हैं. हम वन एंड वन आपके बिहाफ पर जो है वो बैंक के साथ नेगोशिएट करते हैं, सेटल करते हैं आपके लिए मैक्सिमम डेट रिलीफ. और उसमें यह है कि आपके जो एसेट्स हैं उनको भी लीगली प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपका घर हो गया, गाड़ियों हो गई, बल्कि कारोबार हो गया, इसके अलावा RRSP, RESPs हो गए. तो वो सारी चीजें जो है वो सेव रहती हैं और एक ऐसी ऑफर बैंक्स को ऑफर की जाती है जो कि इजीली वो एक्सेप्ट भी कर लें और आपके एसेट्स को टच ना करें. और उसमें कलेक्शन कॉल्स रुक जाती हैं, इंटरेस्ट रुक जाता है, छोटी पेमेंट्स बन जाती हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड की, तो आप इजीली उसको जो है वो मैनेज कर लेते हैं. और इसके अलावा जो है अपॉइंटमेंट्स आर ऑल फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल, व्हाट यू कैन डू, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट मेरे साथ रख सकते हैं. वेरियस लोकेशंस हैं, ईजी टाइमिंग्स हैं हमारी, लाइक फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, लेट इवनिंग अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, वीकेंड की भी अवेलेबल हैं, बट बाय अपॉइंटमेंट ओनली. और उसमें यह कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट पर्सन और राइट पीपल जो है उससे एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत हाथों में अपने फाइनेंसेस दे देते हैं तो कई दफा इजी सिचुएशन जो होती है उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और वो फिर कई दफा जो है बैंक्स जो है उनके अप्रूवल्स जो है वो मुश्किल हो जाते हैं. तो इसलिए डोंट फॉरगेट, यू नो द बैंक्स हैज टू गिव एन अप्रूवल एंड इट हैज टू बी अ फेयर और जो कहते हैं लिजिमेट जो आपकी होनी चाहिए ऑफर, के जिसको वो एक्सेप्ट कर लें और प्रॉब्लम ना बनाए. बट एनीवेज, फॉर मैक्सिमम डेट रिलीफ यू कैन गिव अस अ कॉल. माय फोन नंबर इज 416-428-2165. दैट इज 416-428-2165. 4165. Thank you very much.
1: Ji, bahut bahut shukriya Isha ji. And the number is 416-428-2165. 416-428-2165. With over 30 years of experience, debt solution specialist, insolvency counselor hain Isha Munawar ji. Alag alag tarah ke aapko options diye jate hain. And aksar kai baar aisa hota hai ki half इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें सारा कुछ पता है, वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं और भी काम ख़राब कर देती है. मीनिंग लॉट ऑफ टाइम्स वी आर स्केर्ड कॉलिंग आयशा मुनव्वर जी का मतलब है कि बैंक्रप्सी. इट्स नॉट लाइक दैट. देर आर मेनी मेनी ऑप्शंस जिसका आप बिल्कुल फ़ायदा ले सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट आयशा जी इज़ देयर टू हेल्प यू. 416-428-2165. 416-428-2165. एंड अफोर्डेबिलिटी को लेकर ओंटारियो में एनडीपी की मॉरिस स्टाइल्स जो है गवर्नमेंट को ग्रिल कर रही हैं, एंड शी इज़ प्रीटी गुड एट डूइंग दैट. एंड बट एमपीपीज़ आर राइजिंग फॉर द समर टुडे. लेजिस्लेशन वोंट रिज्यूम अंटिल सितंबर अक्टूबर फॉर दैट मैटर. सो चलिए एनीवेज, बाहर का तापमान जो है वो भी काफ़ी गर्म हो रहा है. इट्स प्रीटी वार्म, 24 degrees, बट इन्जॉय द वेदर, बिकॉज बहुत जल्द फिर कुछ हफ्तों बाद कंप्लेंट हमारी कुछ और होती है. कुछ हफ्ते पहले कंप्लेंट कुछ और थी. सो आई थिंक व्हाटएवर इट इज सो लेट्स जस्ट एंजॉय. एक प्यारा सा गीत है अरिजीत सिंह की आवाज़ में, मधुमंती दे रही हैं साथ, जब तलक आपकी रिक्वेस्ट है, एंड इट्स फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2. अच्छा, कॉकटेल 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है, और जो इंटरनेट पर आजकल हर कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बन गया है, हर कोई हर एक के अपने व्यूज़ हैं, एंड पीपल आर सेइंग दैट दे आर मिसिंग सैफ अली खान, बिकॉज ओरिजिनल वाले में सैफ थे दीपिका पाडुकोण के साथ, एंड डियाना पेंटी उसमें थी. तो अब वो कह रहे हैं कि भाई ये वाले में वो जो एक अजीब सा कॉमेडी का स्टाइल है, उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है सैफ अली की, वो यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि दैट इज़ नॉट व्हाट शाहिद इज़ ट्राइंग टू पोर्ट्रे. देखिए, अगर वो पोर्ट्रे कर देते शाहिद जो सैफ करते हैं, फिर लोगों ने कहना था कि अरे यार शाहिद कॉपी कर रहा है सैफ की. सो आई डोंट नो व्हाट पीपल रियली वांट, यू नो. ये तो वो बात हो गई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और बिना कहे जो है खाना हजम नहीं होता है. चलिए एनीवेज, दैट्स हाउ इट इज़. Enjoy the song and aate hain bahut hi jald wapas. Brampton TV and Appliance se Sultan ji bhi honge hamare saath bahut jald.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779।
2: अब घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस हो गई बिल्कुल टेंशन फ्री। अप्लायंस टू फिक्स है आपका भरोसेमंद सर्विस पार्टनर। फ्रिज, अवन, चूल्हा, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन या ड्रायर, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस एक ही जगह। तजुर्बेकार टेक्नीशियन, समय पर काम का वादा। अप्लायंस टू फिक्स, अभी कॉल करें हरविंदर 6474071470, 6474071470। आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान अब रही हमेशा फिट।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086, 6478661086, राज जोशी, नाम ही काफी है।
7: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है, ऐसा क्यों?
8: नया इलाका और नया घर,
7: अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं।
8: घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
9: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास, Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें, waynesautogroup.com.

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 दैट इज 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com।
2: मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। खुशियां मिल जाएंगी एक दिन, रोते रोते ही सही। कमजोर दिल के हैं वो जो हंसने

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशिया अनलिमिटेड रेडियो पर। ब्रैंटन टीवी एंड अप्लायंसेस से सुल्तान जी हमारे साथ हैं। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रैंटन। 905-450-2828 इज द नंबर। ओपन 7 डेज अ वीक 11 AM टू 7 PM। BramptonAppliances.com पर जाकर आप अमेजिंग डील्स को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी की सारी डील्स सुल्तान जी से लेते हैं। सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर करेंगे रुख। सुल्तान जी, आपका स्वागत है साउथ एशिया अनलिमिटेड रेडियो पर।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
0: सुल्तान जी। सबसे पहले द अमेजिंग टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें।
1: डेफिनेटली जी, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके साथ साथ रैप्टर्स की गेम चल रही हैं, साथ में ब्लू जेस की गेम चल रही हैं, तो जो भी स्पोर्ट्स के शौकीन कस्टमर हैं वो तो डेफिनेटली बिग स्क्रीन पे फुली इंजॉय करते हैं। और अगर बिग स्क्रीन डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है जी। तो ये जो भी कस्टमर इस वक्त 85 इंच QLED लेना चाहते हैं, क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ QLED सैमसंग का 85 इंच $2000 वाला सिर्फ $1299 में मिलेगा। $700 आप 85 इंच QLED पे सेव करेंगे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे जी। इसी तरह 65 इंच सिर्फ $699 में मिल जाएगा और 55 इंच सिर्फ $399 में ले सकेंगे। पेमेंट आपने 6 महीने में करनी है जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी होगी। आपको आना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी। BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं। और जब बिग स्क्रीन की बात करें तो 98 इंच को मिस ना करें, क्योंकि 98 इंच सिर्फ 3 TV इन स्टॉक रह गए हैं। $3500 से सेल प्राइस $2799 का था, लेकिन $1999 में 3 lucky customer कैन गेट इट 6 month नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान के साथ 98 इंच सैमसंग टीवी 1999 का। 905-450-2828 905-450-2828 जी,
0: 905-450-2828 ब्रैंटन टीवी एंड अप्लायंसेस। सुल्तान जी, अप्लायंस एंड लॉन्ड्री की सेक्शन पर भी क्या अमेजिंग डील्स चल रही है, उस पर भी प्लीज डाले रोशनी। कुछ बंडल पैकेजेस भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल जी, 40% का डिस्काउंट अप्लायंसेस इंडस्ट्री में नहीं मिलता, हाईएस्ट वॉल्यूम डीलर होने की वजह से 40% का डिस्काउंट जो है हम अपने कस्टमर्स के लिए लेके आए हैं जी। अगर तो बिल्ट इन किचन लेना है तो ह्यूज सेविंग है, क्योंकि बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर टॉप फ्रिज जो पूरे का पूरा बिल्ट हो जाएगा आपके किचन कैबिनेट्स में, और आइस एंड वाटर डिस्पेंसर के साथ होगा ये आपको $12,000 वाला बिल्ट इन किचन सिर्फ $6,900 में मिलेगा जी। ह्यूज सेविंग है, 40% की सेविंग करवा रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी होगी, 6 month में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडिविजुअल भी अगर आप लेना चाहते हैं, सिंगल फ्रिज आपको $2500 वाला $1799 में मिलेगा, और इसमें भी आप $700 एक फ्रिज खरीदने पे सेव करेंगे। स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव $1300-1400 वाला $799 में मिलेगा सिर्फ, इसमें भी $500 की सेविंग है। टॉल टब की डिशवाशर जो है $1000 वाली, ये तो मोर देन 40% डिस्काउंट है, क्योंकि $1000 से सिर्फ $499 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे डिशवाशर ले सकेंगे स्टेनलेस स्टील की $499 फ्री होम डिलीवरी के साथ। फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर की बात करें जी तो $2200 वाला फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर $1499 में, और टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर की अगर बात करें तो $1700 वाला टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर सिर्फ $1099 का पेयर मिलेगा, वॉशर ड्रायर दोनों। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चंकूजी वाली लोकेशन पे आना है। हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को। ह्यूज सेविंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस एंड लॉन्ड्री सेक्शन में मिलेंगी। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है जी। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828 905-450-2828।

0: जी 905 450 28 28 Brampton TV and Appliances.
1: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940 647-863-1940.
2: लेक डेटा प्लान सी पर टोयोटा टंड्रा दे बिना सकून नहीं शोर मिलिया. जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंड्रा ले आओ ता एस दी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है. रेड टेक डेज दा लाभ लाओ. लीज करो 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स डीआरडी ऑफ रोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल. विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जा.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
4: जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना. वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता. एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए जैसे ऑटो होम लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 6476280040. दैट इज 6476280040.
3: यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
2: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अनादी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे. एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी.
0: जी हाँ दोस्तों यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाजत. अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM. शो के बाद बातचीत करनी है. नंबर एक ही है 6478631940. टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं? इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा। हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तुफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा सलाम अलैकुम, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से आपका स्वागत करता हूं। आपका खैर मकदम है लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड डॉल्स, दिस इज लवी डवी शो एंड टुगेदर We will kiss the airwaves of Toronto this afternoon.
6: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूँ शिवानी और आमिर और शिवानी के साथ रेडियो टोरंटो कनाडा के लवी डवी शो की शुरुआत हो चुकी है और 3 बजे तक हमारा आपका साथ बना रहेगा। आमिर, 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, समर लेट में आए तो बिल्कुल जोर शोर से आ गए, है ना?
5: बिल्कुल सही कहा आपने, 23 डिग्री था लेकिन मेरी गाड़ी में 28 डिग्री था, शायद मेरे जज्बात की गर्मी भी साथ में शामिल हो गई।
6: बस आमिर का कहने का मतलब है कि ऐसे में एक दूसरे को तवज्जो देते रहिए, लम्हे गुजारते रहिए एक साथ। मिर्जा गालिब कहते हैं, मसरूफ रहने का अंदाज तुम्हें तन्हा न कर दे गालिब,
5: वाह
6: रिश्ते फुर्सत के नहीं तवज्जो के मोहताज।
5: वाह वाह क्या कहने, और तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता।
6: 416-303-3639। वाह मिर, क्या शायरी थी।
5: Stay tuned. This is Lovey Dovey Show.

0: चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। और दोस्तों, आप दूसरों का दिल बिल्कुल चुरा लेंगे अगर आप डिजिटल मीडिया पर प्रो हो जाते हैं, क्योंकि आजकल टाइम ही वो है। आप पसंद करें कम पसंद करें, लेकिन बिना उसके इंसान आजकल नहीं जी सकता। हम रील्स देखते हैं, हम पोस्टर्स देखते हैं, हम लोगों को अपना प्रमोशन करते हुए देखते हैं और हम सोचते हैं कि ये आइडिया तो हमारा भी था, बस कैसे दूसरों का आइडिया चला गया, हमारा आइडिया नहीं गया। फिर हम लोगों को हायर करते हैं, जब हायर करते हैं तो एक्सपेंसिव भी होता है। दूसरी चीज, अपनी वो चीज नहीं है उसकी, हमारी चीज वो प्रमोट कर रहा है इंडिविजुअल आपका, तो वो अपने तरीके से करेगा और हम सेटिस्फेक्शन भी नहीं ले पाते, पैसे भी दे देते हैं।
1: सही कह रही
0: हैं। ये सारी चीजें बचने के लिए अच्छा है कि आप एक डिजिटल मीडिया का कोर्स ज्वाइन कर लें और वो सिर्फ एक महीने में आप प्रो बन जाएं और जिंदगी भर का टैलेंट आपके पास है, आप अपने हिसाब से प्रमोट कीजिए। लेकिन हम यहाँ एक और बात करेंगे कि इंडिविजुअल तो अपनी जगह है ही, आप बैचेस चलाते हैं, आप एक और भी काम कर रहे हैं आमिर, जो बहुत बेनिफिशियल है कंपनीज के लिए, कि जो कंपनीज के एम्प्लॉय होते हैं, जो चाहे वो रियल स्टेट कंपनी है, चाहे मॉर्गेज की कंपनी है, जो कोई और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके लोगों को डिजिटल मीडिया में ट्रेन करना उनके ही प्रेमिसेस में, उनके ही सेटअप में, इट इज़ वेरी वेरी convenient for them। और 8 से 10 लोग अगर बैठ के एक साथ सीखते हैं तो ये भी आप services देते हैं। तो बहुत सारे listeners इस afternoon time में हमें सुन रहे हैं, जो company owners सुन रहे हैं, जो अपने लोगों को train करना चाहते हैं, तो ज़रा उन तक ये message ज़रूर पहुँचाया जाए आमिर।
1: जी बिल्कुल, आपकी company है उसमें 5 से 6 या इससे ऊपर की तो कोई तादाद ही नहीं है, 50 हैं 60 हैं 70 हैं, उसको तो आप छोड़ दीजिए, यानी 5 या मोर पार्टिसिपेंट्स अगर हो सकते हैं आपकी कंपनी में, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, कोवर्कर्स हो सकते हैं, उन्हें डिजिटल मीडिया में प्रो बनाने का जिम्मा हमें दीजिए।
0: अच्छा।
1: हम आपके बोर्डरूम में आके उनको ट्रेनिंग देंगे और आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रेनिंग के आवर्स होंगे, वर्किंग डेज में भी हो सकते हैं, वीकेंड पे भी हो सकते हैं। वीकेंड पे चूंकि हमारे ऑलरेडी बैचेस चल रहे होते हैं उसमें ज़रा मामला टाइट होता है, वर्किंग डेज में मंडे टू फ्राइडे हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके स्टाफ को डिजिटल मीडिया में पूरी तरह से ट्रेन कर देंगे हम। कि फॉर एग्जाम्पल रियल इस्टेट है, तो रियल इस्टेट में उनको अपने वर्चुअल टूर खुद कैसे बनाने हैं, उनको पोस्टर्स कैसे बना के लगाने हैं, उनको शॉर्ट रील्स कैसे बना के लगानी है, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और इसी तरह के सिमिलर प्लेटफॉर्म्स पे वो अपनी रील्स की ऑर्गेनिक फॉलोइंग कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तो है पेड प्रमोशन, वो तो एक अलग कहानी है, यानी ऑर्गेनिकली विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी हाउ कैन दे इंक्रीज देयर फॉलोइंग, अपना यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं, फेसबुक पे प्रमोशन का तरीका क्या है, टिकटॉक पे क्या है, इंस्टाग्राम पे कैसे सेंसेशन मच सकता है। आप पर्टिकुलर हिट द नेल ऑन द हेड जिसे कहते हैं, कि मान लीजिए ब्रैम्पटन में आपने प्रमोट करना है, स्कारब्रो में करना है, मार्कम में करना है, पर्टिकुलर एरियाज को कैसे टारगेट किया जा सकता है, इसके लिए आप नंबर मिलाएंगे 4163033639। हमारी टीम आपके प्रेमिसेस पे आपके ऑफिस में आएगी और आपके स्टाफ को ट्रेन करेगी डिजिटल मीडिया के लिए। ये रहा नंबर 4163033639। स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।
2: क्या आप सुन रहे हैं? इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा, कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
6: सिर्फ मॉर्गेजेस. दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार. मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार. मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा. तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं. कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 License number 12374.
7: Another Don clean with the Don Ducks.
8: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
9: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
8: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
9: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
8: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
9: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
8: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
7: Dawn Platinum, the better grease getter.
10: Nikki Gandhi of Home Life Miracle Realty brings you brand new freehold townhomes in Brampton. Mavis Road and Ray Lawson Boulevard ke Asan se intersection par Rollingwood Towns launching June 1st. Starting price just from $600,000. 3 se 5 bedroom options available. Approximately 1300 se 1900 square feet ke layouts available. Extended deposit structure, extended closing available and great incentives for first time home buyers. Early launch pricing or limited release ke liye exclusively call Nikki Gandhi at 416-456-3815. That's 416-456-3815. Your trusted listing agent for Rollingwood Towns for VIP access, pricing and floor plans. Don't miss this opportunity.
1: साहब, मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 5-7 साल से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बाइंग का टाइम आए, खरीदने का वक्त आए तो हम खरीद लें वो एक ड्रीम होम, वो एक घर जो हमारी सबसे पहली और अहम ज़रूरत है इस मुल्क में, इस देश में, उसका खरीदना बहुत ज़रूरी है. यही प्रोजेक्ट यहाँ ब्रैम्पटन में तमाम तरह अमेनिटीज़ के साथ, सहूलत के साथ, राहत और इत्मीनान के साथ, इजी डिपॉजिट स्ट्रक्चर के साथ बेहतरीन और कामयाब प्रोजेक्ट यहाँ आ चुका है और इसको बहुत मंजी हुई सीनियर और स्किलफुल रियल स्टेट प्रोफेशनल हमारे पास लाई हैं. कमाल की शख्सियत हैं और इस प्रोजेक्ट में याद रखिए बड़ी जान है. 600,000 से शुरू हो रहा है और ये वो प्रोजेक्ट है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जमानत है. मैं क्यों कह रहा हूँ, आज जो बीज बोएंगे आप, आज जो काम करेंगे आप, आज जो प्रोजेक्ट लेंगे आप, कल आपको उसका पता चलेगा कि क्या टाइमली डिसीजन था. ये डिसीजन करने के लिए बात करेंगे निकी गांधी जी से. वेलकम.
11: Thank you so much, Amir ji, for putting me on air. Bahut bahut shukriya and happy Tuesday to all the listeners. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्रैम्पटन के एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के बारे में, रोलिंगवुड टाउन्स. जिस प्रोजेक्ट का हम सब काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, काफी टाइम से इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, वो ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है. जी हाँ, रोलिंगवुड टाउन्स कल ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है. ये जो प्रोजेक्ट है इसकी एक्साइटिंग बात क्या है, पहले तो जो ये प्रोजेक्ट है ना वो आ रहा है मेविस एंड रे लॉसन बुलेवर्ड के प्राइम लोकेशन, इसका मतलब ब्रैम्पटन और मिसिस आगा के बिल्कुल नजदीक आ रहा है. बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किए हुए ये टाउन हाउसेज है जो अभी के मार्केट में ना बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है. मेजर हाईवेज जैसे कि 401, 407 सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड की दूरी पर है. आई कैन से दैट स्कूल हाईवे, स्कूल, शॉपिंग, ट्रांजिट, कॉलेजेस, एवरीथिंग जो डेली अम्यूनिटीज होती है वो बिल्कुल ही नजदीक है यहाँ से. हार्टलैंड टाउन सेंटर, कॉस्को, वॉलमार्ट, रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी, सब कुछ बहुत ही कन्वीनियंटली लोकेटेड पे है. और एक बहुत मजेदार बात है इस प्रोजेक्ट की, इस लोकेशन की, एक्चुअली बहुत टाइम से ना ये जो एक पॉकेट है, इस पॉकेट में आई वुड से कि 5 किलोमीटर के रेडियस में ना कितने लंबे टाइम से कोई भी प्री कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट नहीं आया है. बहुत सारे ब्रैम्पटन में बहुत प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं पर वो बहुत ही नॉर्थ साइड पे होते हैं, कैलेडन साइड पे होते हैं. अगर आपको ब्रैम्पटन और मिसिसागा के प्राइम लोकेशन पे आराम से ब्रैम्पटन का फूड इंजॉय करो और मिसिसागा में जॉब करो, ये अपॉर्चुनिटी चाहिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इस प्राइम लोकेशन पे आप अपना ब्रांड न्यू घर बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बोला ये प्रोजेक्ट कल लॉन्च हो चुका है, प्राइसिंग जो है ब्रैम्पटन और मिसिसागा टाउन हाउसेस की बात कर रहे हैं हम, प्राइसिंग जो है सिर्फ और सिर्फ 670 से स्टार्ट हो रही है। जी हाँ गाइस, 669 से ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा के बॉर्डर पे प्री होल टाउन हाउसेज आए हैं, वो प्राइसिंग हो रही है सिर्फ और 669,000 से, जिसकी क्लोजिंग है अर्ली 2028, और डिपॉजिट जो है सिर्फ और सिर्फ 10,000 का इनिशियल डिपॉजिट देकर आप अपना यूनिट बुक करवा सकते हो। बाकी की जो डिपॉजिट है वो भी बहुत ही फ्लेक्सिबल है कि आप वो स्प्रेड आउट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो बहुत ही बढ़िया एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर मिल रहा है। 669 में है, 2028 की अर्ली की क्लोजिंग है, और हमारे पास यहाँ पे 1300 से 1900 स्क्वायर फीटेज तक के मॉडल अवेलेबल है, 3 से 5 बेडरूम 3 से 5 बाथरूम के मॉडल अवेलेबल है। यानी कि आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, आप एंड यूजर हो, या फिर आप अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर रखना चाहते हो, इन्वेस्टर हो, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ ही बिल्डर जो है बहुत ही बढ़िया, इन्होंने इंसेंटिव लॉन्च करे हुए हैं फॉर आवर अपकमिंग इवेंट, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। पहले तो आपको 5 पीस अप्लायंसेस पैकेज मिल रहा है, हमारे फर्स्ट 20 बायर्स के लिए पोर्टल फी वेव्ड करी हुई है, फ्री स्काई लाइट्स है, फ्री असाइनमेंट है, डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो कैप किए, और उसके साथ साथ ही बहुत ही ज्यादा इंसेंटिव भी मिल रहे हैं। अब आपको इस सारी इंसेंटिव की जानकारी चाहिए तो आपको आना कहाँ है, इस प्रोजेक्ट का ना हम लोग सेल स्टार्ट कर रहे हैं June 6 है, जून एंड 6 एंड 7 को, यानी कि इस सैटरडे एंड संडे को 11 से 5 हमारा जो है वो सेल्स इवेंट होने जा रहा है ग्रैंड एम्पायर बैंक्वेट हॉल में,
1: बिल्कुल
11: ठीक, 100 नेक्सस एवेन्यू। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप सुन रहे हो, अगर आप रियल्टर हो, तो आप अपने क्लाइंट को भी लेकर आ सकते हो, क्योंकि मैं बिल्डर को इसमें सीधा रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ब्रोकर्स प्रोटेक्टेड है, तो आप अपने एजेंट अपने क्लाइंट्स को लेकर भी आ सकते हो, साथ रियल्टर भाई बहनों को भी मोर देन वेलकम। अगर आप खुद आप अगर सुन रहे हो, आपके पास रियल्टर नहीं है, आप मेरे क्लाइंट्स हो, आप लोग वहाँ वॉक इन कर सकते हो। June 6 को हमारे डोर्स ओपन हो जाएंगे गाइस, फर्स्ट 20 बायर्स के लिए बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव्स है, मेक श्योर आप मिस मत कीजिए। June 6 को आना का है, 100 नेक्सस एवेन्यू ग्रैंड एम्पायर बैंक्वेट हॉल, डोर्स विल ओपन शार्प एट 11 o'clock। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए प्राइसिंग की, फ्लोर प्लान की, इंसेंटिव्स की, कंप्लीट पैकेज की, या फिर सेल्स इवेंट के बारे में, राइट अवे मुझे कॉल कर लीजिए 416-456-3815। आई रिपीट, इट्स 416-456-3815। एक और चीज बता देती हूँ, अभी ना गवर्नमेंट के भी बहुत बढ़िया से इंसेंटिव चल रहे हैं, अगर आपको वो गवर्नमेंट के इंसेंटिव का भी फायदा उठाना है, अब 230,000 तक की आपकी सेविंग हो सकती है। अगर आपने ये फायदा भी उठाना है, अभी के अभी हमें कॉल करें 416-456-3815, इट्स 416-456-3815। बैक टू यू आमिर जी।
1: अगर आप गवर्नमेंट के दिए हुए इंसेंटिव से फायदा उठाना चाहते हैं, बाइंग मार्केट है, बेहतरीन लोकेशन पे और कामयाब, और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो फ्यूचर में आपको ऐसा फ्रूटफुल इंसेंटिव देगा कि आप अगले 8, 10, 12, 15 साल के लिए सिक्योर हो जाएंगे, ये नंबर मिलाएंगे 416-456-3815। थैंक यू वेरी मच निकी गांधी, आपके टाइम के लिए थैंक यू,
11: थैंक यू सो मच।

0: रेडियो टोरंटो कनाडा का ये शो चल रहा है लवी डवी शो, और आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। 2:23 का वक्त है और अब वक्त हो चला है कि लवी डवी से गाने प्ले करने का। ये वाला जो गाना था वो इट वॉज एनी थिंग बट लवी डवी,
1: इट वॉज लवी डवी प्रो।
0: तो ये वाला प्रॉपर लवी डवी गाना है, और इस गाने का मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का पर फरमाया हुआ ये गाना है।
1: ये लवी डवी मैक्स है या प्रो है?
0: मैक्स।
1: अच्छा, मैक्स है।
0: प्रो तो आपने सुन लिया अभी, और ये वाला प्रो नहीं है तो डेफिनेटली मैक्स होगा। और बड़ी अच्छी सी शायरी है जो इस गाने के साथ जाएगी। कहते हैं, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो
1: कही
0: जैसे,
1: हो जैसे।
0: जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे,
1: हो जैसे।
0: जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे।
1: वाह वाह।
0: राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे। एक लम्हे में सिमट आई है सदियों की सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। इस तरह पहरों तुझे सोचते रहते हैं हम, अपनी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे।
1: बहुत खूब, कमाल।
2: फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: मम्मा, why don't you go to work now?
5: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
6: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
5: क्या वो मदद करेंगे?
6: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे, इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
7: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
6: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
7: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
8: और साहब, कारोबार की ख्वाहिश नई जगी है दिल में, यह बहुत वक्त हुआ एक ख्वाहिश को लेके उसको पाल रहे हैं आप कि काम और कारोबार आपको अपना करना है। तो लीजिए, मिलवाते हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो हजारों नहीं लाखों लोगों की हेल्प कर चुके हैं, अरसे दराज से कमर्शियल रियल स्टेट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। कमाल का नाम है, बहुत रिलायबल, क्रेडिबल और ख़ास तौर पर बहुत इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट वर्दी, कि जिसको आप अपना पैसा देंगे वो उस पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल करवाते हुए आपको चलता हुआ कामयाब कारोबार दिलवाएंगे। हसीब शेख, वेलकम करते हैं आपको।
9: थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू फॉर नाइस इंट्रोडक्शन एंड काइंड वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच।
8: मैंने सुना है आप ईद वाले दिन भी किसी को बिजनेस दिलवाने गए हुए थे, उसके साथ मिलकर ड्यू डिलीजेंस कर रहे थे, तो ऐसी भी क्या प्रोफेशनलिज्म के आपने अपनी ईदी कुर्बान कर दी, यानी ईद कुर्बान ही आपने कुर्बान कर दी?
9: सर जी, क्या करें, मोहब्बत है आपकी। आप ही ने कहा था जी, इस बंदे को ईद वाला दिन ना देखिए, इसको सर्विसेज देनी है, तो इसलिए निकलना पड़ा।
8: नहीं, आई लाइक योर प्रोफेशनलिज्म।
9: नहीं ना कर सकते।
8: नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि आपने एक तो जाहिर है कुर्बानी होती है ईद पे, एक जज्बात की कुर्बानी होती है, तो मुझे लगता है आपने जज्बात की कुर्बानी दी कि आप रहना चाहते थे, घर में मौजूद रहना चाहते थे, तो वो तो बहुत बड़ी कुर्बानी है।
9: सर जी, जज्बात में घर में रहना जज्बात की कुर्बानी नहीं होती। वो इब्तदाए जंग होती है।
8: इब्तदाए जंग होती है। शेख साहब, मैं आज जानना चाहता हूँ स्मॉल बिजनेस के हवाले से, छोटे कारोबार की कोई अपॉर्चुनिटी जो 3-4 लाख से या 2 लाख से या इससे भी कम रकम से शुरू हो सके।
9: चले जी, पहले तो आपको 1 लाख का देते हैं। 1 लाख में हमें, हमारे पास वेब स्टोर है मिसिसागा के अंदर, जहाँ पर आप सारे खर्चे निकाल के तकरीबन $5,000 मंथ का बनाते हैं। ओनर ऑपरेटेड लोकेशन, $100,000 इन्वेस्टमेंट, सेफ इन्वेस्टमेंट, लो रेंट, वहाँ $5,000 आप गारंटीड बना रहे हैं। वहाँ पे आप थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, हमारे पास ब्रैम्पटन में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, नॉन ब्रांडेड है, अगर किसी बंदे ने लेना है, तकरीबन 30 बंदों के बैठने की जगह है, $350,000 आस्किंग प्राइस है, बेहतरीन लोकेशन है। ब्रम्पटन में ही हमारे पास एक जो है ये डिजर्ट शॉप है, जिसे हम कैफे भी कहते हैं, चाय वगैरह का है, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत फेबुलस किस्म की लोकेशन है, पूरा फूड कोर्ट है। उस लोकेशन को कोई भी अपने हाथ से जाने नहीं देगा, वो भी तकरीबन $3.5 लाख में हमारे पास लोकेशन है। इसको लेने के लिए आपने हमें कॉल करना है। और जब हम बात करते हैं रेस्टोरेंट्स की, छोटे बिजनेस की, तो हमारे पास राजों महाराजों वाला एक बहुत बेहतरीन बिजनेस है, जहाँ पर आप डेफिनेटली 400 बंदों की सिटिंग है, बुफे सिस्टम है, डे एंड नाइट चल रहा है, और वहाँ पे तकरीबन $3 लाख मंथली सेल है, एनुअल प्रॉफिट तकरीबन 6 लाख।
8: 3 लाख मंथली सेल है?
9: हाँ जी सर जी, 3 लाख मंथली सेल है और एनुअल प्रॉफिट तकरीबन 6 लाख है। डेफिनेटली हमारे पास बिजनेसेस तो बहुत हैं, और इनके लिए आपको क्वालिफाई करना होता है कनाडा स्मॉल बिजनेस लोन, आपको क्वालिफाई करना होता है BDC लोन, और उसके लिए आपको हमें कॉल करनी होगी, इन पर्सन मीटिंग करनी होगी, हम आपको ये बिजनेस दिलवाएंगे, अगर आप हमारे क्लाइंट हैं तो डेफिनेटली हम आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप ये लोन इजी टर्म्स पे ले सकें।
8: ये वेप स्टोर की आपने बात की और आप कह रहे हैं सिर्फ $1,00,000 अगर आपके पास है तो $5,000 महीना, और जाहिर है मुझे लगता है थोड़ी बहुत अगर उस पर मेहनत की जाए, मार्केटिंग की जाए, तो ये 5,000 सात भी हो सकता है, 7-10 भी हो सकता है, तो कितना पोटेंशियल देखते हैं आप इस कारोबार में?
9: जी, इस वक्त जो बंदा बेच रहा है वो तकरीबन 70 ईयर ओल्ड है, वो बुढ़ा बंदा है, वो सिर्फ अपनी रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर आके बैठा हुआ है। अब उसकी सेहत उसको इजाजत नहीं दे रही, इसलिए वो लाख में बेच रहा है। अगर कोई इसको प्रोफेशनली प्रॉपर चलाने वाला हो तो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनेरियो में भी यहाँ से $8,000-$9,000 की इनकम जनरेट होती है। मैं वर्स्ट सिनेरियो में कह रहा हूँ, तो वर्स्ट सिनेरियो में $8,000-$9,000 की इनकम जनरेट होती है। और ऐसा बिजनेस क्योंकि इतने लो बजट में है, ये सारे ही बंदे करना पसंद करते हैं। हम लोग तो देखें, आमिर भाई की मेहरबानी है, ये आपके साथ हमें कॉन्टैक्ट या कनेक्ट कर देते हैं, तो एंड ऑफ द डे तो आपने डिसीजन लेना है कि आपने भी इस प्रोग्राम सुनने हैं, ये आपने को डिसीजन लेना है।
8: डिसीजन
9: क्योंकि कुछ लोग तो शायद सुनते रहते हैं और कुछ लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, वो प्रैक्टिकल स्टेप लेते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकल भी अपनी सिक एंड टायर्ड हो गए हैं करंट जॉब से और आप चाहते हैं कि कोई नया आपकी लाइफ में हो जहां पर आप लाइफ एट योर ओन टर्म्स गुजार सकें, तो डेफिनेटली आपको हमें कॉल करनी होगी, हम आपको आपके बजट में रहकर आपको बहुत अच्छा बिजनेस दिलवा सकते हैं।
8: यहाँ नंबर है हसीब शेख का, ये नंबर पूरे एतमाद से, पूरे भरोसे के साथ, बगैर किसी हिचकचाहट, बगैर किसी हेजिटेशन के मिलाएंगे, इनसे बात करेंगे। बहुत सीनियर हैं, तजुर्बाकार हैं, काम की पते की सही नुक्ते की बात आपको बताएंगे। इनके साथ जाके मुलाकात ज़रूर कीजिए। इनके पास कुछ खताइयाँ रखी हैं, ये ख़ास लोगों को ही खिलाते हैं, हम जैसे भी चले जाएँ तो सिर्फ चाय के कप पे कहते हैं जी कहानी ख़त्म हो गई है, खताई उसको मिलेगी जो इनके दिल के बहुत करीब होगा। इसके लिए नंबर आपको मिलाना होगा 6479884449। नंबर दोबारा बता रहे हैं, ये नोट कर लीजिए, कारोबार करना है, बिजनेस करना है, छोटे पैमाने पर या बड़े स्केल पर काम करना चाहते हैं तो नंबर यही मिलाएंगे आप, 6479884449। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
9: चलिए, दो खताइयां पड़ी हुई हैं आपके लिए, एक आपकी और एक शिवानी की है, देखें कब आते हैं।
8: उनको महफूज रखिए, जल्द आ रहे हैं हम। थैंक यू वेरी मच,
0: थैंक यू हसीब साहब, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
5: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
6: ਫॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com or call 416-922-5263। Kanda Optical, the name you can trust।

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
6: रेडियो टोरंटो कनाडा का ये शो चल रहा है, वक्त हो चला है 2:40। आमिर और शिवानी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं इस आफ्टरनून ड्राइव। और आमिर, समर आ चुका है और ऐसे में हम बिकॉज कनाडा का जो समर है वो इतनी मिन्नतों के बाद और इतनी पुराने जन्म के अच्छे कामों के बाद मिलता है तो इसीलिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारी जो बॉडी है, हमारी जो स्किन है, वो इतना सब कुछ करती है हमारे लिए। हम सुबह से शाम तक बाहर रहते हैं और समर में हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लिहाजा हमें अपनी स्किन केयर की ज़रूरत बहुत पड़ती है। और ऐसे में जो हम बिल्कुल ऑर्गेनिक होम मेड जब अगर हम इन्ग्रीडियंट्स अपने चेहरे पर लगाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं या फिर प्रोडक्ट्स भी ऐसे यूज़ करते हैं जो हमें बहुत बेनिफिट देते हैं, जिसमें से एक है रोज़ वाटर, जिसको हम गुलाब जल कहते हैं हिंदी में, और उर्दू में क्या कहते हैं?
7: अर्क के गुलाब
6: जी। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, इसलिए हमारा जो साउथ एशियन की किचन है पाकिस्तान और इंडिया में, वो बहुत इसमें रोज़ वाटर इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो शायद अब से लेके जून एंड तक के शोज़ कम पड़ जाएं, इसीलिए मैं थोड़ी सी 2-3 लाइंस बता रही हूँ। हमारी स्किन का जो pH बैलेंस होता है और ऑयल कंट्रोल जो एक्सेस होता है, जो समर में ऑयल बहुत आता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरी चीज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे स्किन पर एक्नी है, उसके बाद एक्जिमा है, और दूसरी जो क्लॉग पोर्स हैं उन सब में भी फ़ायदा देता है। हमारी स्किन को हाइड्रेट बहुत रखता है रोज़ वाटर, जो समय में बड़ी ज़रूरी होता है, और हमारी स्किन को ग्लो और रिफ्रेश्ड लुक देता है। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो थोड़ा बहुत हम आउटडोर एक्टिविटीज़ में ट्रेल्स पर जाते हैं और उस वक्त जो हमारे चेहरे पर उस वक्त हमारे जो चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भी रोज़ वाटर मदद करता है। इसके अलावा हमारी स्किन की सेल्स को रीजेनरेट करने में हमारे स्किन टिश्यूज़ को भी रोज़ वाटर हेल्प करता है।
7: सुना है कुछ लोग सादा पानी से मुंह धो लें तो वो पानी भी अर्क के गुलाब बन जाता है,
6: ऐसा सुना है आपने?
7: मैंने सुना है।
6: अच्छा, कहाँ से सुना?
7: मतलब मैंने काफ़ी किताबों में पढ़ा है। अच्छा। ये तहकीक भी हुई है कि कुछ लोग इतने नाजुक, इतने मखमली और इतने कोमल होते हैं कि वो सादा पानी से चेहरा धोएं तो जो पानी उनके चेहरे से उतरता है उसे भी अर्क के गुलाब कहते हैं
6: जी।
7: ये पानी कहाँ से मिलता है
6: जी? उसमें ये है कि इसमें डिस्क्लेमर एक ये लगेगा कि आमिर की बात को आप जनरलाइज ना लें, कहीं आप हम सभी अपने चेहरे को ऐसा मुलायम समझ लें और केयर करनी छोड़ दें। अगर उसका कुछ हो गया आगे पीछे का तो आमिर ट्रेसेबल भी नहीं होंगे और रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगे।
7: आपने जितने इलाज बताए अर्क के गुलाब से किए जाने वाले इलाज, उनमें सबसे बेहतरीन इस पानी से इलाज होगा।
6: अच्छा।
7: क्योंकि जो किसी के चेहरे से धुल के आया हुआ पानी है वो दिल के मर्ज का इलाज करता है। बंद वेने खोल देता है दिल की, इंसान बिल्कुल तरोताजा हो जाता है, दिल के सारे मर्ज दूर हो जाते हैं उससे। वो पानी बड़ा नायाब है, वो कुछ ही चेहरों से दस्तियाब होता है।
6: बिल्कुल, ये एक
7: बात सीरियस होगी,
6: खौफ ज्यादा डिस्क्लेमर की तरह ये बात बोली गई, हर तरफ सन्नाटा छा गया, ट्रैफिक रुक गया। तो इस पे एक गाना बनता है, एक फूल दो वाली, जरा पर्दा हटा दो, ये मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, शुक्र करो पड़े नहीं है मेरी माँ के डंडे।
7: Oh my God.
6: एक हाथ में आ जाते होश तुम्हारे ठंडे, ये गाना है।
7: अच्छा गाना है, सॉरी, थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी नो, शुक्रिया बहुत बहुत।
6: आप रोज वाटर इस्तेमाल करते रहिए, आमिर जी ने जो पर्सनालिटी बताई है वो पूरे कायनात में दो या चार होते हैं, हम सब उसमें से नहीं आते, हम सबको रोज वाटर से काम चलाना पड़ेगा। 416-303-3639।
8: ये पर्दा हटा दो,

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
4: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
5: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
4: क्या वो मदद करेंगे?
5: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का experience hai and no fee until victory.
6: Car accident ya slip and fall? Don't call any third party agent. Directly call Sayyed M. Raza of Sayyed Law. Sayyed Law se Sayyed M. Raza.
5: Jahan sirf vaade nahi,

0: कीजिए। आप हर माह 500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584
1: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
0: रेडियो टोरंटो कनाडा और का ये शो 2:50 पर पहुंच चुका है और आमिर बहुत खूबसूरत सी दोपहर है और जो रवा दवा है शाम की तरफ, लोगों के शाम के प्लान्स बन चुके हैं। समर की लंबी लंबी शामें हैं जब घर के एक हिस्से से, ईस्ट से जब सूरज निकलता है तो उस बेडरूम की तरफ इतनी तेज़ धूप आती है, हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है। दूसरे साइड ऑफ द हाउस में जब सनसेट होता है तब की जो रोशनी है वो आती है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं जो समर में देखने को मिलती हैं, जो हमें एक पॉजिटिव फीलिंग देती हैं और हमें लगता है कि वी आर ब्लेस्ड इन सो मैनी वेज़। तो जी, और कहते हैं कि ज़रा सी आप कभी परेशान हो और ऐसा लगे कि ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, हर तरफ थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, तो वो चीज़ ना देख के कि क्या चीज़ें फॉलिंग अपार्ट हो रही हैं, ये देखिए कि क्या चीज़ें हमने सिमेटी हुई हैं, तो उनका बोझ आपको हमेशा ज़्यादा लगेगा।
2: आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब हम धूप देखते हैं तो हमें बैक होम की बहुत सी चीज़ें याद आती हैं और उनमें सबसे अहम चीज़ है किन्नू माल्टे।
0: अच्छा,
2: जब धूप में बैठ के काले नमक के साथ, काले और सफ़ेद नमक, आप तो होम रेमेडीज को भी देखती हैं,
0: जामन
2: और जामन है, किन्नू है, अमरूद है,
0: उसके ऊपर
2: ये मुझे बहुत याद आते हैं।
0: मसाला लगा के
2: कभी कभी छत पे बैठ के, कभी कभी किसी पार्क में बैठ के, कभी कभी आप तो हमजोलियों के साथ वहाँ खाती होंगी, हम भी वहाँ दोस्तों के साथ बैठ के इनका मज़ा उठाते थे और क्या लुत्फ था इनका। ये सब कुछ हम यहाँ भी खाते हैं, यहाँ भी एहतमाम होता है, लेकिन वो एहतमाम जो वहाँ हुआ करता था कि किन्नू का छिलका उतारते थे और उसी में नमक रख लेते थे, फिर वो शक्करकंदी वाला आता था हमारे वहाँ, स्वीट पटैटो जिसे कहते हैं, उसके पास एक बर्तन होता था, उस बर्तन में उसने काला नमक डाला होता था, आप उसको मशवरा देती तो शायद हल्की हल्दी का भी दे देती बीच में, यू नो आप तो होम रेमेडीज करती, लेकिन वो काला नमक डालता था, सफ़ेद नमक डालता था और भी पता नहीं कौन कौन से मसाले हुआ करते थे, चाट मसाला, थोड़ी सी मट्टी भी होती थी इधर उधर से उड़ के
0: उसमें उससे टेस्ट और एनहांस हो जाता था, तभी घर के बनाए हुए गोलगप्पे और बाहर के बनाए हुए गोलगप्पों के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है।
2: तो काफ़ी तरह के जायके उसमें शामिल होते थे छोटे से बर्तन में, वो He used to give it a very good shake.
0: Yeah,
2: यूं करके शेक करता था और वो जामन या किन्नू या अमरूद, खासतौर पर शक्करकंदी,
0: कच्चे अमरूद
2: और उसमें लेमन भी छिड़कता था और फिर वो जब निकाल के देता था मोहल्ले के बच्चों में लड़ाई हो जाती थी। भाई क्या वक्त था, क्या जमाना था, वो स्ट्रीट वेंडर्स कम पैसा बनाते होंगे लेकिन उनमें कितनी बरकत होगी कि जो छोटे छोटे बच्चे अपने नाजुक नाजुक हाथों से लाके उसको पैसा देते होंगे और मजे उड़ाते होंगे उस मजेदार फूड के।
0: बिल्कुल सही, वो वक्त है, उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन आमिर ने बड़े अच्छे से लफ्जों में बयान किया है और हम सभी बैक होम में और डाउन द मेमोरी लेन पहुंच चुके हैं और ऐसे ही सफर जारी रहता है आपका और हमारा रेडियो टोरंटो कनाडा के लवी रवि गानों के साथ, लवी रवि शो के साथ। और आमिर, हमें पता ही नहीं चला कब 3 बजने को आए और हम अलविदा लेंगे अब।
2: बिल्कुल।

0: बिल्कुल जी, अब अलविदा का वक्त है। इस पैगाम के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि बात ये नहीं है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी और उसमें क्या क्या कुछ हासिल किया, क्या क्या असासे बनाए। बात दरअसल ये है कि आप आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी, आने वाले वक्त के लिए क्या ऐसा छोड़ के जा रहे हैं जो आपके नाम को हमेशा जिंदा रखेगा।
1: क्या बात है।
0: इस खूबसूरत से पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द अदर्स, एंड हे यू, आई लव यू।
2: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना, या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर, रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555, 905-731-2555, रूहानी कॉलेज।

जिनके लफ्ज़ों में हमें अपना अक्स मिलता है, बड़े नसीबों से ऐसा कोई शख्स मिलता है। और अपनों के साथ वक्त गुजारते रहिए, खूबसूरत से लम्हे आप गुजारने के साथ साथ मेमोरीज़ बनाते रहिए। सुनते रहिए रेडियो टोरंटो कनाडा, और कल फिर से होंगे हम आपके साथ साथ। 416-303-3639। नमस्कार।

0: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
1: क्या आप सुन रहे हैं? इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
2: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
1: इस आवाज को अपने बिजनेस

0: शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी,
1: एक ड्राइव एंड मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव। शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी।
0: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय शान मीडिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं शालिनी आप लोगों का वेलकम करती हूँ शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन सीएमआर और एफएम 101.3। और दोस्तों, ये प्यारी सी छुक छुक गाड़ी की राइड शुरू हो चुकी है जो चलेगी 4 बजे तक। और शो की शुरुआत में बहुत प्यारा सा विचार जो कहता है, खुशी चीजों में नहीं अच्छे रिश्तों और सच्चे एहसासों में मिलती है। तो दोस्तों, आज अपने दिल को लाइट रखिए, पुरानी प्यारी यादों को फील कीजिए और म्यूजिक को अपने इमोशन से कनेक्ट होने दीजिए। और इसी खूबसूरत से एहसास के साथ शुरुआत करते हैं आज की मस्ती की रेलगाड़ी की। आज के शो में होगा ढेर सारा म्यूजिक, ढेर सारी बातें, बहुत सारी डील, बहुत सारी खबरें। 4 बजे तक दीजिएगा एक बार फिर से शालिनी का साथ शो के दौरान या शो के बाद। हमारा डायरेक्ट नंबर है 416-569-7812, 416-569-7812। शो की शुरुआत करते हैं ताजा न्यूज बुलेटिन के साथ, स्टे ट्यून्ड।
2: शान एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शान मीडिया।
3: नमस्कार, शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। शायर बशीर बद्र के बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं, बारिशों में किसी पेड़ को देखना, शॉल ओढ़े हुए भीगता कौन है। इन्हीं अशार के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। ट्रंप ने सोमवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करते हुए लेबनान में इसराइली सैन्य कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल कह दिया और उन पर एहसान न मानने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के अनुसार लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर इजरायली कार्रवाई जारी रही तो वो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत छोड़ सकता है। ईरान ने अमेरिका के साथ सीज फायर वार्ता फिलहाल रोक दी है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक तेहरान ने कहा कि जब तक लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुकते तब तक मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। रिपोर्ट के अनुसार ईरान का कहना है कि लेबनान में शांति बनाए रखना सीज फायर की अहम शर्तों में शामिल था, लेकिन अब लेबनान समेत कई मोर्चों पर इस समझौते का उल्लंघन हो रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत नेपाल सीमा से जुड़े नेपाली पीएम बालेन शाह के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच करीब 98% सीमा का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है, लेकिन कुछ हिस्सों पर अभी भी सहमति बननी बाकी है। उन्होंने बताया कि गंडक नदी का रास्ता बदलने की वजह से कुछ इलाकों में सीमा से जुड़े सवाल पैदा हुए हैं। और अब रुक कर लेते हैं भारत से जुड़ी खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के गहन सरथल और माछीपाल इलाके में मंगलवार को बादल फट गए। सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक रेडक्रॉस, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर भेजी गई, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इधर मौसम विभाग ने बताया कि मानसून 4 जून को केरलम के तट पर पहुंच सकता है। पहले 26 मई को केरलम पहुंचने का अनुमान था। मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है और अगले 1.5 महीने में पूरे देश को कवर करता है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नया खुलासा किया। एनआईए के मुताबिक हमले में शामिल आतंकियों का 28 जुलाई को एनकाउंटर हुआ था। इसके पास से ऑरेंज कलर का एक रेड एमआई 90 और एक ब्लैक कलर का रेड एमआई नोट 12 बरामद हुआ था। एनआईए के मुताबिक दोनों फोन की जानकारी निकाली गई। इनमें सामने आया कि मोबाइल 2021 और 2023 में चीन की कंपनी की सप्लाई चेन के जरिए पाकिस्तान पहुंचाए गए थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत और अंत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को बजाने या गाना अनिवार्य करने पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे गैर जरूरी और लोगों के लिए बोझिल बताया। केरल के तिरुवनंतपुरम में थरूर ने कहा, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, जब इसे गाया जाता है तो हम सम्मान में खड़े हो जाते हैं। इसका पहला छंद या पहले 2 छंद ज्यादातर लोगों को जुबानी याद होते हैं। थरूर ने बताया कि पारंपरिक रूप से गीत किसी कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार गाया जाता था, तो वहीं राष्ट्रगान अलग से कार्यक्रम के आखिर में बजाया जाता था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को केस स्टडी में शामिल करने जा रहा है। वैभव मॉडल पर देश की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी। इसमें खेल मनोविज्ञान प्रबंधन के एक्सपर्ट मिलकर छोटी उम्र में बड़ी सफलता का फॉर्मूला खोजेंगे। 15 साल के वैभव आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक 72 छक्के मारकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। उनकी हैरतअंगेज बैटिंग की दुनिया कायल है। अब आईआईएम इंदौर उनके सक्सेस फॉर्मूले को डिकोड करने पर काम शुरू कर रहा है। उत्तराकाशी में ट्रैकिंग के लिए गई नैनीताल की युवती का 4 दिन से कोई पता नहीं लग पा रहा। बबीता पांडे की नाम है इस युवती का। उसकी तलाश के लिए सेना, पुलिस और वन विभाग की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। ड्रोन के जरिए भी इस दुर्गम इलाके को छाना जा चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी डेब्यू फिल्म गैंगस्टर को लेकर बताया कि वो फिल्म देखने के बाद उनके माता पिता खुश नहीं थे और फिल्म के कुछ सीन को लेकर चिंतित थे। अपनी आगामी फिल्म भारत भाग्य विधाता के प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस ने बताया, गैंगस्टर देखने के बाद मेरे पिताजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर मैंने माता जी से पूछा, मम्मी आपको मेरी फिल्म कैसी लगी? तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे समाज में तुम अभी बहुत छोटी थी, अंडर एज भी थी, तुमसे इस तरह के सीन करवा लिए गए, यानी वो नाराज थी। एक्ट्रेस ने कहा, मैंने कहा, जवाब दिया अपनी माँ को, पूरी फिल्म में आपको वही सीन दिखे। सच कहूँ तो उस घटना के बाद कंगना रनौत का ये कहना है कि उनका दिल टूट गया था। उन्होंने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा कि पेरेंट्स ने उस फिल्म को इस तरह देखा, क्योंकि वे लोग सोच रहे थे कि समाज क्या सोचेगा कि उनकी बेटी कैसी फिल्में कर रही है। असल में सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि कोई क्या कहेगा, और यही चिंता जो है वो हमें आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा रोकती है। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
2: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, जिंदगी एक ही है और चॉइस हमारी होनी चाहिए कि जिंदगी में हम कितना खुश रह सकते हैं। आज हमने हैप्पीनेस की बात की, तो कल भी हम हैप्पीनेस की बात करें, परसों भी हैप्पीनेस की बात करें। तो कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। अगर पैसा आपके पास कंसिस्टेंटली आता रहता है ना, तो हैप्पीनेस और सारी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं और आपकी ज़िंदगी एक परफेक्ट लाइफ होती है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे ऐसी परफेक्ट लाइफ चुनना? आई एम श्योर चाहेंगे। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेकर हम हाजिर हुए हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर, और क्योंकि हम यहाँ पर मस्ती और फन की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं आपकी लाइफ भी ऐसी हो जाए। विन लाइफ टाइम का रुख करेंगे और वहां से एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राफी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: गुड, गुड, वेरी वेल। गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू सो मच राफी जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगर मैं कहूं कि एक लाइन में सम अप करें कि विन लाइफ टाइम किस तरह का इंस्टीट्यूशन है और यहां पर किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?
2: अगर कल आने वाले वक्त में आपको ये स्ट्रेस ना हो कि आपकी इनकम कहाँ से आएगी, तो विन लाइफ टाइम पे आए, सीखें कि हम आपको कौन सा बिजनेस सिखा सकते हैं, ये है विन लाइफ टाइम।
1: हाउ नाइस, क्या बात है कि मतलब अगले दिन उठकर सोचना ना पड़े कि आज क्या करें। रोज हम कहते हैं ना, कुआं खोदो और उसमें से पानी पियो, तो कोई चीज ऐसी होनी चाहिए ना कि बस स्मूथ चलती रहे हमारी लाइफ में, तो ऐसी स्किल हमें आ जाए। तो क्या ये स्किल इस लेवल पे पहुंचना, खैर आपका लेवल तो मेरे ख्याल से बहुत ही ऊंचा होगा क्योंकि यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर सो लॉन्ग नाउ, लेकिन अगर मैं बोलूं सब्सटेंशियली गुड अमाउंट कमाने के लिए कितना वक्त देना पड़ता है?
2: कुछ लोग 14 दिन में सीख जाते हैं, मोस्ट यूजर्स wow. हमारा सॉफ्टवेयर 3 माह के अंदर अंदर सीख लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा एग्रेसिव आते हैं लर्निंग के मोड में, 4 आपकी क्लासेस होंगी, सिखाया जाएगा इन पर्सन, और उसके बाद आपके पास 8 मेंटर्स हैं, एक्सपर्ट सुपरविजन के साथ आप बैठ जाएंगे। खुद से आपने कुछ करना नहीं है, ना आपको इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए, ना आपको, तो सारी की सारी चीजें हम टेक केयर करेंगे। आपने सिर्फ आके फॉलो करना है, हमारे सिस्टम को देखना है, और फिर एवरी डे 100, 200, 300, आज भी हमने जो रिजल्ट्स अनाउंस किए, सिंगल डे 24 आवर्स, $1,500।
1: अमेजिंग, अमेजिंग, क्या बात है, ब्यूटिफुल। तो इसके लिए राफी जी, जैसा आपने कहा कि किसी तरीके का प्रायर एक्सपीरियंस या कोई स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी नहीं है, तो अगर मैं पूछूं कि जो भी हम ट्रेडिंग सीखते हैं, जो भी पैसा इसमें लगाते हैं, तो क्या उसके लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए इस काम को करने के लिए, रिस्क लेने के लिए?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी एक वाहिद फर्म है, हम कहते हैं कि ट्रेडिंग में आप आए और बिल्कुल अपना पैसा लेके नहीं आना, अपनी हार्ड एंड हनी आपने किसी और कारोबार से बनाई है, अपने ट्रेडिंग में नहीं डालनी। हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो आपको एज ए ट्रेडर राइट अवे एज ए कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेती हैं, हम उनके साथ अफिलियेटेड हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ट्रेड करना है।
1: ओह वेरी नाइस। तो राफी जी, आपका जो सेमिनार होने लगा है सैटरडे, उसके लिए जरूर बता दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लिसनर्स पहुंचें और अपनी जिंदगी परफेक्ट कर लें।
2: जी ऑफ कोर्स, बिकॉज इस 5 मिनट के इंटरव्यू में पूरे वीक में चलता है, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारा सेमिनार वेल ओवर 3 to 4 आवर्स जाता है, और हमारा क्लेम है कि इस दोनों ऑफिसेज में होगा इस सैटरडे। आप आए, जब तक आपका आखिरी क्वेश्चन नहीं खत्म होगा हम पोडियम नहीं छोड़ेंगे।
1: वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो वेल दोस्तों, 10 नंबर के फासलों पर है आपकी खुशी, आपकी एक ब्यूटीफुल सी लाइफ। कॉल कीजिएगा विन लाइफ टाइम में टू बुक योर फ्री सीट, नो ऑब्लिगेशन सीट फॉर द सैटरडे सेमिनार विच इज हैपनिंग इन द हार्ट ऑफ मिसिसागा, सैटरडे एट 1 PM। 9052061008, 9052061008, और विजिट winlifetime.com। थैंक यू सो मच राफी जी, फिर आपसे जुड़ेंगे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।
2: Thank you, G. Take care.
3: Jamming as much variety into your workday as possible. Radio Resync complete.
4: Hit music.
3: Hit after hot hit.

0: अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
0: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekin. I have first-time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर हैं और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
8: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
9: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
10: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: बिल्कुल दोस्तों, जब डेट की परेशानी आती है तो आपको एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए होती है जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहे शुरू से लेकर एंड तक, और जो आपकी डेट की जो साइज़ है वो धीरे धीरे धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए और आप जो है मंथली स्मॉल बहुत आसान सी सीधी सी किश्तें बनाकर अपना ज़िंदगी आप आगे बढ़ाएं एक चैन के साथ, टेंशन फ्री। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे साथ जुड़ेंगे आयशा मुनव्वर जी जो रिनाउंड इंसॉल्वेंसी एंड क्रेडिट काउंसलर हैं, और आपको बताएंगे कि कैसे सही प्लानिंग और सही लीगल ऑप्शंस के थ्रू आपको मिल सकता है मैक्सिमम डेट रिलीफ। नंबर है 416-428-2165। आयशा जी, आपका शो पर स्वागत है।
3: थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन एयर। सबसे पहले तो मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता दूं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, इसके अलावा जो है बैंक्रप्सी में भी हम हेल्प आउट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक्रप्सी जो है वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन हो, दैट कैन बी ऑलवेज अ लास्ट ऑप्शन। देर आर ऑप्शन जिसमें आपको बैंक्रप्सी नहीं करनी पड़ती और क्रेडिट भी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिव्यू करते हैं, असेस करते हैं, देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी किस चीज़ में है, कौन सी चीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हर पर्सन की ऑप्शन जो है वो सारी नहीं हो सकती। सो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंसेस, डिपेंडिंग ऑन योर एसेट्स एंड एवरीथिंग, वी हैव टू फर्स्ट रिव्यू एंड सी एंड वी हैव टू एडवाइज यू, और उसके बाद फिर हमें वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। हम वन एंड वन आपके बिहाफ पर जो है वो बैंक्स के साथ नेगोशिएट करते हैं, सेटल करते हैं आपके लिए मैक्सिमम डेट रिलीफ, और उसमें यह है कि आपके जो एसेट्स हैं उनको भी लीगली प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपका घर हो गया, गाड़ियों हो गई बल्कि कारोबार हो गया, इसके अलावा RRSP, RESPs हो गए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेव रहती हैं और एक ऐसी ऑफर बैंक्स को ऑफर की जाती है जो कि इजीली वो एक्सेप्ट भी कर लें और आपके एसेट्स को टच ना करें, और उसमें कलेक्शन कॉल्स रुक जाती हैं, इंटरेस्ट रुक जाता है, छोटी पेमेंट्स बन जाती हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड की, तो आप इजीली उसको जो है वो मैनेज कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है अपॉइंटमेंट्स आर ऑल फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल, व्हाट यू कैन डू, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट मेरे साथ रख सकते हैं। वेरियस लोकेशंस हैं, ईजी टाइमिंग्स हैं हमारी, लाइक फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, लेट इवनिंग अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, वीकेंड की भी अवेलेबल हैं, बट बाय अपॉइंटमेंट ओनली। और उसमें यह है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट पर्सन और राइट पीपल जो है उससे एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत हाथों में अपने फाइनेंसेस दे देते हैं तो कई दफ़ा इजी सिचुएशन जो होती है उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और वो फिर कई दफ़ा जो है बैंक्स जो है उनके अप्रूवल्स जो हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए डोंट फॉरगेट, यू नो द बैंक्स हैज़ टू गिव एन अप्रूवल एंड इट हैज़ टू बी अ फेयर और जो कहते हैं लिजिमेट जो आपकी होनी चाहिए ऑफर, के जिसको वो एक्सेप्ट कर लें और प्रॉब्लम ना बनाए। बट एनीवेज, फॉर मैक्सिमम डेट रिलीफ यू कैन give us a call. My phone number is 416-428-2165. That is 416-428-2165. Thank you very much.
2: बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों नंबर फिर से 416-428-2165। सही गाइडेंस के साथ आपको मिलेगा मैक्सिमम रिलीफ और मिनिमम स्ट्रेस।
4: बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना, शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना।
2: तो दोस्तों, आज का लेटेस्ट गाना आप तक पहुंचाया जा रहा है यश विंडोज एंड डोर्स के सौजन्य से, और अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स से जरूर बात करें। ऑल ओवर ऑन्टारियो सर्विसेज देते हैं, खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और इनकी जो एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम है आपकी प्रॉपर्टी पर जाकर इंस्टॉल करती है. अमेजिंग स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, एवरीथिंग कम्स टुगेदर. स्टाइल, सेविंग और सिक्योरिटी सब कुछ एक साथ है. और इसके अलावा अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, दे हैव ग्रेट फ्रेंचाइज ऑप्शंस अवेलेबल. आप एक फास्ट ग्रोइंग टीम का हिस्सा बन सकते हैं. आज ही कॉल करें धर्म जी को 416-732-3600. That's 416-732-3600. और आप तक पहुंचाते हैं आज के लेटेस्ट देओल ट्रैवल के डील्स. और देओल ट्रैवल भी ये गाना को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आज का लेटेस्ट गाना जो आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं. और लेटेस्ट इनके जो डील्स हैं वो आप नोट कीजिए, बिफोर मिड जून आप जा सकते हैं टोरंटो से दिल्ली 849 में वन वे दो लगेज के साथ, और आफ्टर मिड जून 999 में वन वे विथ टू लगेज टोरंटो से दिल्ली. नाउ टोरंटो से दिल्ली स्पेशल प्राइस है इन जुलाई 1049 वन वे दो लगेज के साथ. लिमिटेड टाइम डील्स, लास्ट मिनट डील्स आर आल्सो अवेलेबल. टू लोकेशंस टू सर्व यू, एटोबिको एंड ब्रैम्पटन. देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200. और ये जो लेटेस्ट गाना है आप तक हम पहुंचा रहे हैं, एक बहुत ही अमेजिंग सा गाना है एंड आई एम श्योर यू विल फॉल इन लव विद द सॉन्ग. दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द न्यू मूवी है जवानी तो इश्क होना है. है जवानी तो इश्क होना है, बात भी सही है. और तेरा हो जाऊं ये बहुत प्यारा सा गीत है, आज से एंट्री कर रहा है मस्ती की रेलगाड़ी पर.

0: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media. दोस्तों आपका फिर से वेलकम करती है शालिनी शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी सीएमआर एफएम 101.3 और आज की लोकल न्यूज पर हम डालते हैं एक नजर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिएक्शन से। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा को लिए गए बयान पर करारा जवाब दिया है। फोर्ड ने साफ कहा कि कनाडा कभी 51st स्टेट नहीं बनेगा, कनाडा इज नॉट फॉर सेल। ये बयान तब आया जब ट्रंप ने कनाडा की इकोनॉमिक सिचुएशन पर तंज कसते हुए 51st स्टेट का बात कही। और इसी बीच प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने भी इकोनॉमी को लेकर बयान दे दिया है। उन्होंने माना कि चैलेंजेस हैं, लेकिन रिसेशन शब्द का इस्तेमाल करने से बचते हुए कहा कि सरकार एक स्ट्रॉन्गर और एक रेजिलियंट इकोनॉमी बनाने पर काम कर रही है। चलते हैं अब क्राइम अपडेट की तरफ। यॉर्क रीजनल पुलिस एक सस्पेक्ट की तलाश कर रही है जिस पर अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस हैं। ये मामला रिचमंड हिल में हुए एक रोड रेज इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है, जहां यंग स्ट्रीट और मे एवेन्यू के पास एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया। विक्टिम को गंभीर चोटें आईं, लेकिन थैंकफुली उनकी जान को खतरा नहीं है। अब ड्राइवर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। गैस प्राइसेस फिर से बढ़ने लगी हैं। एनर्जी एनालिस्ट के मुताबिक जीटीए में गैस की कीमत ओवरनाइट करीबन 8 सेंट्स प्रति लीटर बढ़कर 177.9 सेंट्स प्रति लीटर तक पहुंच सकती हैं, जो आगे भी थोड़ा और बढ़ने की पूरी संभावना है। अब बात ओंटारियो पॉलिटिक्स की। प्रोविंस की लेजिस्लेचर अब 21 हफ्तों के लंबे ब्रेक पर जा रही है और अगला सेशन अब अक्टूबर के अंत में शुरू होगा। ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है कि सरकार डिबेट और अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए लेजिस्लेशन टाइम कम कर रही है, जबकि सरकार का ये कहना है कि स्केजुअल म्युनिसिपल इलेक्शंस के चलते बदला गया है। और अब अंत में नजर डाल लें आज के मौसम के ऊपर। आज के मौसम का हालचाल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्राइट एंड शाइनी स्काई है और आज का जो ओवरनाइट लो है वो जा सकता है रात के 11 बजे 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सुनते रहिए शालिनी के साथ शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन सीएमआर एफएम 101.3। गुड आफ्टरनून, आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812।
1: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अन्ना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देन के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
2: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
1: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
2: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन।
1: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Don Platinum, the better grease getter.
6: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekin. I have first-time home buyers clear an amazing opportunity. Free whole town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
7: Aap sun rahe hain Sean Express on CMR FM 101.3. Sean Express, music jo kare aapko impress.
8: वेल दोस्तों, आपका एक बार फिर से वेलकम करती है शालिनी शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3। और आज बहुत सारे लेजेंड्स हैं अपना बर्थडे मना रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आज बर्थडे है इलई राजा का, और इलई राजा के बारे में कहा जाता है बहुत कुछ, और इतने ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं ये, और म्यूज़िक लेजेंड के तौर पर इन्हें जाना जाता है, जिनके बिना इंडियन सिनेमा का जो म्यूज़िक है वो अधूरा सा लगता है। एक ऐसा नाम जिसने मेलेडी, इमोशन और सोल को एक साथ जोड़कर मैजिक क्रिएट किया।

और इंडियन क्लासिकल फोक और वेस्टर्न म्यूजिक को मिक्स करके एक नया साउंड इन्होंने क्रिएट किया इलैयाराजा ने। और इसके साथ साथ आज बर्थडे कौन कौन मना रहे हैं वो भी आपको हम बता दें, बहुत सारे और कलाकार बर्थडे मना रहे हैं। एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कौन है अगले कलाकार जो मना रहे हैं अपना बर्थडे। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी CMRFM 101.3 स्टे ट्यून्ड।

जी दोस्तों, बात कर रहे थे हम एक रिनाउंड म्यूजिक लेजेंड के बारे में जिनका नाम है इलैयाराजा। आज उनका बर्थडे है और 1970s और 80s का जो एरा था वो इलैयाराजा के म्यूजिक का गोल्डन पीरियड माना जाता है। और इनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं वो सिंपल होते हुए भी डीप इमोशन से भरी हुई रहती हैं, जो दिल को सीधे छू लेती हैं। तो ऐ जिंदगी गले लगा ले, यही गाना आपकी नजर करते हैं CMR FM 101.3 पर मस्ती की रेलगाड़ी के साथ।

0: भाई, जिंदगी को आप गले लगाना चाहते हैं, जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपकी हेल्थ भी तो अच्छी होनी चाहिए, आपकी बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप मेंटली हैप्पी रहेंगे, फिजिकली हैप्पी रहेंगे, और फिर जिंदगी को आप गले से लगाएंगे खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, स्माइल के साथ। और ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं जब आप मिलते हैं उस इंसान से जिनको हम आप तक पहुँचा रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, पूरे 9 जनरेशन का अनुभव है। आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत सारी जानकारियों के साथ। और आइए दोस्तों, जिंदगी को गले से लगाते हैं खुशी के साथ। गुरुजी नमस्कार, वेलकम टू द शो।
1: नमस्ते नमस्ते जी, मैं बहुत अच्छा है, भगवान के आशीर्वाद से।
0: जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी हमसे जुड़ने के लिए। और बस आपकी दवाइयों में तो चमत्कार है ही, साथ ही आपका जो आपकी जो पर्सनालिटी है, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, जो जो एक हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ लोगों से मिलते हैं, तो लगता है
1: यस
0: आधी बीमारियां तो वैसे ही चली जाती हैं, उसके बाद दूसरा नंबर आता है आपकी दवाइयों का।
1: सही बात। मेरा दादा, मेरा मेरा वो पहले का वैद्य कोई भी बताता है, हम
0: जी
1: एक पेशेंट के साथ पेशेंट को डरने को बात नहीं बताना है। बड़ा प्रॉब्लम हो तो भी कुछ नहीं होता है भाई, ठीक हो जाएगा। वैसे आस्था से उसको हिम्मत से आधा रोग ठीक हो जाता है, आधा रोग दवा से ठीक हो जाता है।
0: वाह क्या
1: वही हमको
0: बात।
1: हिम्मत देना है, लोगों को वो फॉल डाउन नहीं करना, हिम्मत देना है पेशेंट को।
0: दैट्स
1: पेशेंट
0: राइट।
1: ऑलरेडी जो ऑलरेडी ये पेशेंट बहुत वीक हो के बहुत वीक में होता है, उस टाइम हम वीक में डाले तो उसको 1 साल रहने वाला आधा साल में जाएगा।
0: सही बात है, बिल्कुल।
1: हिम्मत दे तो आधा साल रहने वाला था, 5 साल तक रहेगा।
0: ओ वाह,
1: वैसा
0: हाँ हाँ
1: वैसा होता है। मैं ये काम में ये मैं ये कुछ सेवा तरफ हमारा लोगों को, हमारा कम्युनिटी लोगों को, हमारा इंडियन लोगों को, हमारा पाकिस्तान लोगों को, हमारे एशियन पीपल्स को ठीक होने के लिए हम इधर आ गया था, भगवान भेज दिया था। ये क्या होता है बहन जी, हमारा पूर्विक है, 5000 ईयर्स, 1000 ईयर्स के पहले का ये आयुर्वेद आता है।
0: जी
1: आपको मालूम है 80-90 साल के पहले इंडिया में MBBS डॉक्टर बहुत कम था।
0: बिल्कुल जी
1: तब लोगों को बीमार हुए तो वो जाता है हकीम के पास, वो जाता है वैद्य के साथ। वैसा
0: बिल्कुल
1: फैमिली से मैं आ गया था,
0: बिल्कुल। वाह
1: वैसा
0: क्या
1: फैमिली से मैं
0: बात
1: आ
0: है।
1: गया। या अभी भी मैं सेम ही, तब मेरे दादा लोग क्या किया था वही, मेरे पापा लोग क्या किया था वही मैं अभी भी कर रहा है। सच्ची हेल्पर ये हेरबल्स सारा लेकर आता है, वो ओनली फॉरेस्ट से, ओनली प्रकृति का मास है। प्रकृति से ये उसका फार्म नहीं करना, घर में नहीं आना है, वो प्रकृति से आना है। इसलिए मैं वो हिमालय, श्रीलंका, अरुणाचल प्रदेश, केरला, सिक्किम, वैसा वैसा जगह को जाके मेरा टीम से जाके उधर से ज्यादा ज्यादा वो जड़ी बूटी लेकर आके उसको प्रोसेस करके उससे हम इलाज करता है हर व्याधि लेके।
0: अच्छा, वेरी
1: ये
0: नाइस।
1: कनाडा में हमारा लोगों को क्या होता है, इधर क्लाइमेट के लिए एंड फूड के लिए एंड रहने के लिए वो, इसलिए कि स्ट्रेस लाइफ में ज्यादा लोगों को बॉडी ओबिसिटी हो जाता है, ताकत कम हो जाता है,
0: जी
1: जॉइंट में दर्द आता है, कमर में दर्द आता है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो जाता है, निक नेक नेक में प्रॉब्लम आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, एंड नर्व्स वीकनेस हो जाता है, मसल्स वीकनेस हो जाता है, सयाटिका
0: बिल्कुल
1: हो जाता है, आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड गाउट आ जाता है। वैसा लोगों को इधर ज्यादा है हमारा कनाडा में, हमारा लोग उसको हम बहुत अच्छा अच्छा इलाज है आयुर्वेदिक, हमारा हेरबल से। मैं आयुर्वेदिक नहीं करता है, हेरबल से करता है।
0: क्या
1: सच्ची
0: बात है।
1: सच्ची प्रकृति वन वो उसका बोलता था है नेचुरल हेर्ब्स, ये हेर्ब्स में लेकर आके उससे मिला करके देता है।
0: अरे वाह क्या
1: हमारा शो सुन के बहुत बहुत लोग आ गया, सारा सारा
0: बात,
1: लोग ठीक हो गया था भगवान आशीर्वाद से। आप लास्ट
0: वेरी
1: वीक भी
0: नाइस।
1: मेरे को देखने के लिए आइए, कितना लोग बैठ गए आपको मालूम है,
0: बिल्कुल गुरु जी, और
1: मालूम है
0: दैट्स
1: कि वैसा लोगों भी
0: राइट।
1: हमको फीडबैक भी अच्छा दे रहा है। सारा ऊपर वाला का आशीर्वाद है माँ को, सारा ऊपर वाला का आशीर्वाद है।
0: वेरी नाइस गुरु जी। और हमारे अगर लिसनर्स आपसे मिलना चाहें गुरु जी तो कहाँ मुलाकात हो सकती है और कितनी जल्दी आपसे मिलकर? एक चीज और है, आपकी दवाइयों में असर इतना ज्यादा है कि बड़ी जल्दी असर करती हैं, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से लोग आपसे मिलें और जल्द से जल्द अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल लें, तो कहाँ मुलाकात हो सकती है गुरु जी?
1: यस जी वो मैं तो वीकली में 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन में स्कारब्रो में रहता है, 4 दिन ब्राम्पटन में रहता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। और किसी को चाहे तो मेरा नंबर को कॉल करे तो एड्रेस मैं भेजूंगा। किसी को भी बीमार के लिए हमारे पास 100% पक्का हमारे पास इलाज है भगवान आशीर्वाद से।
0: अरे वाह, अमेजिंग। तो गुरु जी नाम आपका जो नंबर है वो मैं फिर से बता दूं दोस्तों, 437-438-3399। बहुत आसान नंबर है, या नंबर आप मुझसे कभी भी ले सकते हैं, 437-438-3399। आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरु जी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं शो पर हमेशा, और आप लोगों की हर एक हेल्थ रिलेटेड इशू का गुरु जी के पास है फास्ट एंड ईजी सोल्यूशन। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, नमस्कार।
1: थैंक यू नमस्कार जी।
0: हाँ वेल दोस्तों, आज के शो में झड़ी लगी हुई है बर्थडेज की, और अभी मैंने बताया इलाई राजा का बर्थडे है, और अब बात एक ऐसे फिल्म मेकर की जिनकी फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, फील की जाती हैं। एक ऐसे फिल्म मेकर जिनकी फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, फील की जाती हैं, एक ऐसा नाम जिन्होंने इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दी है। हम बात कर रहे हैं विजनरी डायरेक्टर मणि रत्नम की। इन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव दिया है इंडियन सिनेमा को। इनकी फिल्मों में इमोशंस हैं, विजुअल्स हैं, म्यूजिक है, तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया और वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्रिएट किया है इनकी फिल्मों ने।

बॉलीवुड की क्वीन कहे जाने वाली सोनाक्षी सिन्हा का, और इनकी एंट्री जो है बॉलीवुड में बहुत ही धमाकेदार रही है। और देसी स्वैग, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस एंड कॉन्फिडेंट स्टाइल है इनका, और ये सब एक साथ नजर आता है सोनाक्षी सिन्हा में। ब्यूटिफुल एंड टैलेंटेड सोनाक्षी सिन्हा का भी आज बर्थडे है, और बॉलीवुड में डेब्यू किया एक ब्लॉकबस्टर फिल्म से, और ऐसी फिल्म जिसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। फिल्म का नाम दबंग। इसमें थी ये रज्जो के कैरेक्टर में, सिंपल देसी एंड लवेबल। इंस्टेंटली रज्जो का कैरेक्टर हिट हो गया, और साथ ही सुपर हिट हो गई सोनाक्षी सिन्हा। बहुत सारी फिल्मों में नजर आई। टॉप फिल्मों की बात करें तो दबंग, राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार, लुटेरा, अकीरा, ये सारी फिल्में एक से बढ़कर एक रही। आइए उनको ट्रिब्यूट देते हैं अपने अगले गाने के साथ, फ्रॉम द मूवी दबंग, तेरे मस्त मस्त नैन। एंजॉय।

तेरे मस्त मस्त दुनैन मेरे दिल का ले गए चैन। और जब आपके घर कोई आएगा ना यार आपके ऑफिस में, तो बस इतना मस्त मस्त एम्बियंस नजर आएगा अगर आप यश विंडोज एंड डोर्स से अमेजिंग सी विंडोज एंड डोर्स इंस्टॉल कराते हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और इनके अपने इंस्टॉलर्स जाके आपकी प्रॉपर्टी पर इंस्टॉल करते हैं विंडोज एंड डोर्स। ऑल ओवर ऑन्टेरियो में सर्विसेज देते हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स बनते हैं यश विंडोज एंड डोर्स के तरफ से, और रीजनेबल प्राइस है और सुपीरियर स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, एवरीथिंग टुगेदर, प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करती है। और फ्रेंचाइज ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो यश विंडोज एंड डोर्स का रुख आप ज़रूर कर सकते हैं। और धर्म जी से बात करें 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600। अगर आप चूहे, खटमल, कॉकरोच और इसके साथ वाइल्ड लाइफ से परेशान हैं, तो वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पेस्ट कंट्रोल करते हैं। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है। अयान काश्य जी से बात करें 647-966-4355, 647-966-4355। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको घर में किसी भी तरह की इंस्टॉलेशन करानी है, होम रिपेयर कराना है, इंटीरियर या एक्सटीरियर, किचन में कोई काम कराना है, बाथरूम्स को रेनोवेट करना है, बेसमेंट में काम है, आपकी

0: डेक बनवानी है, अप्लाइंसेस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ड्राई वॉल फ्लोर वर्क आपको कराना है, पेंटिंग फिनिशिंग कुछ भी कराना है, तो अजीम से ज़रूर बात करें और ही गेट्स इट डन राइट द फर्स्ट टाइम. ग्रेट रिव्यूज़ हैं. नंबर है 647-280-8806. और देओल ट्रैवल की आज की लेटेस्ट डील्स आपको फिर बता दें, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी जा सकते हैं देओल ट्रैवल से बात करके. लेटेस्ट फेयर है, टोरंटो से दिल्ली आप जा सकते हैं बिफोर मिड जून 849 में वन वे विथ टू लगेज, टोरंटो से दिल्ली 999 में वन वे विथ टू लगेज आफ्टर मिड जून, और जुलाई में टोरंटो से दिल्ली $1,049 में one way with two luggage. Two locations to serve you, Brampton and Etobicoke. They will travel 905-588-5100 and 905-588-4200, 588-5100 and 588-4200. Chhota sa tiny sa commercial break lenge dosto, uske baad ek aur bahut pyara sa gana aapki nazar karenge. Aaj hai Mani Ratnam ka birthday aur inhi ke dwara composed ek bahut pyara sa gana, aapki nazar.
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
2: कैंपिंग दा प्लान ता मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उथे. जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आईफोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े. रेड टैग डेज दा लाभ लाओ, लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% $4900 डाउन दे नाल. विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
3: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
2: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड।
3: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232-890-3232।
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
4: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

मास्टर ऑफ रियलिस्टिक सिनेमा कहे जाते हैं मणि रत्नम, जिनका बर्थडे है और रोजा के इस ब्यूटीफुल गाने के साथ छोड़े जाते हैं। और वादा रहा कल फिर 3 से 4 मिलेंगे मस्ती की रेलगाड़ी पर। शो के बाद नंबर 416-569-7812, 416-569-7812। टेक केयर एंड कल तक के लिए दें इजाजत। नमस्कार।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम।
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM।
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी मित्र भाइयों, ये तो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम। थ्री चीयर्स टू जिंदगी, थ्री चीयर्स टू जिंदगी, जो है छोटी सी पर है बहुत कीमती। रूठी रूठी जिंदगी को मना लेंगे, रूठी रूठी जिंदगी को मना लेंगे, खोई खोई खुशियों को फिर से बुला लेंगे। हाँ जी बिंद्र भाइयों, अगर खुशियां दूर गई है तो वापस आनी ही है, लेकिन अपनी खुशियों की चाबी किसी और की जेब में मत डालिएगा। हंसते रहिएगा और हंसाते रहिएगा। ये डो वॉइस, हम हैं आपके ही दोस्त जतीन। बस कहते रहिएगा, लव यू जिंदगी।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: इसके पीने पे तगिया तुम्हें रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए।
5: वाह मॉम, डैड इज इन अ जॉली गुड मूड टुडे, व्हाट इज द रीजन?
6: दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ फेमस मसाला चाय बाय नेविगेटर्स कैफे।
5: आई नो दिस प्लेस, दे आर आल्सो फेमस फॉर डिलीशियस स्नैक्स लाइक आलू पेटीज, समोसा, वड़ा पाव, स्प्रिंग रोल्स, मैंगो लस्सी एंड माय फेवरेट समोसा चाट एंड भेल।
7: नेविगेटर्स कैफे लोकेटेड एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ क्वीन स्ट्रीट ईस्ट एंड एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। दे आर कन्वीनिएंटली ओपन 24/7।
1: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
8: जी बिंदर भाइयों, ये रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। बिंदर भाइयों, कर्जे से बाहर आना है, सिद्दीक साहब से बात कीजिए। कर्जे की और जाना ही नहीं है तो भी सिद्दीक साहब से बात कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन एडवाइस देते हैं, सालों का एक्सपीरियंस और जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। नंबर टू डायल इज 416-671-0577 416-671-0577। सिद्दीक साहब, आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं आज किस बात पर आप फोकस करना चाहेंगे। ओवर टू यू सिद्दीक साहब।
9: जी जतिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। बिल्कुल, अगर किसी को भी किसी किस्म का कोई कर्जों का इशू है, चाहे वो पर्सनल कर्जे हैं, बिजनेस के कर्जे हैं, छोटे कर्जे हैं या बड़े कर्जे हैं, मेरा मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं या एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, अपना पैसा इंटरेस्ट में ज़ाया ना करें। और अगर मुझे उसके लिए मुझे आप कॉल करेंगे तो मैं आपको कई ऑप्शंस दूंगा इसमें, जिससे आपके आपका इंटरेस्ट कम हो सकता है या बिल्कुल वाइप ऑफ हो सकता है और आपको रिलीफ भी मिल सकता है। उसके लिए नंबर है 416-671-0577 पे कॉल करके, चाहे आप फोन पे इंफॉर्मेशन ले लें या मेरी किसी भी लोकेशन पे आके मुझसे मिल सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है, प्राइवेसी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। मैं खुद आपके साथ बैठूंगा, आपका केस रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या आपको रिलीफ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर रिलीफ लेना है तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा और क्यों बेहतर रहेगा और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। अगर रिलीफ नहीं लेना तो कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए ताकि आगे आपका पैसा इंटरेस्ट में ज़्यादा ज़ाया ना हो और आपके एसेट, चाहे आपके घर, आपके नाम पे घर हैं, गाड़ियां हैं, RSP हैं, RESP, बिजनेसेस, इन तमाम चीज़ों को लीगल तरीके से सेव करते हुए हम आपको डेट फ्री करने में हेल्प करते हैं। कुछ आप लूज नहीं करते, सब कुछ एज इट इज़ आपके पास रहता है और आप आसानी से डेट फ्री हो जाते हैं। कर्जा चाहे आप पे क्रेडिट कार्ड्स का है, लाइन ऑफ क्रेडिट हैं, पर्सनल लोन्स हैं, पेडे लोन्स हैं या बिजनेस के लोन हैं या इनकम टैक्स का मामला है, CRA के साथ पर्सनल बिजनेस पर्सनल इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग है या बिजनेस का GST, पेरोल, वे सब्सिडी आउटस्टैंडिंग है या कोई हैस कैप सिविल लोन लिए थे, पे नहीं कर सके वापस आप और CRA आपके पीछे आ रहा है, या कोई कार, ट्रक या ट्रेलर फाइनेंस किया था, पेमेंट नहीं कर सके, उठा के ले गए, या पेमेंट नहीं कर सकते, वापस करना चाहते हैं, या कोई प्री कंस्ट्रक्शन कंडो या घर बुक किए थे जिनकी प्राइस कम हो गई हैं और आप क्लोज नहीं कर सकते, बिल्डर आपके पीछे आ रहा है, तो ये सारे कर्जे आपके सेटल हो सकते हैं। उसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उसमें आपको गाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम रिलीफ मिल सकता है वो क्लाइंट को मिले और बाकी छोटी छोटी किस्तों में बगैर इंटरेस्ट के वो पे करे। इसलिए अगर आप कोई सिचुएशन इस तरह की फेस कर रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 416-671-0577। टोल फ्री नंबर है 1855 671-0577। अगर लोकेशन पे विजिट करना चाहें तो स्कारब्रो में है, मार्कम एंड एलिसबर्ग के पास, इटोबिको में हमारा हेड ऑफिस है किपलिंग रेक्सल के पास, और ब्रैम्पटन में है ब्रैमली बुवेर के पास। नंबर है 416-671-0577। एक चीज़ की मैं गारंटी करता हूँ कि एक तो मेरे ऑफिस से आपको ऑनेस्ट एडवाइस मिलेगी, अगर आपको ज़रूरत हुई रिलीफ लेने की तो बताऊँगा रिलीफ लो, अदरवाइज कोई और ऑप्शन दूंगा। दूसरा, अगर मैं आपका केस रिव्यू करने के बाद लूंगा तो इस चीज़ की मैं गारंटी करता हूं कि मेरे ऑफिस से आपको कभी भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। जो आपसे वादा करूंगा पहली मीटिंग में उसके मुताबिक आपका केस अप्रूव होगा, और अगर इसमें आपका क्रेड ख़राब होता है या ऑलरेडी ख़राब हो चुका है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका क्रेडिट दोबारा रीबिल्ड किया जा सकता है, उसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हम उसमें आपको गाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, और बहुत जल्द आपको वापस क्रेडिट भी मिल सकता है। कुछ स्टेप्स लेना होते हैं जिससे आपका क्रेडिट वापस आपको मिल सकता है। उसके लिए नंबर है 416-671-0577 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी जतन भाई,
8: सिद्दीक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेंद्र भाइयों अब आपकी बारी, एक बार बात और मुलाकात जरूर कीजिएगा। सिद्दीक साहब से बात करने के लिए कॉल करें 416-671-0577। डिटेल जानकारी alldatesolutions.ca पर। ये है डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: हाँ जी मिंद्र भाइयों, रीड वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन आपके लिए रीड वॉइस फिर से शुरू कर रहा है अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट। मिंद्र भाइयों, देना होगा आपको जवाब। आप जीत सकते हैं फैमिली पास या फिर सिंगल पास अफ्रीकन लायन सफारीज के। आइए आपको बताता हूँ आज का सवाल। आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, अफ्रीकन लायन सफारी कहाँ पर है, क्या एड्रेस जानते हैं आप? अगर जानते हैं तो हमें कीजिए ईमेल contest@weeklyvoice.com। आप जीत सकते हैं अफ्रीकन लायन सफारीज के पासिस। उनकी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। ये रीड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन। डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स, एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बिंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021। डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट।
1: अनदर डॉन क्लीन विद द डॉन डक्स।
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized hai in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
5: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी।
0: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम
6: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर के फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232।
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: Radio Voice, आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
0: हाँ जी बिंद्र भाइयों, ये रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। बिंद्र भाइयों, आप जानते ही हैं कि मिसिसागा और सर्दन ओंटारियो में बेहतरीन डेंटल केयर से आपके परिवार की मुस्कान को संवारने हैं डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट। एक खूबसूरत और स्वस्थ मुस्कान के लिए आज ही 905-564 2021 905 564 2021 पर कॉल करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। और आप जानते ही हैं डॉक्टर बिश्मा जी हमारे साथ जुड़ते हैं हमारी डेंटल जो अवेयरनेस है उसे और अवेयर करने के लिए। आज सीधे चलते हैं उन्हीं के पास और जानते हैं किस टॉपिक पर आज हमें एजुकेट कर रहे हैं। डॉक्टर बिश्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज हमारे श्रोताओं को एजुकेट करें और आखिर में आपका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भी जरूर बताएं। ओवर टू डॉक्टर भीष्मा जी।
9: थैंक यू सो मच जतिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे श्रोताओं को याद होगा कि हमने काफी सारे लास्ट वीक से हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसको इम्पोर्टेंस ऑफ डेंटल क्लीनिंग कहा जाता है। तो इसमें हमने देखा कि बायोफिल्म क्या होता है, वो कैसे प्लाक डिपोजिशन दांत के आसपास होता है और वो कैसे हार्डन होता है, दांतों के बीच में जगह बनाता है और बोन लॉस करता है। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात की थी कि कितना इंटरवल, कितने फ्रीक्वेंटली आपको इंटरवल्स रखने चाहिए विजिट्स के। और साथ साथ हमने ये भी लास्ट वीक हमने कवर किया था कि मॉडिफाइंग फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि मेडिकल इश्यूज। उसमें लास्ट वीक हमने डायबिटीज़ के बारे में बात किया था, कैसे आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, गम डिजीज बहुत इजीली हो जाते हैं, जिंजिवाइटिस पेरोडोंटाइटिस में बदल जाता है, और कोलाजिनेज करके एक एंजाइम के बारे में हमने बात की थी जो गम्स को ब्रेक डाउन करता है। इसी वजह से डायबिटीज में गम क्लीनिंग और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ये सब चीज़ों के लिए। सो आज यही बातों को हम आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर। काफ़ी टाइम ऐसा पाया जाता है कि पीपल हु हैव वन इश्यू दे ऑल्सो हैव अदर इश्यू, इसको कोमॉर्बिडिटी भी बोलते हैं। कोविड के टाइम पे ये वर्ड बहुत चला था। तो डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर होता है मोस्टली काफ़ी लोगों को। तो इसमें ये इश्यूज आते हैं कि पेरियोडोंटल इन्फ्लेमेशन डायबिटीज के वजह से भी बढ़ता है, इसमें डायबिटीज की वजह से डिलेड हीलिंग होता है, बट साथ साथ हाइपरटेंशन में कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ड्राई माउथ हो जाता है मेडिकेशन की वजह से, यानी ड्राई माउथ आपका ड्राई रहता है तो कैविटीज के इश्यूज होते हैं। तो ये सारी चीज़ों में पेशेंट केयर कैसे मॉडिफाई होता है, तो सबसे पहली बात तो ये है, एवरी पेशेंट दैट कम्स इनटू आवर ऑफिस फर्स्ट थिंग वी डू इज हम ब्लड प्रेशर लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो इसमें एक दो फैक्टर्स और होते हैं, हमको ये देखना पड़ता है कि आपको स्ट्रोक की हिस्ट्री है, हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, किडनी डिजीज है, डायबिटीज है या नहीं, एंजाइना है या नहीं। तो इसीलिए मेडिकल हिस्ट्री हम सारे फिल आउट करवाते हैं आपको। पहले आपको एक फॉर्म भेजा जाता है दैट यू फिल आउट, और उसके बाद चेयर में भी हम पूछते हैं, डेंटिस्ट आके भी पूछते हैं कि क्या आपको कोई इश्यूज है। रिपीटेशन काफ़ी पेशेंट्स को लगता है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कहीं पे कुछ भी मिस हो तो कहीं पे हम इसको कैच कर सकते हैं। तो सपोज आपका ब्लड प्रेशर हाई आया हो तो वो रेंज क्या होती है, अकॉर्डिंग टू कैनेडियन गाइडलाइंस कोई भी कोमॉर्बिडिटी सीवियर रिस्क हो तो कट ऑफ है 160/100 और नॉर्मल पेशेंट्स के लिए 180/110। सपोज आप क्लीनिंग के लिए आए हो और आपका ये रीडिंग इसके आसपास रीडिंग आ रहे हैं तो फिर हमको क्या करना चाहिए, दो तीन चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर वापस जाना पड़ेगा, ये हम करते हैं कि 5 मिनट बाद हम फिर से ब्लड प्रेशर लेते हैं, डाउन आ रहा है तो वेल एंड गुड, वी आर गुड टू प्रोसीड। अगर डाउन नहीं आ रहा है तो थोड़े एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल्स भी इन प्लेस है, तो इसमें से एक होता है लाफिंग गैस, उसकी सहायता हम ले सकते हैं, वो आपकी एंग्जाइटी रिड्यूस करता है इसलिए ब्लड प्रेशर डाउन आ जाता है। और शॉर्टर अपॉइंटमेंट्स हम रखते हैं, कंफर्टेबल टाइम ऑफ द डे रखते हैं हम अपॉइंटमेंट, पेन कंट्रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप पॉकेट्स है तो हम थोड़ा सा सुन करने के बाद हम क्लीनिंग करते हैं, और कम्युनिकेशन इज एब्सोल्युटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस। फिर मेडिकेशन रिव्यू करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर के मेडिकेशंस क्या क्या है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो ये दो मेडिकेशंस के नाम आपने सुने होंगे, एमलोडिपिन या डिफेंडिपिन ऐसा कुछ, ये कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स होते हैं और ये गम की एनलार्जमेंट करते हैं, गम मसूड़े थोड़े फूले हुए रहते हैं तो फिर वहाँ पर खाना बहुत ईजिली फंसता है और वो हार्ड होते हैं काफ़ी टाइम, तो क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है और वो बैठे बैठे आपको और ज़्यादा इश्यूज कर सकते हैं। तो इसलिए एक्स्ट्रा फोकस इज देयर ऑन गम लाइन क्लीनिंग। और शॉर्ट इंटरवल रिकॉल इंटरवल हाई रिस्क में हम देख सकते हैं, यानी हाउ फ्रीक्वेंटली यू शुड कम फॉर क्लीनिंग. सपोज आपको हाइपरटेंशन है, आप रेगुलरली क्लीनिंग करवा रहे हो, इश्यू कोई नहीं है, कंट्रोल है आपका हाइपरटेंशन, आप मेडिकेशन टाइम से ले रहे हो और रेगुलर क्लीनिंग और गुड होम केयर की वजह से ज़्यादा कुछ आपको दांतों में भी उतना गम्स में इश्यू नहीं है, कैविटीज भी कम आती है, तो फिर हम एवरी सिक्स मंथ्स इज गुड इनफ, नॉट एन इश्यू. बट सपोज इसके साथ साथ आपको पेरियोडोंटाइटिस है, यानी गम डिजीज है, डायबिटीज है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, ड्राई माउथ है, काफ़ी सारे इम्प्लांट्स ब्रिजेस है और बार बार हम देखते हैं कि आपको टार्टर बिल्डअप बहुत ज़्यादा होता है, या फिर मेडिकेशन रिलेटेड गम एनलार्जमेंट है जिसके बारे में हमने बात किया, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि एवरी 3-4 मंथ्स आपको आना चाहिए. तो इसी के साथ हम यही सीरीज को नेक्स्ट वीक आगे बढ़ाएंगे और हमारा एड्रेस है 735 क्वीन एवेन्यू, यूनिट नंबर 16, मेविस और ट्वेन के इंटरसेक्शन पे, नॉर्थ ऑफ डेरी, और हमारा फोन नंबर है 905-564-2021. थैंक यू सो मच.
0: डॉक्टर भीष्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बिंदर भाइयों जरूर कॉल कीजिएगा अपॉइंटमेंट के लिए 905-564-2021 564-2021. और आप जानते ही है आपको पहुंचना है मिसिसागा में और एड्रेस बहुत ही सिंपल है, 735 ट्वेन एवेन्यू यूनिट नंबर 16 इन मिसिसागा. drgajjar.com है वेबसाइट. भीष्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. यही डो वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में पयास्विनी जी.

0: क्या आप शेरों, हाथियों और चीतों को बिल्कुल करीब से देखना चाहते हैं? तो पहुंचिए अफ्रीकन लायन सफारी, बंदर भाइयों कनाडा के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ एडवेंचर पर। पहुंचना होगा 1386 कूपर रोड, कैम्ब्रिज। आज ही टिकट बुक करें lionsafari.com पर। ये हिड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
1: रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा. मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10. वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं. कॉल करें 9057952299 या विजिट करें गुरुलक्ष्मी.com. गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का

जी आओ काका जी, आओ मामा जी, आज की ताजा खबर सुनाता हूँ। अराउंड द कैनेडा, कैनेडियन डेंटल केयर प्लान CDCP का नया सत्र शुरू हो चुका है। कनाडा सरकार ने आज से 26-27 के लिए कैनेडियन डेंटल केयर प्लान के नए आवेदन यानी कि नई एप्लीकेशन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने पहले रिन्यूअल की समय सीमा मिस कर दी थी, वे भी अब अप्लाई कर सकते हैं। इसका असर क्या होगा? सरकार के मुताबिक ओंटारियो में ही 27 लाख से ज्यादा लोग इसके दायरे में आ चुके हैं। इससे प्रति व्यक्ति औसतन $900 सालाना बचत होने की

हाँ जी आ गए। तो आइए सुनाता हूँ आज की दूसरी खबर। टोरंटो और ओंटारियो में ओरल हेल्थ के लिए नई मोबाइल क्लिनिक की घोषणा। खबर है कि सरकार ने ओरल हेल्थ एक्सेस फंड के तहत ओंटारियो में 1.6 मिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग का ऐलान किया है। इसका असर क्या होगा? इसके जरिए एक खास मोबाइल डेंटल क्लिनिक यानी कि चलती फिरती क्लिनिक बनाई जाएगी जो टोरंटो के आसपास और इसके इलाकों में बुजुर्गों, बच्चों और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को उनके घर के पास ही मुफ्त इलाज दिया जाएगा। हाँ जी बेंद्र भाइयों, मोबाइल ट्रीटमेंट, अच्छा कदम।

हाँ जी बिंदर भाइयों, आज के इंसान की हालत क्या है या फिर आज के न्यूज की हालत क्या है, आइए बताता हूँ एक और खबर। खबर है कि ओटावा में आज कनाडा के ऊर्जा मंत्री और साउथ कोरिया के विशेष दूत के बीच अहम बैठक हुई है। दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाया है। इसका असर क्या होगा? इस समझौते के तहत साउथ कोरिया अगले 30 सालों तक कनाडा से हर साल 14 लाख टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी और भारी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा, जिससे कनाडा इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। है ना बेंदर भाइयों, आज की इंटरेस्टिंग ताजा खबर।

0: ताजा खबर
1: लीजिए। आज की और एक ताजा खबर सुनाता हूँ। ओंटारियो में मौसम का मिजाज, गर्मी और बारिश का अलर्ट। खबर है कि टोरंटो और ग्रेटर टोरंटो एरिया में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। हालांकि तापमान में ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। बहनों भाइयों, आपको सलाह दी गई है, अगर आप ड्राइव करते हैं तो हाईवे पर गाड़ी चलाते समय थोड़ी सावधानी बरते, क्योंकि अचानक शाम के वक्त विजिबिलिटी कम हो सकती है। और टोरंटो ब्लू जेस का आज बड़ा मुकाबला है स्पोर्ट्स के मैदान से। टोरंटो के खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, टोरंटो ब्लू जेस आज शाम मेजर लीग बेसबॉल के रेगुलर सीजन में अटलांटा ब्रेव्स के खिलाफ उनके घरेलू मैदान पर भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि आज की ताजा खबर में स्पोर्ट्स भी अहम है। हाँ जी मित्र भाइयों, आज थी, ये थी आज की ताजा खबर अराउंड द कनाडा। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन। दुनिया भर की खबरें weeklyvoice.com पर।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
7: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.
8: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
9: Another Don Clean with the Don Dux.
10: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
11: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
10: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
11: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
10: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
11: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
10: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
9: Dawn Platinum, the better grease getter.
12: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस. कॉल करें 416-660-8545.
13: हाँ जी मित्र भाइयों, जी वॉइस और हम में आपके दोस्त जतीन. आइए नजर करते हैं अराउंड द इंडिया. आज की पहली ताजा खबर ये है कि भारत और म्यांमार के बीच सुरक्षा को लेकर अहम समझौता. भारत के दौरे पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति यू मीन आंग हाइंग के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की. इस द्विपक्षीय बैठक में म्यांमार ने भारत को भरोसा दिलाया कि उनकी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी उग्रवादी या विद्रोही गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जाएगा. इसका असर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट भारत की सीमा सुरक्षा और स्थिरता के लिहाज से इसे एक बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक कामयाबी माना जा रहा है. हाँ जी, आज की दूसरी ताजा खबर ये है कि आज राष्ट्रपति भवन में जनजातीय कार्य मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की. युवाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. उन्होंने युवाओं से अपनी विरासत पर गर्व करने और शिक्षा और तकनीक के दम पर 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया. आज की एक और ताजा खबर ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में एस्मा यानी कि ESMA आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू करते हुए सरकारी कर्मचारी की हड़ताल पर अगले 6 महीने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी है. इस आदेश के बाद सरकारी विभागों, नियमों, निगमों और दूसरी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर किसी भी तरह के कार्य बहिष्कार या प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बन सकेंगे.
14: आज की
13: आज की एक और ताजा खबर, भारत और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच आज निर्णायक मुकाबला होगा। मिनर भाइयों, तीन मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच टांटन में खेला जाएगा। और आपको बता दें कि पिछला मैच गंवाने के बाद भारतीय टीम इस निर्णायक मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतर रही है। कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंधाना पर फैंस की निगाहें टिकी है। हाँ जी, ये थी अराउंड द इंडिया की ताजा खबर, ये वॉइस, हम हैं आपके दोस्त यतीन। डिटेल जानकारी weeklyvoice.com पर।

हाँ जी मेरे भाइयों, रेड वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन आपके लिए रेड वॉइस फिर से शुरू कर रहा है अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट। बंदर भाइयों, देना होगा आपको जवाब। आप जीत सकते हैं फैमिली पास या फिर सिंगल पास अफ्रीकन लायन सफारीज के। आइए आपको बताता हूँ आज का सवाल। आज का सवाल बहुत ही सिंपल है। अफ्रीकन

0: अफ्रीकन लायन सफारी के पास उनकी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। यही डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
1: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
2: रिट्स फर्नीचर का ये मैसेज जरा ध्यान ना सुनो। सस्ता

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
3: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
2: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
4: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
5: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है। और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
5: डॉक्टर नील गजर, 735 ट्वीन एवेन्यू, स्वीट 16, मिसिसागा। कॉल 289-401-0009।
6: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे FM रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
7: हाँ जी मित्र भाइयों, रेडियो वॉइस और हमें आपके दोस्त यतीन। आइए नजर करते हैं बॉलीवुड पर। बॉबी देओल का पुराना इत्र कांड मनीषा कोइराला के सामने आने से कर दिया था इनकार। एनिमल के अबरार यानी बॉबी देओल ने एक पुराना राज खोला है। उन्होंने बताया कि फिल्म गुप्त की शूटिंग के दौरान उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक इंटीमेट सीन करने से साफ मना कर दिया था। वजह, मनीषा ने ढेर सारे कच्चे प्याज खा रखे थे। भाई बॉबी देओल जमाल कुडू गाने में सिर पर ग्लास रख सकते हैं, लेकिन सेट पर प्याज की बास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मनीषा जी, अगली बार से नो ओनियन ओनली परफ्यूम, समझ गए ना? हाँ। फिल्म कॉकटेल 2 का घासू ट्रेलर आज रिलीज हो गया। इस बार लव ट्रायंगल में शाहिद कपूर के साथ कृति सेनन और रश्मिका मंदाना है, लेकिन इंटरनेट की जनता थोड़ी मायूस है क्योंकि उन्हें सैफ अली खान वाली चुलबुलाहट मिसिंग लगी। शाहिद भाई का तो स्क्रीन पर परमानेंट कंफ्यूजन वाला रोल फिक्स हो गया है। उधर इवेंट में जब रश्मिका ने उनके पहले प्यार के बारे में पूछा, तो उन्होंने शर्माते हुए कहा कि वो विजय देवरकोंडा से हैप्पीली मैरिड है। मतलब रियल लाइफ का सस्पेंस खत्म हो गया।

दृश्यम 3 की शूटिंग हुई पूरी, अब अजय देवगन क्या छुपाएंगे? बिंदर भाइयों, सस्पेंस के शौकीन के लिए बड़ी खबर है। डायरेक्टर अभिषेक ने कंफर्म किया है कि दृश्यम 3 की शूटिंग का काम पूरा हो चुका है। लीजिए भाई, 2 और 3 अक्टूबर को पणजी जाने की सत्संग में पाव भाजी खाने की तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए। इस बार विजय सलगांवकर पुलिस की नाक के नीचे क्या दफनाने वाले हैं, इसके लिए थिएटर की टिकटें एडवांस में बुक करनी पड़ेगी। विराट अनुष्का पहुंचे बाबा की शरण में, आईपीएल जीतने के बाद सीधे वृंदावन। हाँ जी, आईपीएल 2026 की चमचमाती ट्रॉफी जीतने के बाद किंग विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मुंबई लौटने से पहले सीधे वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम आशीर्वाद लेने पहुंचे। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिंदर भाइयों, ट्रॉफी मिली, लकी है और मेहनत भी करते हैं विराट कोहली, लेकिन सोशल मीडिया कहता है कि अनुष्का शर्मा जैसी आध्यात्मिक पत्नी मिली, इसके लिए भी विराट कोहली बहुत ही तकदीर वाले हैं। हां जी बिंदर भाइयों, ये थी बॉलीवुड की बात। डिटेल जानकारी weeklyvoice.com पर। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

And here we meet again on this kili kili dhoopful day. Achha sa tapman, mausam laya hai chehre pe muskan. Achha is dhoop ki bhi na, main dekh rahi thi ki kai kisme hoti hain. Gunguni dhoop, gulabi dhoop, nam si dhoop, teekhi dhoop aur wo गाज सहलाती मुलायम सी धूप, मतलब जैसा हमारा मूड और मन हो वैसी हमें धूप लगने लगती है। अच्छा रंग भी कई होते हैं, जैसे कि सुनहरी, हल्दी से पीली या पेड़ों से छनकी आती वो हरी हरी सी धूप। पर एक बात बिल्कुल तय है कि जाड़े हो या गर्मियां, ये धूप ना हमेशा सुहाती है हियर इन कनाडा, खास इस देश की बात हो रही है यहाँ। सो ऑन दिस धूप की तारीफुल डे, दिस इज स्वाति एंड हैरी ऑन फिल्मी नुक्कड़, सी एमआर 101.3 एफएम पर, सेइंग कि समथिंग ऑलवेज होल्ड्स वैल्यू हियर अबाउट धूप, इसके रूप और गुण सब निराले, जब चमके सूरज चमचम, दिल और बाग, दिल आग बाग कर डाले।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042 6478305042 विजिट filminukkad.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माई रियल्टर के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
2: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल्टर। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 4168437600।
0: My property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: म्यूजिक चार्ट्स पर ये है ऑन टॉप, प्राइवेट स्टूडियो से नुक्कड़ इंडी पॉप।

0: ऑल राइट आप जुड़े हुए हैं फिल्मी नुक्कड़ पर सीएमआर 101.3 है ये, मैं हूँ स्वाति, साथ है पायस्विनी और इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है वो जो आपके लिए दो हफ्ते से बता रही है कि एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट आ रहा है भाई, अभी भी सोच लो क्योंकि ये हाथ से गया तो सोचते रह जाओगे कि कुछ अच्छा सा हाथ से गया। मैं बात कर रही हूँ निकी गांधी जी की। 4164563815 उनका नंबर है, 4164563815। हम बात कर रहे थे दो हफ्ते पहले रोलिंग वुड्स की, जस्ट अ वीक बिफोर रादर। अब वो कह रही थी कि June 1st को लॉन्च होएगा और तो मैंने सोचा कि बात करा दी जाए आपकी कि लॉन्च अगर हो गया है कैसा रहा लॉन्च एंड उसमें अभी हम सब के लिए क्या खास कुछ अलग है या सेम मे बी व्हाट्स द स्टेटस। तो निकी जी वेलकम।
1: थैंक यू सो मच स्वाति जी, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग मी ऑन एयर एंड सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से अ वेरी गुड इवनिंग। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं ब्रैम्पटन के एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के बारे में और जिसके बारे में हम पिछले दो हफ्ते से बात कर रहे हैं, जिसका हम सबको दो हफ्तों से इंतजार था, वो रोलिंग वुड्स टाउन ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की सबसे एक्साइटिंग बात क्या है
0: जी?
1: ये प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है मेविस एंड रेलोसन बुलीवर्ड के प्राइम लोकेशन पे, ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक। बहुत ही प्राइम लोकेशन है और बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन किए हुए ये टाउन हाउसेस जो आजकल की मार्केट में बहुत हाई डिमांड पे डिमांड में चल रहे हैं, बढ़िया लोकेशन के साथ मेजर हाईवेज जैसे कि 401, 407, स्कूल, शॉपिंग, ट्रांजिट, डेली एमिनिटीज के बिल्कुल नजदीक है, यहाँ तक कि कॉलेजेस, हार्टलैंड टाउन सेंटर, शॉपर्स वर्ल्ड, कॉस्को, वॉलमार्ट, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर्स, एवरीथिंग इज वेरी वेरी वेरी कन्वीनियंटली लोकेटेड। मतलब रियल एस्टेट में हम कहते हैं ना लोकेशन लोकेशन लोकेशन, ये लाइन जो है ना वो रोलिंग वुड टाउन पे परफेक्टली फिट बैठ रही है। इसके साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, हमारी प्राइसिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है 669,000 से। जी हाँ, ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा के बॉर्डर पे आपको टाउन हाउसेज मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 669,000 से। इसका मतलब क्या है, आप ब्रैम्पटन का यमी यमी फूड इंजॉय करो, साथ में मिसिसागा में जॉब करो, बढ़िया लोकेशन विद द ग्रेट प्राइसिंग। और हमारी जो क्लोजिंग है वो है अर्ली 2028 की क्लोजिंग और बहुत ही बढ़िया इंसेंट डिपॉजिट है, सिर्फ और सिर्फ $10,000 का इनिशियल डिपॉजिट देकर आप अपना यूनिट बुक कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे 1300 से 1900 स्क्वायर फीटेज तक के टाउन हाउसेज अवेलेबल है, 3 से 5 बेडरूम एंड बाथरूम तक के मॉडल अवेलेबल है। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, इन्वेस्टर हो, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहना चाहते हो, सब के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ अवेलेबल है भाई। सो मेक श्योर डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इसके साथ साथ अब एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट गाइज, बिल्डर जो है बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव दे रहे हैं एंड स्पेशली फॉर द फर्स्ट 20 बायर्स बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव मिलने वाले हैं। और वो कहाँ मिलने वाले हैं, June 6 and June 7 हमारा सेल्स इवेंट होने जा रहा है। June 6 को 11 बजे हमारे डोर्स ओपन हो जाएंगे। सेल्स इवेंट ऑन June 6 11 बजे पहुंचना कहाँ है, ग्रैंड एम्पायर बैंक्वेट हॉल, 100 नेक्सस एवेन्यू। गाइज नोट डाउन दिस एड्रेस, 100 नेक्सस एवेन्यू, ग्रैंड एम्पायर बैंक्वेट हॉल, वहां पे पहुंचिए। फर्स्ट 20 बायर्स को अमेजिंग इंसेंटिव्स मिल रहे हैं ब्रैम्पटन मिसिसागा के, अगर आप टाउन हाउस का सपना है पूरा कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, इन्वेस्टर हो, अपने बच्चों के लिए कुछ लेना चाहते हो, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। प्राइसिंग, फ्लोर प्लान, इंसेंटिव्स, कंप्लीट पैकेज के लिए अभी के अभी हमें कॉल कर लीजिए एट 416-456-3815। आई रिपीट, 416-456-3815। सेल्स इवेंट पे आपको मेरी पूरी की पूरी टीम वहां पे मिलेगी, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आइए हमारे साथ चाय पीजिए, बैठ के फ्लोर प्लान डिस्कस कीजिए। इफ यू लाइक एनीथिंग, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी राइट देयर एंड देयर। हमारी सेल्स उसी दिन स्टार्ट हो रही है, सो अगर आपको कुछ बुक करना है तो भी आ सकते हैं, अगर आप सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो भी आप आइए, देखिए एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। June 6, June 7, 11 to 5, ग्रैंड एम्पायर बैंक्वेट हॉल, कॉल कर लीजिए 416-456-3815। 3815, that is 416-456-3815. Back to you, Swati ji.
0: थैंक यू निकी. तो मैं नंबर तो फिर से बता देती हूँ, 416-456-3815. इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आप ये जितनी भी जानकारी आपने अभी ली है इससे भी ज़्यादा डिटेल में आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं निकी गांधी जी के साथ. बाकी आपको पता ही दिया है इन्होंने कि ग्रैंड एम्पायर बैंकेट हॉल में ऑन June 6th एंड ऑन June 7th सेल्स इवेंट है इनका, और ये नेक्सस एवेन्यू है, 100 नेक्सस एवेन्यू का एड्रेस. आप एड्रेस के लिए भी इन्हें कॉल कर सकते हैं. पहले 20 बायर्स को वहाँ पे अमेजिंग इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं. फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा कुछ है वहाँ पर. तो फ्लोर प्लान्स चाहिए आपको, प्राइसिंग डिटेल में चाहिए, इंसेंटिव्स आपके लिए क्या क्या पॉसिबल हैं, जितने और सवाल हो सकते हैं सबके जवाब आपको वहाँ पे भी मिल सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करेंगे तो भी मिल जाएंगे. 416-456-3815. डोंट मिस दिस. वहाँ जाएँ, देखें, बात करें और तब डिसाइड करें कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं. बट येस, प्राइसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली 66900 और बहुत अच्छी प्राइसिंग है. सिर्फ 10,000 इनिशियल डिपॉजिट दे के आप रजिस्टर या बुक भी कर सकते हैं. एंड येस, लोकेशन लोकेशन लोकेशन जैसे कि निक्की जी ने बताई बहुत अच्छी है. मेविस और रे लॉसन वाला ये समझ लें एरिया है जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है. डिटेल्स के लिए अगेन 416-456-3815. थैंक यू निकी.
1: थैंक यू सो मच. वाले

Well, धूम मचाती आवाज थी अदिति सिंह शर्मा की. धूम मचाले दैट गाना वॉज फ्रॉम धूम. और ये आवाज जैसे कि मैंने कहा अदिति की है और शी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे अलॉन्ग विद द सक्सेस इन हर म्यूजिक करियर. मतलब देखो ना, कुछ भी कह लें इसे, आप लक कह लें, कोइंसिडेंस कह लें या इमेंस टैलेंट कह लें, बट शी हैज वर्कड विद ऑलमोस्ट एवरी म्यूजिक डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री इन दीज पास्ट 12 इयर्स. देव डी से शुरुआत हुई थी अमित त्रिवेदी के साथ, उसके बाद देखो हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ ऑलमोस्ट इन्होंने काम कर लिया है. एंड इतने अच्छे वाले हिट्स दिए, सूरज डूबा है इज वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड ओफो इज वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड देन सैटरडे नाइट्स. देयर बहुत सारे गाने हैं जो उनके इनके काफी पसंद है. पार्टी नंबर्स तो बहुत ही अच्छे गाती हैं. देयर इज डेफिनेटली अ ट्रेंड, ऐसा वो कहती हैं, ट्रेंड चेंज एक हुआ है म्यूजिक इंडस्ट्री में, एक नया एरा आया है नए सिंगर्स के साथ और नया म्यूजिक स्टाइल जनरेट हुआ है. पर लेजेंडरी सिंगर्स का कोई मैच नहीं है, जहां पे मैं एग्री भी कर जाती हूँ कहीं ना कहीं से. देयर कैन नेवर बी वन मोर लता जी, वन मोर आशा जी, वन मोर रफी साहब, वन मोर किशोर जी एंड मन्ना डे जी एंड द लिस्ट इज लॉन्ग. वेल, वी वुड ऑल्सो से दैट देयर वोंट बी एनी अदर अदिति सिंह शर्मा. माई फेवरेट बाय हर इज लाइंड अप नेक्स्ट. अब आप ये मत कहिएगा. Oh, from two states.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353, 647-453-5353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353. Retro in Metro, Nukkad Classic.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: घर कहीं भी लेना हो।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Get smart with Sarab Sabarwal on Filmi Nukkad. तो वाले फंडू से मौसम में, फंडू से शो में एक फंडू सा सेगमेंट आपके लिए फिर है तैयार, जहाँ पे आपकी हम करवाते हैं बात टीम सबरवाल के सौरभ सबरवाल जी से, जिनका अपना खुद का इतना लंबा सा एक्सपीरियंस है और जो लोग ये सेगमेंट सुनते हैं उन्हें पता ही है कि कितनी सारी वो एक छोटी छोटी टिप्स और एडवाइसेस हमें दे जाते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक लेमैन को कई बार पता ही नहीं होती हैं क्या चल रहा है पॉलिटिकल लेवल पर और उसका इम्पैक्ट हम पर एज रेजिडेंट्स, एज एन इन्वेस्टर, एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर क्या हो सकता है और उसके हिसाब से फिर जब हम अपने निर्णय लेते हैं तो वो कितने सटीक हो सकते हैं, वो उनको बहुत सिंपल तरीके से समझा देते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझ जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें वो टेक्निकल टर्म्स कई बार नहीं पता होती, जिनको ये नहीं पता चलता कि इनका इम्पैक्ट हम पे एक्चुअली कैसे पड़ सकता है, वो इतने सरल तरीके से सौरभ जी हमें बताते हैं। तो ये सेगमेंट मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहता है, आई एम श्योर बहुत सारे और मुझ जैसे लोगों के लिए भी होता है। तो सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो ऑलवेज टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस सेगमेंट एंड वेलकम।
4: जी थैंक यू वेरी मच स्वाति जी, एंड बिल्कुल सही कहा। देखिए क्या होता है कि there's so much noise out there, जैसे आजकल एक you know कहावत बोल जाए, there's so much noise out there, mm-hmm. but nobody knows what it is
3: about.
4: Exactly. तो इसलिए it's just something we do at best of our capability, and you know at the end of the day, knowing what you are listening to and understanding what you're hearing, that is what is very key.
3: Yes.
4: So इसलिए you know मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है शो पे आके, you know, just be informative and then not educate but like you know make things simpler, I guess
3: यही सबसे बड़ी बात है कि कई बार हम हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत अंदर से पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, कुछ पल्ले पड़ता है कुछ नहीं भी पड़ता है कई बार, फिर इधर उधर डिस्कशंस में बैठ के समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। पर मैंने ये देखा ज़रूर है कि बहुत सारी जनता ऐसी होती है जिनको उनके मतलब ठीक से नहीं पता होते या उसका इम्पैक्ट मुझ पर एज अ सिटीज़न, एज अ रेजिडेंट, एज अ फ्यूचर इन्वेस्टर क्या है वो नहीं पता होता, क्योंकि कई सारी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट तो हर चीज़ का, हम जब जहाँ रह रहे हैं वो हर चीज़ का इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो थैंक यू अगैन सौरभ जी। आज एक और बात समझना चाह रही थी आपसे, एक बहुत हाई तोबा है एक वर्ड की लेटली और वो है टेक्निकल रिसेशन। तो मैंने सोचा क्योंकि आजकल इसके बारे में बहुत जोर शोर से मुद्दा चल रहा है ये, और बहुत सारे लोग ये घबराए हुए कि अच्छा अब ये कौन सा, इकोनॉमिक रिसेशन सुना था अब ये कौन सा रिसेशन आ गया, कुछ लोग इसे एआई से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग किसी चीज़ की ना टेक्निकल वर्ड आते ही अलग अलग सबके मतलब निकलने लगते हैं। बट आपसे समझना चाह रही थी कि एक्चुअली ये क्या है और अगर मुझ पर एज अ रेजिडेंट तो है ही पर एज एन इन्वेस्टर और फ्यूचर इन्वेस्टर इसका क्या असर आप देखते हैं?
4: जी बिल्कुल, देखिए यू नो द प्रॉब्लम नाउडेज इज कि देयर इज सो मेनी मीडिया आउटलेट्स, देयर सो मेनी सोर्सेज टू गेट योर न्यूज। तो क्या होता है कि यू नो टेक्निकल इज समथिंग, टेक्निकल रिसेशन इज समथिंग आई डोंट रियली एंजॉय सेइंग, क्योंकि या तो ब्लैक है या वाइट है, या हम रिसेशन में है या हम रिसेशन में नहीं है। तो इसलिए नॉट अ वेरी बिग फैन। सॉरी स्वाति जी, मेरे को अपनी आवाज काफी सुनाई दे रही, कैन यू फिक्स दैट प्लीज?
3: आई ट्राई माय बेस्ट। अभी आपको हुआ बेटर?
4: नहीं, इट्स बेटर नाउ, यस थैंक यू।
3: तो
4: सो यू सी सिंपल सा वो है, क्वेश्चन है आर वी इन अ रिसेशन और आर वी नॉट इन अ रिसेशन। It's a very straightforward question. It is either a yes or no. Magar, it is very important to not jump into conclusions very fast. Because recent GDP data jo show abhi kiya hai recently, Canada's economy basically contract hui hai for a second consecutive quarter. And naturally, you know, the standard definition, common rules jaise hai, कि इफ द जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर टू कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स देन बोला जाता है कि हाँ भैया रिसेशन है. सो मोस्ट पीपल जैसे आपने बोला यू नो एक उन्होंने बस ये सुन लिया कि यू नो इट इज टू कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दैट इक्वल्स टू रिसेशन.
3: बट
4: ये एक यूजफुल रूल ऑफ थंब जरूर है बट ये पूरी कहानी नहीं सुनाता है किस्म से.
3: अच्छा.
4: क्योंकि यू सी नाउ थिंग्स नाउ डेज अनदर थिंग इज कि एवरीबडी ट्राइज टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. तो बट दैट डज नॉट नेसेसरीली टेल द होल स्टोरी जैसे मैंने बोला. तो व्हाई दिस कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, देखिए क्या होता है कि हमें समझना बड़ा जरूरी है कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुई. क्योंकि नॉट ऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन दे नॉट इक्वल. अब जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे और 90s में जो क्राइसिस हुए थे दे वर नॉट द सेम. सो फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रडिक्शन सॉरी एक कॉन्ट्रैक्शन कॉज बाय कंज्यूमर्स कटिंग स्पेंडिंग एंड बिजनेस लेइंग ऑफ वर्कर्स इट इज डेफिनेटली कंसर्निंग. और सेम कॉन्ट्रैक्शन कॉज बाय टेम्पररी फैक्टर्स सच एज इन्वेंटरी नहीं है एंड सर्ज चेंज इन सर्ज ऑफ इम्पोर्ट्स जो अभी काफी हुए थे इज मच लेस अलार्मिंग अगर आप दोनों को देखो तो. तो देयर टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों केसेस में है. तो अब कैनेडा में क्या हुआ था, जीडीपी डिक्लाइन हुआ था फॉर यू नो यूनिक फैक्टर्स से काफी लेट 2025 में. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली हुआ था क्योंकि लोअर इन्वेंटोरीज थी एंड दिस वॉज लार्जली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट्स. अर्ली 2026 में जीडीपी स्लिप हुआ था 0.1%.
3: अच्छा.
4: नाउ डिक्लाइन वॉज प्राइमरली ड्यू टू द शार्प इंक्रीज ऑफ इम्पोर्ट्स पर्टिकुलरली गोल्ड इम्पोर्ट्स जो थे. सो इकोनॉमी इजंट रियली शोइंग अ ब्रॉड बेस्ड वीकनेस मेरे हिसाब से दैट वी टिपिकली सी इन अ रिसेशन. मुझे जो दिख रहा है व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. देखिए यूएस के साथ जो हमारी ट्रेड की टेंशन चल रही है दैट इज देयर ऑन गोइंग इम्पैक्ट फ्रॉम जैसे मैंने बोला ट्रेड डिस्ट्रप्शन तो है ही. सप्लाई चेन कुछ हद तक अभी भी है और जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं दैट इज हैविंग अ बिग इम्पैक्ट एज वेल. Because oil prices are gone up, and groceries even more expensive now. So that's what it is. Bottom line ये है कि Canada में हमने Canada भले ही हमने दो quarter negative growth के देखे हैं, but that does not automatically mean that we are in a recession.
3: पर ये indication देता है क्या छोटा सा भी?
4: देखिए अब रूल ऑफ थंब जिसने बना दिया है कि टू कंसेक्यूटिव नेगेटिव ग्रोथ
3: उन्होंने जी ओके.
4: तो अगर आप स्ट्रिक्टली डेफिनेशन पे जाते हैं
3: तो यस
4: रूल ऑफ थंब पे जाते हैं तो यस वी आर.
3: ओके. बट ये आप ये बता रहे हैं कि ये जो रूल ऑफ थंब के हिसाब से तो है लेकिन इट डजंट शो अ क्लियर पिक्चर और ना ही ये एग्जैक्टली वो बता पाता है. आपने जो पुराने रिसेशंस जब जो एग्जांपल्स दिए उसमें बहुत क्लियर सिनेरियो था, इसमें आपने बता रहे हैं कि उतना क्लियर है ही नहीं सामने.
4: जी क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो यू नो व्हिच इज यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. क्योंकि ये मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि आज की इकोनॉमिक एनवायरमेंट में यू नो वी आर लुकिंग एट अ पीरियड ऑफ स्टॉल्ड ग्रोथ. क्योंकि ग्रोथ जो है वो एक किस्म से स्टॉल हो गई है क्योंकि इमिग्रेशन नंबर्स हैव गॉन डाउन एज वेल. एंड जब आप ट्रेडिशनल रिसेशन को देखते हैं तो यू नो ग्रोथ इज स्टॉल्ड, इट्स नॉट गोइंग अप. नाउ दैट डजंट मीन कि देर आरंट एनी चैलेंजेस, देर आर चैलेंजेस इन अ गुड इकोनॉमी एज वेल. मेनी हाउस होल्ड बिजनेसेस जो हैं वो अभी भी यू नो फील कर रहे हैं कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का. बट बेस्ड ऑन द अंडरलाइन डाटा जो हमें प्रोवाइड किया गया है यू नो दिस इज जस्ट अ पीरियड ऑफ स्लोअर ग्रोथ एंड एडजस्टमेंट हो रही है अभी. सो दैट्स व्हाट इट इज एंड नॉट नेसेसरली कि इकोनॉमिक वाइड यू नो वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डाउनटर्न ऐसा कोई बात नहीं है. बट यस वी आर इन अ टाइट स्पॉट it is concerning. But I don't, mere hisab se, this is my personal opinion, I don't really think we are in a quote-unquote recession.
3: तो अगर मैं कहूँ सौरभ जी की क्रिस्टल बॉल आगे के लिए क्या कह रही है प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए, उस पे आप क्या बोलेंगे?
4: जी देखिए, it is never, it is always a graph that goes up and down. अभी कनाडा का समय है, थोड़ा सा टफ. आप लास्ट 8-9 years देखो, तो at one point we were basically the happiest country in the world. We had a booming economy. We had people who wanted to be part of this nation very badly. So every nation goes through that. Dubai, UAE went through that. It's past that and it's back into that little conundrum now, kyunki ab security ki udhar bahut badi concern hai.
3: Right.
4: India went through that for the longest time, 90s, 80s. Mein. Now growth has, but then again, every nation, every country in this world goes through something. Economic downturns, upturns, and that's part of life.
3: That's a part of life. हम सबकी जिंदगी में होते हैं. पर सौरभ जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं, ये जो भी आपने टेक्निकल रिसेशन के बारे में इस वक्त बताया, ये जो भी परिस्थिति इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, इसमें आप एक क्या गोल्डन रूल देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन दिस काइंड ऑफ यू नो सिनेरियोस व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स?
4: जी देखिए, क्या होता है ना कि जब मार्केट हॉट होती है, लोग भीड़ चाल के साथ जाते हैं.
3: जी.
4: और इनफैक्ट आई हैड एन अपॉइंटमेंट अर्ली टुडे वेयर द जेंटलमैन बॉट अ हाउस इन 2021-2022, क्योंकि यू नो बोरोइंग वाज वेरी चीप, इट वाज इजी टू गेट. सो उन्होंने थोड़ा सा overextend karke, they got something. But now, because the market is extremely different, 360 degrees change ho gayi hai, he cannot keep up with the mortgage renewal because it has more than doubled for him.
3: Yeah.
4: So what I'm what I strongly suggest is the golden rule of thumb is always go well below your means. Agar aap maan ke chalo, agar aap bol rahe ho ki yaar maine इन्वेस्टमेंट करनी है 3-bedroom के घर में या 4-bedroom के घर में, टेक अ स्टेप डाउन, गेट समथिंग स्मॉलर, मोर इकोनॉमिकल, जहां पर आपको रात की नींद नहीं, यू नो यू नॉट गोना, हां
3: आप घर भी एंजॉय कर पाएं और अपनी चैन की नींद से और धीरे धीरे आगे चले. तो जितना, यानी कि थंब रूल वही जो आप अक्सर भी बोलते हैं, जितनी चादर है उससे थोड़े कम ही पैर पसारे, उतने भी पूरे ना पसारे.
4: स्पेशली जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, यू नो लाइक वी मीट अ लॉट ऑफ देम, एक चीज मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर फर्स्ट एंड लास्ट होप.
3: यस, वेरी ट्रू.
4: The point is to get inside, get through the door, get your portfolio started. Uske baad, where life takes you, you know, that's where the fun is. Kyunki yahan par ye to nahi hai ki aapne ek ghar liya ya pehla condo liya, investment kari, and you're going to be keeping that forever and ever till you die. So go with something more comfortable, go with something that you are not going to lose your sleep over it financially, mentally, emotionally. So make sure you are in the comfort zone all the time. Chahe, kyunki dekhiye, problem kya hai, pichle 6-7 saal mein jab market badi hot thi, logo ne over expand karke socha ki yaar ye to market kabhi down ho hi nahi sakti, over expand karke multiple units, multiple ghar leke, and same projects got delayed, and then we entered this kind of market. Now they are thinking, yeah, this is going to be a very tough situation for them. So don't get too excited, but just go with something that's very feasible, very manageable. That is, the goal is to last longer.
3: Right, very true.
4: Not ki, you know, just 2-3 saal mein will wrap everything up to for whatever reason. So have fun with it. Be very conservative. But if you are in the market right now, in my

0: देख रहे हो या बिल्डर से देख रहे हो, इट्स अ फैंटास्टिक टाइम टू बाय. इन फैक्ट वी आर गोना डू अ सेमिनार वेरी सून एंड वी विल बी ऑफिशियली अनाउंसिंग दैट एज वेल. और दैट्स द होल पॉइंट कि यू नो व्हाट द मार्केट इज, वेयर इट्स हेडेड, व्हाट टू मेक ऑफ ऑल ऑफ दिस. तो बहुत जल्दी वी विल स्टार्ट एडवर्टाइजिंग एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट स्वाति जी ऑन radio as well.
1: Okay, great.
0: And it will be a very good informative session. Mm-hmm. Jahan par we'll have our entire team, lawyers, mortgage agents, to answer all the questions. What's going on, what to make of it is the biggest answer people are looking for. So we will start advertising that very soon, and we'll talk about it, we'll have our discussions like we do.
1: Mm-hmm.
0: Or so first time buyers, any investors who are interested, looking for, you know, something that's worth their while, looking for some education, some information, this is something that they should really attend. Kyunki hamare last kuch seminar jo humne kiye hain, they've been very, very successful. A lot of positive feedback aaya hai hamare paas. Aur you know, that's really what the point is, to spread information or make sure everybody is educated before they make a decision.
1: परफेक्ट. मुझे लग रहा है ये सेमिनार तो हम सभी को अटेंड करना चाहिए, इतना इन्फॉर्मेटिव रहता है. जब आपका सेगमेंट इतना इन्फॉर्मेटिव रहता है तो सेमिनार तो वाकई बहुत अच्छा होने वाला है. आपसे अप क्लोज होके कुछ समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से हम समझेंगे बहुत सारी चीज़ें अबाउट द मार्केट, अबाउट रियल स्टेट. और कुछ जाते जाते बताना चाहेंगे सौरभ जी?
0: जी बिल्कुल. देखिए, because we see a lot of scenarios where people have overstretched themselves, unhone kafi apni chadar phailai hai jaisa bolte hain,
1: right.
0: So you know, to it is very key ki aap jo agreement sign karte hain,
1: mm-hmm.
0: you make sure you get it checked by the right people.
1: Okay.
0: Real estate agents are not lawyers.
1: Mm-hmm.
0: Lawyers are not accountants.
1: Mm-hmm.
0: Accountants are not lawyers. Accountants, mm-hmm. are not real estate agents.
1: Perfect, very nice.
0: क्योंकि वो conflict of interest हो जाता है.
1: Right.
0: जिसका काम जहाँ पर है, you should get it done by the professionals.
1: Yes.
0: जब आप agreement sign करते हैं, आपको cooling period मिलता है, you get it checked out by the lawyers. क्योंकि real estate agents, brokers are not lawyers.
1: Mm-hmm.
0: We are not allowed to provide any legal advice or taxation advice.
1: Very true.
0: So get the paperwork checked by the lawyers, get your finances sorted out by your accountant, taki aapko pata rahe ki if you are getting into something, you will be comfortable, and you know what are the repercussions, what are the good, bad and the uglies of the decision that you are about to make.
1: Yes.
0: So that is something I would very, very heavily encourage everybody to do.
1: Mm-hmm. तो चलें, आज हमें फिर से टेक्निकल रिसेशन के अलावा दो टिप्स और सौरभ जी ने फिर से दी. एक वही जो वो हमेशा देते हैं कि जितनी चादर है उसे थोड़े कम ही पैर फैलाएं, तो आप आसानी से अपना जो भी आपकी जर्नी रहेगी रियल एस्टेट में वो बहुत स्मूथ रहने वाली है आपकी, और वो ग्रो ही करेगी. सेकेंड टिप अभी जो उन्होंने दी कि जिसका काम उसी को साजे, जो आप रियल्टर से एक्सपेक्ट करते हैं उनसे वही काम एक्सपेक्ट करें, जो काम लॉयर से रिलेटेड है वो लॉयर से ठीक से करवाएं, और जो काम अकाउंटेंट से रिलेटेड है व्हेन यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी और क्लोजिंग अ प्रॉपर्टी, तो आप वो उन्हीं के थ्रू करवाएं. मिक्सअप ना करें, सबका काम उनको उनके एक्सपर्टीज के हिसाब से ही रहने दें. थैंक यू सौरभ जी, अगले हफ्ते फिर आपको पकड़ेंगे एक नए सवाल के साथ.
0: जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच.
1: थैंक यू. ये थे हमारे साथ सौरभ जी, इनका नंबर 6478648844 एंड यू कैन विजिट teamsabharwal.com.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
5: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
4: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
6: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
7: Another Don Clean with the Don Ducks.
8: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
9: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
8: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
9: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
8: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
9: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
8: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
7: Dawn Platinum, the better grease getter.
10: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
11: मगर क्यों? पिताजी नहीं माने क्या?
10: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो। ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो।
11: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
0: सिर्फ CMR at 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR at 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

एंड अ क्विक रिमाइंडर, आज 6:15 बजे के करीब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज ओब्रॉय जी इन द सेगमेंट नंबर्स डू वंडर्स. आपके सवाल जो भी रहते हैं आप अपने स्टूडियो का नंबर हैंडी रखें विद योर क्वेश्चंस एंड डेट ऑफ बर्थ, वो आएंगे तो फटाफट आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की वो कोशिश ज़रूर करेंगे. आप बस पेशेंस रखिएगा, मैं कोशिश करूँगी जितने भी कॉल्स आएँ मैं धीरे धीरे सारे कॉलर्स को ऑन एयर ले पाऊँ. आपको अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो बताइएगा. बट यस, इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ही विल बी विद अस. और नंबर्स टू वंडर्स में हम जानेंगे कुछ नंबर्स की न्यूमरोलॉजी के बारे में भी. जो नंबर्स आपके हैं वो तो आप ध्यान से तो सुनिएगा, ये आपके अपनों के हो सकते हैं वो. और उसके अलावा जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपके अपनों का और उससे रिलेटेड कोई भी सवाल है वो पूछने के लिए भी आप तैयार रह सकते हैं. नंबर स्टूडियो का अगेन 416-593-0055. Stay tuned with us.

Alright, that was from classic Indian love story, Sathiya. काफी हिट फिल्म रही थी, मरी रत्नम की ये फिल्म थी, जिस भी भाषा में बनी उस भाषा में हिट रही। वैसे अगर देखा जाए उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई है ना, वो बहुत सारे जॉनर्स पे बनाई है और सारी अपने आप में एक अटेंशन डेफिनेटली लेती हैं। आप ओके जानू को देख लें, वो तेलुगु में तो बहुत ही हिट रही थी, वो बात और है, हिंदी वाली हिट नहीं रही थी लेकिन नोटिस जरूर हुई थी अच्छी खासी। देन सोशियो पॉलिटिकल ड्रामाज जो इनके रहे हैं, दिल से, बॉम्बे एंड नायकन, वो बहुत ही उम्दा रहे हैं। रिपीट वैल्यू इनकी फिल्मों की आप अक्सर देखेंगे। गुरु एक वन ऑफ दोज फिल्म जो मैं डेफिनेटली मैंशन करना चाहूंगी, पद्मश्री इन्हें यूं ही नहीं मिला, बहुत ही उम्दा काम इन्होंने किया है। एस फिल्म मेकर मनी रत्नम की मैं बात कर रही हूँ, जो कि अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारी उनकी बर्थडे पे एक छोटी सी आशा ये कि बस ऐसी फिल्में अच्छी वाली बनाते रहें।

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
2: अच्छा ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना. अब ऐसे में सोचिए अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके $400 से $500 की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू $2,029, तो कितना अच्छा हो, है ना. यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स. तो भाई ये पॉसिबल है. कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं. 647-453-5353.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 9054608888. दैट्स 9054608888.
5: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ.
7: Let's turn it up.
8: Let's kick it up.
9: Let's shake it up.
10: Let's

0: एज जस्ट डिस्कस्ड हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज उब्रॉय जी. इन द सेगमेंट नंबर्स डू वंडर्स एवरी ट्यूजडे 6:15 वो हमारे साथ जुड़ते हैं टाइम निकालकर और आप लोगों के सवाल लेकर छोटी छोटी अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करते हैं कि कुछ डायरेक्शन आपको न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल पाए आपकी डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन से रिलेटेड जो होती है कि कैसे आप कुछ चीज़ें बदल सकते हैं अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं विद योर नंबर्स. क्योंकि एज पर हिम नंबर्स डू वंडर्स. अब वंडर्स में कई बार वो जो भी आपकी एक ज़िंदगी की दिशा तय करते हैं उसमें भी आप चेंजेस ला सकते हैं वंस यू नो द साइंस बिहाइंड इट. अब वो साइंस जानने के लिए तो एक वर्कशॉप चलाते हैं, ये कुछ एक कोर्स चलाते हैं बड़ा अच्छा सा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे. पर अगर आप वो कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते, सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, तो भी आप इनसे बात कर सकते हैं. और नंबर रहता है अनुज जी का. अनुज जी एक बार नंबर प्लीज बताएं.
1: नमस्कार स्वाति जी, नमस्कार सारे लिसनर्स के लिए. मेरा नंबर है 6473308555. आप इसी नंबर पे मेरे को इस सेशन के बाद में आप मेरे को फोन करिए, नहीं तो व्हाट्सएप कर दीजिए. विद इन 24 आवर्स आई विल रिप्लाई बैक.
0: तो ये चीज में बहुत अच्छे हैं. मैं देखती हूँ अनुज जी इतने सारे कॉल्स ड्यूरिंग द सेगमेंट हमारे पास इन स्टूडियो आते हैं, आपके फ़ोन पे आते हैं, बाद में मिस कॉल्स देखते हैं और सेगमेंट के बाद आप पूरे टाइम फ़ोन पे लग जाते हैं क्योंकि मैं देख रही होती हूँ कि आप तभी के तभी रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं.
1: जी मैम, वो देर यू नो
0: आपके नंबर के साथ जुड़ा हुआ है ये.
1: नहीं, जिसको बोलते हैं जस्टिस Delayed is justice denied. तो मेरी कोशिश होती है कि जितना जल्दी कर सकूं, मगर माफी चाहता हूं कभी कभी थोड़ा बिजी हो जाता हूं तो फिर.
0: अरे नहीं, बहुत बहुत हम्बल है सर. मैं ये कह सकती हूँ वन ऑफ अ वेरी नाइस ह्यूमंस आई हैव मेट इन दिस लाइफ. तो अनुज जी से आप बात ज़रूर करिएगा. उनका नंबर रहता है 6473308555. पर स्टूडियो का नंबर आपके क्वेश्चंस के लिए इस वक्त जब तक वो हमारे साथ हैं रहेगा 4165930055. अच्छा एक बात बताएं, पिछली बार एक साहब ने सवाल पूछा भी था, मेरे जहन में भी कई बार आता है कि जब हम डेट ऑफ बर्थ से आप ट्रेट्स बताते हैं तो ट्रेट्स तो पता चल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से, हम ये भी आप बता पाते हैं कि आपके लिए क्या करियर सूटेबल है, आपके रिलेशनशिप का क्या स्ट्रक्चर रह सकता है, यू नो बहुत सारी चीज़ें आप बताते हैं. लेकिन अगर हम उनको सुधारना चाहें, उन्हें बेटर करना चाहें, उन्हें अच्छा करना चाहें, तो नंबर्स तो चेंज, डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो पाती ना.
1: Absolutely.
0: तो उसके लिए आप कैसे मदद कर पाते हैं बींग ए न्यूमरोलॉजिस्ट.
1: मैम न्यूमरोलॉजी देखिए सबसे पहले 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है. आपकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स्ड है, इसमें कोई शक नहीं है
0: जी.
1: मगर कोई भी ऑकल्ट साइंस होती है वो 3 लेवल्स पे काम करती है
0: जी.
1: पहला होता है माइंड, बॉडी एंड सोल. तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स्ड है जो आपकी बॉडी हो गई, सोल है जो उसके हिडन नंबर्स है, उसकी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, माइंड होता है आपका नाम या फिर जो रेमेडीज करते हैं. जैसे मेरे अपने चार्ट में नंबर 6 जो मैंने पिछली बार बताया था सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है, वो मिसिंग है. तो मैं हाथ में घड़ी पहनता हूँ, आई डू रेमेडीज फॉर इट.
0: ओके,
1: राइट. तो उस तरह से हम काफ़ी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं. और न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं वो होता है नेम नंबर. मेरा अपना नाम देखिए ANUJ, इसकी वैल्यू 13 से 4 आती है. 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देता, लाइफ को अप एंड डाउन करता है. तो मैंने उसमें एक जे एक्स्ट्रा लगा के उसकी वैल्यू 14 से 5 कर लिया, जो मेरा भाग्यांक है तो वो मुझे सूट करेगा ही करेगा. और मैंने ओ को हटा के यू कर दिया ताकि मेरा नेम का टोटल 37 से 1 ही रहे.
0: अच्छा, तो आपको उब्रॉय की जगह नाउ इट इज उब्रॉय.
1: यह आई यूज अ यू इंस्टेड ऑफ अ ओ. प्रोनंसिएशन सेम है तो डजंट मेक नो डिफरेंस, बट मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों बैलेंस हो गया. मैं थर्ड बॉर्न हूँ एंड मेरा भाग्यांक 3 है, मूलांक मेरा 3 है, भाग्यांक मेरा 5 है. तो नंबर 1 मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है.
0: मैं right? आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ.
1: आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो इसलिए मैंने अपने नेम नंबर को 1 पे रखा है
0: जी.
1: अक्सर लोग, स्वाति जी देखिए अपने लकी नंबर को भी ना अपना, जैसे मैं थर्ड बॉर्न हूँ तो अगर मेरे को न्यूमरोलॉजी नहीं आती तो मैं सोचूंगा मेरा लकी नंबर 3 है
0: जी.
1: ऐसा होना जरूरी नहीं है.
0: राइट.
1: अगर मेरा अभी तो 5 है, अगर मेरा 6 होता और मेरा लकी नंबर 3 नहीं हो सकता तो वो मेरे डेस्टिनी नंबर से एंटी हो जाता. तो हमको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें अगर, या न्यूमरोलॉजी के बारे में बेसिक समझ लें तो हमको अपने लकी नंबर्स पता लग जाएंगे और ये जो मिथ है दिमाग में ये टूट जाएगी कि जिस डेट को मैं पैदा हुआ हूँ वही मेरा लकी नंबर है.
0: ओके, तो ऐसा नहीं होता. पहले तो मुझे इसमें 2 टेक अवेज रहे अभी कि जिस डेट ऑफ बर्थ में पैदा होते हैं वही हमारा लकी नंबर हो, ये ना माने आपका लकी नंबर किसी और तरीके से निकालते हैं.
1: बिल्कुल।
0: और दूसरी चीज़ ये कि आपका नाम को बैलेंस करके, उसके नंबरिंग को बैलेंस करके भी आपकी सारी चीज़ें चेंज करी जा सकती हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते, पर नाम की स्पेलिंग में आप कुछ चेंजेस करके यू कैन स्टिल मेक सम चेंजेस फॉर पॉजिटिव इन योर लाइफ। और उनका टोटल कैसे आता है, क्या वो साइंस है, वो तो अनुज जी से आप सीख सकते हैं या जान सकते हैं। नंबर टू कॉल हम 6473308555 और स्टूडियो में आपके सवालों का नंबर रहेगा 4165930055।
1: मैम इसके ऊपर मैं आज की डेट का एग्जाम्पल देता हूँ।
0: जी प्लीज़ दें।
1: ठीक है, आज की डेट क्या है? आज सब रोटी ज़रूर खाइएगा, 2 जून की रोटी मिलेगी।
0: हाँ जी,
1: एक छोटा सा जोक
0: मैं खा के आई हूँ। जी
1: तो आज की देखिए डेट है 2nd, और अगर मैं आज के डेट को टोटल करूँगा तो 9 आता है। तो अगर आज पैदा हुआ बच्चा 2 और 9 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये न्यूमरोलॉजी का सबसे अच्छा यूज़ कर सकते हैं अपने बेबी की डिलीवरी प्लान करने में।
0: 2 और 9 सिजेरियन होती है।
1: मतलब देखिए आज अगर किसी ने अपना डिलीवर कराया बेबी को, 2 और 9 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा जो न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने अपने पूरे करियर में 2 और 9 कॉम्बिनेशन का एक सक्सेसफुल आदमी देखा है, वो भी क्वेश्चन मार्क है, उनका नाम है महात्मा गांधी।
0: अच्छा, क्वेश्चन मार्क क्यों कह रहे हैं?
1: क्वेश्चन मार्क इसलिए कह रहा हूँ मैम कि इतनी एजुकेशन ली, सब कुछ अच्छा किया, मगर कभी उसको यूज़ नहीं किया, दर दर ठोकरें ही खाई हैं। ही सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स, राइट? अगर मैं फाइनेंशियल सक्सेस बोलूँ तो नहीं था, इसलिए एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। फेम बहुत मिला। तो अगर आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो 2 और 9 अगर आप लकी नंबर 2 मान लेंगे, 2 चंद्रमा है, 9 फायर है, इनका मिलन नहीं होता, ये थोड़े से एंटी नंबर्स
0: हैं। चंद्रमा ठंडा मानते हैं
1: एंड फायर है वो, राइट? तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी अगर आप अपने नाम को या अपने सब बिलोंगिंग्स को नंबर 2 पे, जैसे गाड़ी हो गई या हाउस नंबर हो गया, अगर आप 2 पे लेके जाएंगे तो यहाँ पर गड़बड़ है। आपको दोनों नंबर्स का फ्रेंड देखना है, विच अगेन विल बी नंबर 1 हियर।
0: ध्यान रखिए, स्वाति इज योर फ्रेंड नंबर 1। चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलती हूँ। स्टूडियो का नंबर 4165930055 फॉर योर कॉल्स। आपके कॉल्स जो आ रहे हैं, प्लीज हैव पेशेंस विद अस, आई एम गोइंग टू टेक दोज 1 बाय 1 सून।

अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट फिल्मी नुक्कड़ .com।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
3: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
1: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: फायदा उठाए स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 ईयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 ईयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 ईयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैश बैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट amitkhurana.com।
5: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
6: You are tuned into CMR at 5 p.m. with RJ Swati on Filmy Nukkar. It's the free time.
7: ऑलराइट आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, याद दिला दूं, इन द सेगमेंट नंबर्स टू वंडर्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज ओब्रॉय जी। इनसे हम कर रहे हैं नंबर्स टू वंडर्स के बारे में बात कि कैसे नंबर्स हमारी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हैं। अगर आप मैथ से डरते रहे हैं तो अब मत डरें, क्योंकि ये नंबर्स बहुत सिंपल होते हैं और ये तो एनीवे हमारे साथ चिपके लटके हुए हैं, तो इनको हम अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, बस उसी की बात हो रही है यहाँ पर। आपके सवाल मैं ज़रूर लूँगी एक एक करके। तो अनुज जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं क्वेश्चंस लेना शुरू कर दूँ?
8: बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल।
7: चलें फिर हम अनुज जी से बात करते रहेंगे मीनवाइल। तो लेते हैं फर्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी।
9: Hi.
7: Hi. What's your name, question and date of birth? Number, अगर जो नाम नहीं बताना चाहते तो skip कर सकते हैं।
9: Okay. मेरा है, मेरे बेटे के लिए October 6 है उसका birthday 2013। उसकी पढ़ाई के लिए पूछना था।
7: 2013? तो अभी तो 13 साल के बच्चे हैं।
9: हाँ जी।
7: 13 अभी हुए नहीं है।
9: ओ, यानी होने वाले हैं।
7: होने वाले हैं। I don't know, इतने छोटे बच्चे का अनुजी हम देख पाते हैं, क्योंकि आपने एक बार बोला था कि हम 16 साल से पहले नहीं देखते हैं।
8: मैम आप फिर से ऑफलाइन बात कर लीजिएगा, हम इसके नेम को बैलेंस कर देंगे। उसके अलावा हम इतने छोटे बच्चे के लिए ऐसा कुछ करते नहीं हैं, बट इसकी एजुकेशन ठीक है, मैं इस बात को आपको एश्योर कर देता हूँ।
9: ओह थैंक यू। कैन आई आस्क देन माय?
7: हाँ जी प्लीज बताएं अपना डेट ऑफ बर्थ।
9: 12th अप्रैल 1980।
7: एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन मैम?
9: It's only the working that मेरा profession कैसा जाएगा, and if I do the partnership in some business then it's good for me or not?
8: Ma'am, I don't know what business you are trying to do, but Mary, बिल्कुल आपको एक strict advice है कि never ever go into partnership. धोखा खाना, disappointment होना आपका middle name है। End of the day आपको partnership में धोखा मिलेगा। कभी किसी को पैसे उधार मत दीजिए और कभी भी किसी को आप partnership में बिल्कुल मत जाइए।
9: And the job?
8: आप you are a very very pure soul. ऐसे ये 3 and 7 combinations जो होते हैं ना, एक तरफ आगे जुपिटर है, पीछे केतु है, ये बहुत blessed लोग होते हैं। आप अपनी education जिसमें आपने पढ़ाई करी है उसी field में अगर आप काम करेंगी तो आपको बहुत अच्छा success मिलेगा।
9: Oh, okay.
8: Okay. This is a very very if your name is balanced, you're a very very pure soul.
9: If you want my name, I can give you the offline my name.
8: Sure, ma'am. Just text me on 6473308555 or you can call me after the show.
9: Yeah, I have your number. Thank you, Anuji.
8: You're very welcome, ma'am.
7: All right, हम चलते हैं next question की तरफ। Hello, जी।
10: Hello.
7: Hello, what's your question and date of birth? And
10: Hi. Thanks for taking my call. Yeah.
7: Ji.
10: So my date of birth is 22nd September 73.
7: Mm-hmm.
10: And my question is, mera ye, how much will be my this year in the job? Would I change my job or stay in the same job?
8: Just one second.
7: So, naukri same rahegi ya kuch badlav aayega?
8: Ma'am, sir, this year for you is a year of change.
10: Okay.
8: Okay. Definitely, either you'll move houses, you'll move your job, something or the other would change. And change would normally be for good.
10: It's for betterment, right?
8: Yes, it will be for good, it will be for betterment. Thoda green zyada use kariye is saal mein.
10: Green, okay.
8: Okay, now, your favorable color this year is green.
10: My question is, business mein I'm in job, right, for 30 years.
8: Mm-hmm.
10: Business mein switch karun ki job hi karta hun.
8: Bilkul kar sakte hain, sir, aap You know, आपकी thinking बड़ी different है.
10: I know, मैं राहु से रूल
8: राहु से रूल होते हैं ना तो ये राहु जो है ना शैतानी भी देता है मगर साथ साथ में एक out of the box thinking भी देता है. Right? तो आप definitely business में excel कर सकते हैं but avoid shortcuts.
7: हाँ,
8: ठीक है आप कुछ feminine काम करेंगे ना feminine energy से related वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है
10: पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं
8: बिल्कुल ले सकते हैं सर मेरा नंबर अभी अनाउंस हो ही रहा है आप कभी भी मेरे को टेक्स्ट कर लीजिए या फिर आप फ़ोन कर लीजिए मैसेज कर दीजिए जैसे भी आपको सूट करे 6473308555
10: थैंक यू सर
8: यू वेरी वेलकम
7: 8555 थैंक यू राइट हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ
11: हेलो
7: सर नाम बताइए अगर बताना चाहें वरना सीधे डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन
11: My name is Harsh.
7: Ji Harsh, bataye.
11: And my date of birth is 8 November 2001.
7: Okay, 8 November 2001.
11: Yeah.
7: And your question?
11: My question is about my life. Like my currently, like it's, there's a lot of up and downs. Like too stressful to handle and all that. Like will it be like this to hold my
8: life? Harsh. Sorry, I'm cutting you down. You know, the first part you said of your statement was true. Lots and lots of struggle. But then second part, what you said was it is too difficult to handle is not true. If God has given you that kind of life, He's given you strength to bear that as well.
11: Yeah,
8: you're a very hardworking person. You are a very determined, very, very headstrong person. You have all the elements to get over this. Okay? Never ever feel disheartened. You have that strength in you. You have that courage. You have that ability to overcome any hassles. Okay? Mehnat karo. You know, physically, you know, you need to be very, very active. The day you leave your physical activity, that will be the day which will become unbearable then. Okay? As long as you're active, you physically, you know, you're doing labor job. Like, I don't mean ki labor job, but physically, if you're active, you're successful.
11: Okay, sir.
8: Alright, thank you.
7: Alright, हम चलते हैं next caller की तरफ. Hello, जी.
12: Hello.
7: हाँ जी, अपना date of birth और question बताएं.
12: Hi, मेरा नाम जिग्नेश है और मेरी date of birth है 8 December 1983. So मुझे मेरे health, finance and like career के बारे में जानना था.
8: What did you say? 8th or 8?
12: 8 December. 8 December.
8: December 8. Okay. सर जमीन से जुड़ा काम करिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एनीथिंग टू डू विद अर्थ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एनीथिंग इंटीरियर डेकोरेशन एनीथिंग टू डू विद मदर अर्थ वो आपके लिए बहुत अच्छा है योर नंबर्स आर सेम एज नरेंद्र मोदी जी सक्सेस लेट मिलेगा मगर बहुत ज़्यादा मिलेगा
12: या अभी तो मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ
8: चलेगा सर यू नो यू हैव द बेस्ट एबिलिटी टू डू मैनेज योर फंड्स एंड योर टाइम थ्री इडियट्स में बोलते हैं ना कि घड़ी का पूरा इस्तेमाल ही यूजेस अ डिफरेंट वर्ड आई कैन नॉट से दैट ऑन एयर तो वही चीज आपके साथ में भी है मनी मैनेजमेंट भी एंड टाइम मैनेजमेंट भी आपकी एक्सेलेंट है
12: ओके हेल्थ वाइज कैसा रहेगा फ्यूचर में
8: हेल्थ वाइज ओके है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर आएगा बट ठीक है वो दैट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड
12: ओके मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी,
8: थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी
7: और थोड़ा इंतजार।
8: सेम एडवाइस एज लास्ट कॉलर, थोड़ा फिजिकली भी एक्टिव रहिए, अच्छा है आपके लिए।
12: ओके थैंक यू सो मच,
8: यू वेरी वेलकम।
7: चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं हम। हेलो जी, योर डेट ऑफ बर्थ एंड नंबर, नेम प्लीज, नंबर अपना क्वेश्चन भी बता दें। हेलो
13: हेलो,
7: हाँ जी, अपना क्वेश्चन बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, बताना चाहें तो नाम भी बताएं।
13: वाजिद हुसैन है ना?
7: हाँ जी,
13: वाजिद हुसैन।
7: वाजिद हुसैन जी, वाजिद जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है?
13: अपना डेट ऑफ बर्थ दिसंबर 10 1964। दिसंबर 10 1964
7: जी, दिसंबर 10
13: 1964
7: जी जी। और सवाल क्या है आपका?
13: अभी दो साल से मतलब ये कि बिजनेस में ना स्ट्रगल हो रही है ना, तो इतना पैसे नहीं बन रहे।
8: सर बहुत पैसे बनाए हैं आपने, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, उंगलियां बराबर नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
13: नहीं नहीं, शुरू वाला जब 25 साल पहले शुरू किया था उस वक्त तो गिर रहे थे आसमान से, अब नहीं गिर रहे ना।
7: तब गिर रहे थे आसमान, कोई बात नहीं सर, देखिए
8: मैंने बोला पांच उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, थोड़ा सा लास्ट ईयर थोड़ा सा डाउन गया होगा, इस साल से और अगले साल में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी।
13: चलना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
8: कोई बात नहीं है सर इसमें,
7: चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी, हेलो हेलो
14: हेलो, हाँ जी
7: हाँ जी, अपना नाम बताएं और डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन।
14: जी मेरा नाम अनुज है।
7: अनुज, अच्छा ये भी अनुज है, अनुज जी, बस आप सिंगल जे वाले हैं शायद, अनुज जी डबल जे वाले हैं।
14: मैं सिंगल जे वाला हूँ, तो तीन चीजें दो डायरेक्टली कॉमन हुई इनके साथ मेरी, एक इनडायरेक्टली कॉमन है।
7: हाँ, अच्छा,
14: डायरेक्टली कॉमन नाम हो गया, और आज सुबह सुबह 2 जून वाला जोक मैंने खुद से मारा था, चल बेटा चल 2 जून की रोटी कमाने।
7: अच्छा अच्छा।
8: मैंने भी आज सुबह मारा था, ये भी कॉमन है, अभी रिपीट किया।
14: और तीसरी चीज ये है कि पिछले महीने तक इसी स्टूडियो में इसी जगह बैठ के मैं ऐसे ही इंटरव्यू दिया करता था। कार्तिक भाई अगर हैं तो वो पहचान रहे होंगे मुझे।
7: जी कार्तिक नहीं होते शाम की शिफ्ट में, मोस्टली मेरे पास मॉर्निंग की शिफ्ट में होते हैं, बट यस
14: अनुज,
8: पहले अपने पूरा नाम बताइए।
14: अनुज वोहरा, VOHRA।
8: ओके,
7: एंड व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ?
14: 10th नवंबर। ईयर बताना जरूरी
7: जी, पूरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। और 10th नवंबर बोला आपने?
14: जी हाँ, 71।
7: ओके, हम किस चीज का इंटरव्यू करते थे यहाँ पर आपके साथ शाम को?
14: फतेह जी आप नहीं थे, मैं विवेक भाई के साथ था।
7: अच्छा अच्छा, तो दिन में सुबह के समय आते थे आप?
14: हाँ,
7: 11 से 12। अच्छा, और क्या किस चीज का करते थे, जस्ट क्यूरियस?
14: आई एम अ मॉर्गेज ब्रोकर।
7: अरे गुड, चले
8: सर, एक चीज और कॉमन आ गई, आपका डेस्टिनी और मेरा बर्थ नंबर भी 3 है।
7: अरे आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी कर ले सर,
8: आप आ जाइए मेरे पास। आपका कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आज, अपने जवाब आप खुद ढूंढिए।
7: टीम अनुज बन जाएगी।
14: गुड टू नो दैट, धंधा बदल लिया जाए मतलब।
8: ठीक है ना सर, मैं एडवर्टाइज करूंगा, आपकी एडवर्टाइजमेंट वैसे ही साथ में हो जाएगी।
14: क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
8: अच्छा कॉम्बिनेशन है सर जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
14: मैं कभी शाम को एक्चुअली सुनता भी नहीं हूँ शो, और कुदरती ही अनुज जी से बात होनी थी तो शो सुन लिया।
7: चले, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
14: थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
7: चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी।
15: हेलो, गुड इवनिंग अनुज जी।
8: गुड इवनिंग सर।
7: हमें भी गुड इवनिंग कह सकते हैं सर, हम भी बैठे हैं।
15: आपको भी यार,
7: चलिए मुझे दिख रहा है मैं ना कैसे फैन बेस क्रिएट हो रहा है, और मेरे अपने इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं।
15: आप तो सबके चाहते हो ही।
7: चलिए सर, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन।
15: या माय नेम इज प्रफुल्ल।
7: प्रफुल्ल,
15: या डेट ऑफ बर्थ इज 7th ऑफ फेब्रुवरी 1978।
7: 1978 जी, क्वेश्चन बताएं।
15: जस्ट जनरल, ये साल कैसा जाएगा, या समथिंग अबाउट मी, लाइक व्हाटएवर अनुज यू वांट्स टू, लाइक
7: कुछ टिप्पणी कर दे अच्छी सी बस।
8: सर ये साल तो आपके लिए एक्सीलेंट है।
15: थैंक यू।
8: ठीक है, सुबह उठ के थोड़ा सूर्य को जल दीजिए, एक नंबर के फेज में है आप, तो सूर्य आपके बेस्ट फ्रेंड है। बाकी 77 का कॉम्बिनेशन है, वल्दमान पुतिन 77 कॉम्बिनेशन है, जो 30 साल से रशिया पे राज कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ में सर थोड़ा सा जिसको बोले कि बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच है आपकी, आप आज की नहीं सोचते हैं, 5 साल 10 साल बाद की सोचते हैं.
7: इज इट गुड?
8: इट इज गुड.
7: अच्छा ठीक है.
15: That's good, but it's sometimes overthinking also. That is another problem. Yes.
7: That was I was thinking.
8: I was just being nice, trying to cover up this point of overthinking. Overthinking बहुत ज़्यादा ये problematic है, which leads to weak decisions, which leads to disappointments.
15: Yes, sir.
8: तो थोड़ा सा overthinking पे काबू रखिए. बाकी अच्छा है सर. बाकी आपकी details मैं on air नहीं बता सकता.
7: बहुत राज की बातें हैं उसमें सर. प्रफुल जी चले, आप प्रफुलता से कॉल कर सकते हैं बाद में.
8: ध्यान रखिए 3 बार 3 बार 7 आना ना, कभी कभी थोड़े नेगेटिव ट्रेड्स देता है.
7: चले प्रफुल जी मैं नंबर दे देती हूँ आपको, आप ऑफ एयर बात कर सकते हैं 6473308555. चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो जी.
16: हेलो, गुड इवनिंग मैम.
7: गुड इवनिंग सर. उन्होंने अब क्या पहले मुझे बोल दिया.
8: मेक्स यू हैप्पी. हां
7: थैंक यू.
16: नमस्ते
7: जी. अनु जी हां बताएं अपना.
16: मेरा नाम अरुण है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है
7: जैन 27 1976. एंड योर क्वेश्चन सर?
16: मेरा क्वेश्चन तो ये किया लाइक आई वांट टू कीप अ चेंज अ जॉब नाउ लाइक इज द राइट टाइम टू चेंज अ जॉब बिकॉज़ लास्ट टाइम two jobs or offer was given, I was ignored by that.
8: Sir, इस साल तो change मत करिए. Last year आपके पास जरूर opportunity आई होगी, आपने miss कर दी. इस साल में आप change मत करिए. ये this year is not favorable for you.
16: Okay, sir.
8: वो जो मैं बोल रहा था ना shows की starting में, अगर आप you were connected, so आप you are the same.
7: 2-9.
8: ये 9 के ऊपर 2, आपका year अभी 2 का आ गया है. You are a 9 and 6 combination, which is good. Salman Khan is 9 and 6. But unfortunately, सबके साथ होता है तो not unfortunately, but you are in a phase of number 2 right now, चंद्रमा की. तो यहाँ पर थोड़ी 9 के साथ में पटरी नहीं बैठती है. So just be careful this year. जैसे चल रहा है चलने दीजिए.
16: ठीक है.
8: ठीक है.
16: और change of house?
8: Sorry?
7: जी?
16: Change of a house, like
7: घर बदल सकते हैं या घर भी ना बदलें? नौकरी तो नहीं बदलनी.
8: सर अगर जरूरत नहीं है तो मत बदलिए. नेक्स्ट ईयर फेवरेबल टाइम आएगा फिर देखेंगे.
7: कुछ ना बदली, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दें फिलहाल.
16: चलिए
7: चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो जी. हेलो, आपका मुझे बताएंगे नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन. हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं. आप हम लगता है. हेलो हेलो. हाँ प्लीज आप बताएं अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन प्लीज.
17: हेलो
7: हेलो, कैन यू हियर अस?
17: 1975
7: 17th October
17: Bushra.
7: Bushra.
17: First name, I have two names.
7: Bushra. Okay, Bushra is your first name. 17th October 1975.
17: Yes.
7: And what's your question, Bushra?
17: I just wanted to ask.
7: Yeah.
17: What he can say. Current situation में जो भी अभी.
7: अभी किस situation में ये हैं वो आपसे पूछना चाह रही हैं.
8: मैं देखिए.
17: और क्या कर रहे?
8: Life थोड़ी tough है. थोड़ा सा struggle है. Again जैसे वो अभी थोड़ी देर पहले एक हर्ष भाई साहब का फोन आया था. Same आपके लिए भी वही advice है. If God has given you struggles in life, He's given you that strength also. Okay? Hard work again is your strength. Stick on to that. And jitna ho sake thoda, sorry main aise bol raha hu, but kadwa nahi bole kisi ko bhi. That is your biggest, could be problem, what I see in numbers. So just be polite, just be patient, success will come to you.
17: Okay. Thank you so much.
8: There is struggle in life, I see that, but you have that strength also, okay?
17: Okay.
8: All right.
17: And,
7: जी.
17: And anything about marriage?
7: Anything about marriage, you see?
8: आप off air बात कर लेंगे तो अच्छा है. I think marriage तो है आपकी.
17: Okay.
8: Okay. फिर वो पर्सनल डिटेल्स मैं नहीं जाना चाहूँगा, इसलिए मैंने बोला ऑफ एयर बात कर लेंगे।
7: हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऑफ एयर्स निजी शायद डिस्कस नहीं करना चाहते, बिकॉज दे आर टू मेनी पीपल लिसनिंग समटाइम्स। तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि वो छोटा सा जो बताते हैं उसके बाद कहते ना थोड़े को बहुत समझे, आपको डिटेल्स चाहिए तो आप उनसे उनके पर्सनल नंबर पर बात कर सकते हैं 6473308555। हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो।
18: हेलो,
7: हाँ जी, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन।
18: मैं स्वाति जी, नमस्कार।
7: नमस्कार।
18: मेरा नाम है मोहित गुप्ता
7: जी। मोहित जी बताएं।
18: और डेट ऑफ बर्थ
7: अक्टूबर 6, 1981
18: जी। सब कुछ सही चल रहा था, बट दिस ईयर वाज नॉट दैट ग्रेट। किड्स की तबीयत कैसी रहेगी या क्या?
7: बच्चों की हेल्थ, कितने बड़े बच्चे हैं हेल्थ वाइज पूछ रहे हैं तो?
18: दे विल बी टर्निंग 4।
7: ओह, छोटे ही हैं बहुत।
18: ट्विन्स हैं।
7: ट्विन्स हैं, अच्छा, वेरी नाइस। केवल बहुत छोटे बच्चों का तो आपकी न्यूमरोलॉजी से बता सकते हैं अनुजी?
8: नहीं, मैं इनके, मैं मोहित जी के लिए बताऊंगा, बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
18: अच्छा ठीक है, बताइए।
8: मुझे अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं, सजने संवरने का बहुत शौक है, पहना लत्था बहुत सूट करता है।
18: हाँ जी,
8: राइट। और काफी आशिक मिजाज रहे होंगे। एवरीथिंग इज गुड एंड हार्ड वर्क, जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना अच्छा है सर। आगे शुक्र बैठा है, पीछे शनि है, शनि आपको हार्ड वर्क कराएगा ही कराएगा।
18: ओके
8: ओके, बाकी अच्छा ही है, कोई ऐसा सच मेजर कोई इशू नहीं है। 88 है तो मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, पंक्चुअलिटी है, एंड थोड़ा सा लग्जरी की तरफ भी ध्यान है, बच्चे एंड होम एंड फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा है।
18: ओके
8: ओके,
18: जितना भी कुछ बताया सब कुछ अभी तक तो 100% अभी तक लाइफ में सब कुछ सही था 43 इयर्स तक। ये ईयर थोड़ा स्ट्रगल वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जॉब भी है, वो थोड़ा घर में थोड़ा वाटर इशू आ गया तो थोड़ा रिपेयर मेरा पड़ गया और इंश्योरेंस नहीं मिला।
8: ओहो सर, 8 का साल है कुछ,
18: बच्चे की थोड़ी तबीयत खराब थी।
8: आप शनि की फेज में ही हैं अभी, हो सके तो सैटरडेज को थोड़ा शनि मंदिर जाके कुछ कर दिया करें, काले तेल और सरसों का तेल चढ़ाएं, एंड सैटरडेज को वॉशरूम साफ करें, और जितना हो सके गरीबों की हेल्प करें, जो अपने से छोटे तबके के लोग होते हैं ना, जैसे डोमेस्टिक हेल्प हो गया, या उनके उनके साथ में कभी मोल भाव नहीं करें, पे देम वेल, देयर ब्लेसिंग्स आर वेरी गुड फॉर यू।
18: एंड अंटिल ये शनि, ये साल है पूरा
8: सर, न्यूमरोलॉजी में साल टू साल ही चलता है, ये साल आपका शनि का है।
18: ओके
7: ओके, थैंक यू। हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी।
19: हेलो,
7: हाँ जी, बताएं आपका सर सवाल।
19: आई एम दीपक शर्मा। माय डेट ऑफ बर्थ इज 11/5/1972।
8: एंड योर क्वेश्चन सर?
19: सर, आई एम प्लानिंग टू बाय अ होम, आई जस्ट वांटेड टू चेक कि इस साल में हो जाएगा सर।
8: सर, आप भी प्रीवियस कॉलर की तरह यू आर इन अ फेज ऑफ शनि एज वेल। आपके बर्थ नंबर 11/2 से थोड़ा सा एंटी है 8, बट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नंबर 8 इज अर्थ एलिमेंट, शनि इज अर्थ एलिमेंट, तो प्रॉपर्टी ज़रूर बन सकती है, क्योंकि नंबर 2 इज ऑल्सो अर्थ एलिमेंट, एंड आपके पास 5 नंबर जो है वो बर्थ से आ रहा है, सॉरी ईयर से आ रहा है, मे से। सो 258 पूरा होता है, तो दिस विल बी अ बेस्ट टाइम फॉर यू टू बाय प्रॉपर्टी।
19: ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर।
8: ओके, एंड थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखिएगा इस साल में।
19: ओके सर, थैंक यू।
7: ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो।
20: हेलो,
7: हाँ जी, आर डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन।
20: हेलो,
7: हाँ जी, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड क्वेश्चन प्लीज।
20: हेलो,
7: मुझे लगता है उन्हें आवाज नहीं आ रही है हमारी।
20: आ रही आवाज जी?
7: जी, तो अपना डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन बताएं प्लीज।
20: मैंने अपने बेटे के बारे पूछना था। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 20/7/1990। मुझे उसके बारे पूछना था कि उस पढ़ाई में भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। अब 2017 है या पता नहीं 2021 है, तब से वो बीमार, उसको थायराइड की प्रॉब्लम, और पढ़ाई भी उसको बहुत काबिल लायक था, बिहाइंड रह गया है। तो अभी कितने साल उसके बाकी हैं, ये परेशानी। हमें जॉब की एक ऑफर मिली थी, वो भी हालात खराब की वजह से वो उन्होंने कैंसिल कर। अब बताएं कि कितने कब ये सेट होगा?
8: ये साल थोड़ा टफ ही जाएगा।
20: अच्छा,
8: अगले साल से आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेंगी।
20: अच्छा, इसकी शादी कब होगी? शादी है इसके
8: नेक्स्ट टू इयर्स में हो जाएगी मैम, इस साल तो हो भी तो भी पोस्टपोन कर दीजिएगा अगले साल पे।
20: अच्छा नेक्स्ट कितने 2027-28
8: विल बी द बेस्ट टाइम फॉर हिम।
20: अच्छा सर, मैंने आपको लास्ट वीक की कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मिली आपकी कॉल, बड़ी देर तक बैठी रही, अभी भी इतनी देर तक बैठी रही थी, बंद किया थी, बैठी रही थी।
8: माफी चाहता हूँ, बस आप लोगों का प्यार है इसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिली।
20: मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ लेकिन मुझे बेटी की बड़ी परेशानी रहती है, मैं बहुत प्रे करती हूँ, बहुत रात को उठ के बैठी।
8: चिंता मत कीजिए, कुछ भी नहीं करिए, अगले साल में आपको बेटर हो जाएगा।
20: अच्छा, और इसके लिए खुशियाँ हैं और शादी तो 27 में कह रही है 28 में?
8: डोंट वरी मैम, नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा टाइम है इसके लिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रगल है डेट में, वो हो गया ना, अभी टाइम पूरा हो गया, ठीक है।
20: उसकी हेल्थ इश्यू भी बहुत रहे हैं
8: जी, कोई बात नहीं मैम, आप मेरे से ऑफ एयर बात कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे मोबाइल पे, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगा।
20: ठीक हो जाएगी,
8: बिल्कुल हो जाएगी मैम, अभी मेरे को बाकी कॉल लेने हैं, पीपल आर वेटिंग।
7: चलिए थैंक यू सो मच, आप कॉल कर सकते हैं सर को 6473308555। मैं बस एक या दो कॉल्स और लूँगी क्योंकि आई हैव टू रैप अप द शो एज वेल। अगले ट्यूसडे का आप लोग फिर इंतजार कर सकते हैं, वरना उनको उनके डायरेक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर, हेलो जी।
0: हेलो
7: जी, क्विकली अपना डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन बताएंगे।
0: या माय डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 72। द क्वेश्चन इज कैन आई चेंज द जॉब राइट नाउ?
7: सब लोग जहां है वहां से हटना चाह रहे हैं,
8: कर सकते हैं,
7: कर सकते हैं जी,
8: फेवरेबल टाइम है सर इस टाइम तो, विराट कोहली वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है 5 और 6।
7: विराट कोहली वाला कॉम्बिनेशन, वाओ,
8: बस आरसीबी के जैसे आप भी ट्रॉफी उठाइए।
0: परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच,
8: यू वेलकम।
7: चलें नेक्स्ट कॉलर, हेलो जी।
21: हेलो,
7: हां जी, आपका सवाल और डेट ऑफ बर्थ।
21: हेलो,
7: हां जी, आपका सवाल और डेट

0: 21 दिसंबर
1: जी
0: हेल्थ वाइज एंड बिजनेस वाइज
1: हेल्थ एंड बिजनेस फॉर हिज वाइफ
2: थोड़ा सा केयरफुल रहिए दिस ईयर थोड़ा हेल्थ इशू आ सकता है स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम में
0: ओके
2: जस्ट बी अ बिट केयरफुल अदरवाइज यू नो शी इज ऑल्सो प्रीटी ब्लेस्ड अच्छी डेट ऑफ बर्थ है टाइम भी ठीक है बट थोड़े से मल्टीपल सेवन्स आ रहे हैं ये साल भी सेवन पे है तो रेस्पिरेटरी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जस्ट बी अ बिट केयरफुल
0: थैंक यू
2: यू
0: व्हाट अबाउट योर बिजनेस
2: सर एनीथिंग टू डू विद एजुकेशन रिलेटेड काम करिए बहुत सक्सेस मिलेगी
0: ओके
1: ऑल राइट आई एम गोइंग टू टेक अ लास्ट कॉल हेलो जी
3: हेलो
1: हेलो प्लीज क्विकली अपना डेट ऑफ बर्थ
3: माय नेम इज अर्चना एंड माय डेट ऑफ बर्थ इज 30th August 72 एंड माय क्वेश्चन इज आई हैव लॉट ऑफ इश्यूज एट वर्क कैन दैट बी रिजॉल्व्ड
1: काम पे तो वैसे हम सभी को कुछ ना कुछ परेशानियां रहती हैं सर पर क्या इनकी परेशानी दूर होंगी दैट्स अ क्वेश्चन जी आप रेडियो बंद करेंगी रचना जी
2: रचना जी देखिए
1: रचना जी कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर रेडियो हाँ आप सुन सकते हैं चले वो मेरे ख्याल से आप सुन रहे होंगे
2: रचना जी आपने बताया 30th August 1972
1: जी हाँ हाँ जी यही बताया उन्होंने डिस्कनेक्ट हो गया पर आप मेरे ख्याल से सुन रही हैं क्योंकि मैंने उनको बोला था कि डिस्कनेक्ट
2: मैम देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यू वांट टू विन ऑल द आर्ग्यूमेंट्स थोड़ा सा वहाँ पर सब्र कर लीजिए नॉट नेसेसरली यू ऑलवेज वांट टू हैव द लास्ट वर्ड इन अ कन्वर्सेशन समटाइम्स गिविंग अप इज़ आल्सो गुड सारी इश्यूज वहीं से आ रहे हैं थोड़ा सा बोलने पे काबू रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा
1: चलें चलें थैंक यू सो मच और अब हम धन्यवाद देते हैं सर का
2: थैंक यू सो मच एंड
1: अगले ट्यूसडे आपसे फिर मिलेंगे आपका नंबर मैं एक बार फिर दे देती हूँ अब इस सेगमेंट के बाद अगर जो आपको उन्हें कांटेक्ट करना है तो 647-330-8555 पे आप बात अनुज जी से कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट भी है numbersjuventus.com वहाँ से जाएंगे तो नंबर वहाँ भी मिल जाएगा मुझसे भी ले सकते हैं अगर नोट नहीं कर पाए थैंक यू अनुज जी अगले हफ्ते फिर आपसे बात करते हैं
2: थैंक यू सो मच
4: टू एडवर्टाइज विद फिल्मी नुक्कड़ ऑन CMR एट 5 PM योर प्राइम ड्राइव टाइम शो Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
5: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें wayneautogroup.com.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
7: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 ईयर्स फिक्स 4.14%, 3 ईयर्स फिक्स 4.19%, 5 ईयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैश बैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट amitkhurana.com।
2: Another Don clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 pounds की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: ऑलराइट, और आज भी राज कपूर साहब को कर रहे हैं सभी लोग याद। मैं सोच रही थी उनके बारे में हम विस्तार से करेंगे बात, पर फिलहाल तो सेगमेंट इतना लंबा हो गया क्योंकि आपके थे बहुत सारे सवाल, तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं सवाल ले लूं या मैं राज कपूर साहब के बारे में डिटेल में आप लोगों से बात कर लूँ। तो चलें, बात तो हम कल भी कर पाएंगे और कल फिर जुड़ जाइएगा हमारे साथ। फिलहाल तो मैं स्वाति लेती हूँ विदा, छोड़े जाती हूँ आपको इस गाने के साथ। हम मिलते हैं जल्दी, तब तक लव एंड स्माइल्स फ्रॉम मी।

0: 3FM
1: News के लिए मैदान दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात मौतली की रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि हमारे दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी हैं। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी तरीके से मुआहदा किया जाए। उधर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि आबनाए हुरमुस की मुकम्मल बहाली की सूरत में भी ईरान पर से पाबंदियाँ नहीं हटाएंगे। ईरानी खातिमुल अंबिया के ब्रिगेडियर जनरल असदी ने कहा है कि अमरीका के साथ दोबारा जंग नागुजीर है, जबकि पासदाराने इनकलाब का कहना है कि जंगबंदी के दौरान ईरानी फौजी सलाहियतों में इजाफा हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नेतन्याहू को पागल कहने के बाद इसराइल का जनूबी लेबनान पर एक और हमला जिसके नतीजे में 4 अफराद मारे गए। फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा है कि लेबनान के अंदर इसराइली अफवाज की मौजूदगी का कोई जवाज नहीं हो सकता। भारत ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मुश्तरक इलामिये में जम्मू और कश्मीर के जिक्र को मुस्तरद करते हुए इसे अपने मुल्क का अंदरूनी मामला करार दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 10 जून को मुल्क भर से पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद पहुंचकर कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे और विफाकी बजट पास नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। इससे पहले सुहेल आफरीदी अडियाला जेल में कैद इमरान खान से मुलाकात के लिए गोरखपुर नाके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से हरा दिया और आज रात से गैस की कीमत में 8 सेंट फी लीटर इजाफा हो जाने का इम्कान। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
3: खास खास खबरें जुबैर दिन से आपके लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियो से मेरा पता के नंबर 4165930003। गैलेक्सी इंटरनेशनल एक्सचेंज का आज का रेट है 200 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान में किसी भी बैंक में आप डायरेक्ट डिपॉजिट करवा सकते हैं। वहाँ अकाउंट नहीं है, कैश या बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए। gondalbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 200 रुपये। कॉल कर लीजिए 9053060000 9053060000। ट्यूजडे के दिन ऑल द सोल्यूशन से हम सदीक साहब हमारे साथ हुआ करते हैं। राइट विंडो फोर्सेस बानवी से आपको मुलाकात करवाएंगे। एच एम आर वाटर फ्रंट का जो स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम होने जा रहा है 7 जून को, नजमा मलिक साहब हमारे साथ होंगी इन्फॉर्मेशन के साथ। कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल्स आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब। और भी कुछ मौजूद होंगे हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सब कुछ सुनने के लिए हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। मेरे शेर सामिन, हम अपनी पेशानी ज़मीन पर रखते हैं तो जवाब आसमान से आता है। दुनिया ने हमें हमारे अकीदे से मुतज़लज़ल किया है। हम बिला सबब उठ गए, हर वक्त गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, ख्वाहिशात का अंबार लगाते हैं और फिर सुकून कल्ब के ना होने का शिकवा करते हैं। हम क्यों नहीं उस राह पर चलते जो सीधी राह है, जिस राह पर चल के ही सुकून मिलेगा। हम क्यों नहीं उसके हुक्म को मानते। ज़िंदगी का हुस्न नज़रों से ओझल हो गया है। हम अपने अजीम हुस्न हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान को भूल गए हैं। हम अपने रहनुमा, अपने महबूब रहनुमा के नक्शे कदम पर क्यों नहीं चलते, क्योंकि हमने बेशुमार रहबर बना लिए हैं। कसरत कायदीन ने क़यादत के मफहूम को हमसे छीन लिया है। हम जो कुछ ज़ुबान से कहते हैं दिल से उसकी नफ़ी कर देते हैं, फिर वही हाल यानी फिर बुरा हाल हो जाता है। जब हम अपनी सदाकत से महरूम हों तो ये कैसे हो सकता है कि दीन सादिक से हमें सुकून मिले। ये दीन सच्चे इंसानों का, सच्चे इंसानों के लिए है। ये सच का रास्ता है, आज़ादी का रास्ता है, हर झूठ से आज़ादी का रास्ता है, हर तसन्नों से आज़ादी, हर फरेब से आज़ादी, हर ऐसी ख्वाहिश से आज़ादी जो हमें बाद में परेशान करें। हम अपनी परेशानी का इलाज नहीं करते, अपनी परेशानी का बस रोना रोते रहते हैं। हम शिकम को दिल पर तरजीह देते हैं, सुकून कैसे मिले। हम अपने दिमाग को अपना रहनुमा मान लेते हैं, ये दिमाग नींद के गलबे से नहीं बच सकता। एक मामूली ख्वाहिश दिमाग को परेशान कर देती है। दरअसल मालिक का हुक्म ना मानकर हमें बड़े हुक्म मानने पड़ते हैं। 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

0: घर खरीदने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। For booking information, call 905-514-7877. Wohi zaika, wohi lazzat, aur wohi mehmandari. Chai khana, Pakistani Chinese cuisine.
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: Apne makan ki next month closing hai. Kuch soche? टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैकलॉगलन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट brampton appliances.ca।
0: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, इट्स 9058280009। यू लॉग इन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain, 647-321-7444. 444, it's 647-321-7444.

0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।
2: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर और उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रابطے के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। कर्ज इंसान का ज़हनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577। जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577।
3: जी हाँ, 416-671-0577 सिद्दीक साहब के राबते का नंबर है। ऑल दैट सॉल्यूशंस। खुदा खास्ता आप कर्ज के बोझ तले आ गए हैं, बिल्कुल परेशान ना हों, आप इनसे राबता कीजिए। फतवाई लॉन्ग टाइम इसी प्रोफेशन में है और बहुत लोगों की मदद कर चुके हैं और मैक्सिमम कर्ज आपका माफ़ करवा देंगे, आसान उसके एक साथ बनवा देंगे। नंबर अपने पास महफूज करें 416-671-0577। खुश आमदीद कहेंगे सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम अरशद भाई, कैसे हैं आप?
3: बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। कुछ कन्फ्यूजन लोगों के जहन में रहती है, थोड़ा सा हम चाहेंगे ये बताइए कि कौन से कर्जे ऐसे हैं जो माफ हो सकते हैं और कौन से हैं जो किसी सूरत माफ नहीं हो सकते।
4: भाई जो अनसिक्योर्ड कर्जे हैं वो तो सेटल हो सकते हैं, उसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, लाइन ऑफ क्रेडिट, पर्सनल लोन्स, पे डे लोन्स, बिजनेस के लोन्स, या कोई इनकम टैक्स का मामला हो अगर सीआरए के साथ, चाहे वो इनकम टैक्स पर्सनल आउटस्टैंडिंग है, बिजनेस का जीएसटी, पेरोल, वही सब्सिडी आउटस्टैंडिंग है
3: जी।
4: या अगर कोई अपने गाड़ी या ट्रैक्टर फाइनेंस किया था, पेमेंट नहीं कर सके, वापस ले उठा के ले गए वो, या पेमेंट नहीं कर सके, वापस करना चाहते हैं, जब आप वापस कर देते हैं गाड़ी या ट्रक ट्रेलर तो वो जो बाकी बचता है लोन वो अनसिक्योर्ड हो जाता है। लेकिन अगर गाड़ी रखना चाहते हैं
3: तो
4: जो उसपे है वो सिक्योर्ड लोन है, वो माफ नहीं होता। इस तरह घर की मॉर्गेज है, अगर घर रखना चाहते हैं तो वो माफ नहीं होता। इस तरह कोई चाइल्ड सपोर्ट है वो बिल्कुल माफ नहीं होती, स्पाउसल सपोर्ट है बिल्कुल माफ नहीं होती। बाकी अनसिक्योर्ड कर्जे जितने भी हैं वो सेटल हो सकते हैं, उसके लिए कई ऑप्शन अवेलेबल है।
3: 416-671-0577 सिद्दीक साहब के रابطے का नंबर है। अच्छा सिद्दीक साहब, कैसे वर्क कैसे करता है? मतलब मिसाल के तौर पे 50,000 किसी का कर्ज है तो किस हद तक वो माफ हो सकता है और क्या तरीकेकार है, कितनी देर लगती है, इंस्टॉलमेंट्स कितने अरसे की होती हैं?
4: भाई डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन वो चूज करते हैं।
3: अच्छा।
4: और कौन सा ऑप्शन उनको सूट करता है। अगर 50,000 है, कुछ सूरतों में पूरा पे करना पड़ता है, सिर्फ इंटरेस्ट फ्रीज करते हैं हम, कुछ सूरतों में जो है वो माफ हो जाता है काफी सारा कर्जा और बाकी पेमेंट मंथली पेमेंट होती है बगैर इंटरेस्ट के।
3: अच्छा।
4: और मेरे पास जब पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो उसके बाद अराउंड एक वीक लगता है मुझे उस फाइल को तैयार करने में, और उसके बाद हम उसको फाइल कर देते हैं। जब फाइल करते हैं तो क्रेडिट फिर काले आने बंद हो जाती है।
3: ठीक। और मतलब मैक्सिमम कर्ज भी माफ हो सकता है, मतलब 70-80% 90% भी, और मुमकिन है बाज का 30-40 भी ना, मतलब डिपेंड करता है हर शख्स के अपने केस के ऊपर।
4: जी बिल्कुल, ये केस टू केस वेरी करता है, आपके एसेट्स कितने हैं, इनकम क्या है और आपके क्रेडिटर्स कौन से हैं।
3: अच्छा, नंबर नोट करें मोहतरम सामिन, 416-671-0577 416-671-0577 सिद्दीक साहब के रابطے का नंबर। एसेट्स की आपने बात की, लोगों के जहन में ये भी रहता है कि अगर कर्ज माफ़ करवा लिया तो पता नहीं हमारे एसेट्स बचेंगे नहीं, घर बचेगा, गाड़ी बचेगी कि नहीं, RRSPs हैं, RESPs हैं, ये चीज़ें जो है जब आप ये उनका ये बनाते हैं केस का तो ये बच जाती हैं, रहती हैं उनके पास?
4: जी बिल्कुल अर्शद भाई, जितने भी एसेट्स हैं चाहे वो RRSP, RESP, बिजनेसेस, घर, गाड़ियां, जो भी उनके TFSA जो चीजें भी हैं, ये एज इट इज उनके पास रहती हैं।
3: अच्छा।
4: लीगल तरीके से उनको हम सेव करते हुए डेट फ्री करने में हेल्प करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी घर बैठे ये डिसाइड ना करें, क्योंकि लोग आपको इतना डरा देते हैं लोगों को कि वो हमारे पास उस वक्त आते हैं جب کوئی اور آپشن بچتا نہیں ہے تو آپ انیشیل سٹیج میں اس کو سیریس لیں اور دیکھیں آپشن ایکسپلور کریں اور اس کے بعد گھر جا کے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو آگے پروسیڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا.
3: نمبر ٹو کال از کو انفارمیشن لے لیجیے, مشورہ لے لیجیے, دیر مت کیجیے. انٹرسٹ بڑھتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ پورا نہیں کر سکیں, قرض تو وہیں رہے گا, انٹرسٹ ہی صرف بڑھتے رہ جائیں گے. تو آپ کو حکومت قانونی طور پر یہ مدد فراہم کر رہی ہے کہ آپ اپنے قرض کو معاف کروا سکتے ہیں. اس کے لیے کال کر لیجیے 416-671-0577. سدی صاحب کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں آپ؟
4: یہی کہوں گا کہ اگر آپ منیمم پیمنٹس کر رہے ہیں
3: جی.
4: یا ایک کریڈٹ کارڈ کا بل دوسرے کریڈٹ کارڈ سے پے کر رہے ہیں, قرضہ چاہے آپ پہ 10,000 کا ہے, 20,000 کا, 50 کا, لاکھ کا, جو بھی آپ کی سچویشن ہے, جتنا جلدی ہو سکے آپشنز ایکسپلور کریں, اپنا پیسہ انٹرسٹ میں ضائع نہ کریں. میرا نمبر ہے 416-671-0577. اور ایک چیز کی میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کا کیس ریویو کرنے کے بعد لوں گا تو میرے آفس سے آپ کو کبھی بھی کسی قسم کا کوئی سرپرائز نہیں ملے گا. جو آپ سے وعدہ کروں گا پہلی میٹنگ میں اس کے مطابق آپ کا کیس اپروو ہوگا. اور اگر اس میں آپ کا کریڈٹ خراب ہوتا ہے یا آلی خراب ہو چکا ہے تو یاد رکھیں کریڈٹ کو دوبارہ ریبلڈ کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے زیادہ ٹائم بھی آپ کو نہیں لگتا. ہم اپنے کلائنٹ کو انرول کرتے ہیں کریڈٹ ریبلڈ پروگرام میں اور آپ کا کریڈٹ بہت جلد واپس آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ میری ایڈوائس پہ عمل کرتے ہیں. تو اگر لوکیشن پہ وزٹ کرنا چاہیں تو اسکابرو میں ہے مارکم اینڈ الیگزر کے پاس, اٹوبیکو میں ہمارا ہیڈ آفس ہے کپلنگ ریکزل کے پاس, مسیساگا میں ہے ڈکسی 401 کے پاس, اور برمپٹن میں ہے پرملی بویر کے پاس. نمبر 416-671-0577 پہ آپ کال کر سکتے ہیں.
3: 416-671-0577 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ صدیق صاحب, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو, السلام علیکم. خدا حافظ. نمبر نوٹ کیجیے 416-671-0577 416-671-0577. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. اچھا جناب, امریکی صدر ٹرمپ نے فراڈ اور غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں, اور انہوں نے کہنا ہے کہ غیر ملکی غیر قانونی امیگرینٹس اور غیر ملکی فراڈیے امریکی ٹیکس دہندگان کے اربوں ڈالر سالانہ چوری کرتے ہیں. اس کی تفصیل تھوڑی دیر میں بتائیں گے, اس وقت آپ کو لے چلیں گے آج کی شاعری کے سیگمنٹ کی طرف.
5: نہ میں یوں در بدر پھرتا نہ تم خود کو سزا دیتے, یہ اچھا تھا کہ ہم دونوں زمانے کو بھلا دیتے. وہی چہرہ, وہی آنکھیں, وہی چاہت, وہی خوشبو, کوئی گر جھانکتا دل میں تیری صورت دکھا دیتے. کسی کو ہم بتاتے کیا, کسی سے جا کے کہتے کیا, تمہارے پیار کی باتیں ہنسی میں کیوں اڑا دیتے. بہت اچھا ہوا محفل میں رسوائی نہ ہو پائی, کہ رو دیتے خوشی سے ہم اگر تم مسکرا دیتے. یہ بہتر ہے کہ درد اپنا چھپا ہے اپنے سینے میں, مگر نہ ساتھ دشمن بھی بہت اس کو ہوا دیتے. توقع ہی نہیں رکھی کسی سے بھی بھلائی کی, اگر ہم یہ نہ کر سکتے تو منزل بھی گنوا دیتے. چلو لوگوں کو چھوڑو تم, انہیں اب بھول جاؤ تم, بھلی ہے ان کی نفرت ہی, وہ ہم کو اور کیا دیتے. نہ میں یوں در بدر پھرتا نہ تم خود کو سزا دیتے, یہ اچھا تھا کہ ہم دونوں زمانے کو بھلا.

0: ভাবাটিকে কল মিলান
1: Talhawat 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talhawat 647-295-7861.
0: To Talhawati ko call milan.
1: Talhawat 647-295-7861.
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773. कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ते कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं. फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
5: Yes.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: बहुत खुशबू आ रही है खाने में. ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो.
2: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके.
3: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद.
4: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550, 746-5550.
5: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
6: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं. आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं. तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं. इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ. बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्स रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रम्पटन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600. क्वींस मैनर इवेंट सेंटर.
7: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं. और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं. और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है. आज ही मुझे कॉल करें. आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है. 416-570-0157.
8: सिर्फ मॉर्गेजेस. दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार. मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार. मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा. तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं. कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 905-819-1001. लाइसेंस नंबर 12374.
9: क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं. राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं. एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है. स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ. याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए. सम कंडीशंस में अप्लाई. मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200. It's 416-206-3200.
10: जी हाँ, 416-206-3200 राइट विंडो फोर्स के रामते के नंबर हैं. गर्मियाँ हैं और सर्दी हैं, शदीद सर्दी हो, शदीद गर्मी हो और आपकी विंडोज़ पुरानी हो, लीक हो रही हो, ना सिर्फ बिजली का बिल ज़्यादा आएगा आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है. तो ये वक्त है आपके लिए कि आप अपने विंडोज़ तब्दील करवा लें और बहुत ही स्पेशल ऑप्शन हैं. सो भानु जी हमारे साथ हुआ करते हैं, मज़ीद डिटेल उन्हीं से लेंगे. नंबर आप नोट कर लें 416-206-3200. सो भानु जी, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो.
11: थैंक यू बड़ी साहब.
10: अच्छा, ये सर्दी ज़्यादा आती है, गर्मी ज़्यादा आती है, चलें बिजली का बिल तो आए, अब सर्दी में ही रहें तो आपकी सेहत के लिए भी तो अच्छा नहीं है.
11: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्टी साहब। आप असल में जो सर्दी अभी पीछे गई है वो एक ट्रेलर ही था, कहते हैं अब जो आगे आना है वो तो काफी बड़ी मूवी निकल के आनी है अगली सर्दी में।
10: सही।
11: तो जिस हिसाब से इस बार गर्मी की प्रिडिक्शन है तो सर्दी भी काफी अच्छी पड़ने वाली है।
10: सही।
11: तो जिस जिसने ये टेस्ट कर लिया है जो पिछली सर्दी गई है और उनको पता चल रहा है कि भाई विंडो चेंज करने का टाइम है, तो भट्टी साहब आपको पता ही है कि ग्लोबली हालात क्या चल रहे हैं और रेट्स कितनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं, आप वो भी रहने दीजिए, चलिए हम उस बारे में भी नहीं बात करते। मैं ये कहता हूँ कि दो साल पहले अगर आपने घर में अपने फ्लोरिंग कराई है, किचन का या किसी चीज का भी काम कराया है, आपको आज वो रेट नहीं मिलेगा, ये आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, करेक्ट?
10: बिल्कुल सही।
11: तो ऐसे ही विंडोज डोर्स में भी है, जो रेट आपको आज मिल रहा है, और अब अब इस समय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि वैसे भी रेट तो बढ़ते ही है हर साल साल, बट ये जो पेट्रोकेमिकल का इश्यू आ रहा है अब, तो उस चक्कर में क्योंकि हमारी सारी विंडोज डोर्स के अंदर भी पेट्रोकेमिकल यूज होता है, तो रेट ऊपर जाने तय है। तो जिसने सोचा है कि भाई बहुत जरूरी है कराना विंडोज और वो नहीं करा पा रहे हैं, तो डेफिनेटली 416-206-3200 पे कॉल करें, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक फाइनेंशियल स्कीम जिसका बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं।
10: अच्छा।
11: अगर जैसे आप देखें कि एक सेमी डिटैच हाउस है या टाउन हाउस है या डिटैच, अब इसमें ऐसा है कि क्योंकि कई बार डिटैच जो होते हैं उनमें माशाल्लाह 30-35 विंडो भी होते हैं, कई होते हैं जिनमें 20 ही होते हैं, तो आप मेरे को कोर्ट ना, मतलब मैं जब जाऊं तो मुझे पकड़े ना इस बात के लिए, बट मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि जैसे टाउन हाउस है उसकी हम विंडोज अभी हमने चेंज करी थी, तो उनका हार्डली जो है मंथ का $75 पर मंथ के हिसाब से उनके सारे घर की विंडोज हमने चेंज कर दी थी।
10: अच्छा।
11: और जी
10: आपका
11: जी,
10: मतलब ये हुआ कि मतलब आप कुछ डाउन पेमेंट दे दें और उसके बाद किस्तों में पैसे अदा कर दें, इस तरह से होगा ये फाइनेंशियल प्लानिंग?
11: जी, जी, अच्छा। जी,
10: ठीक होगा,
11: बिल्कुल
10: सही होगा,
11: बिल्कुल। और भट्टी साहब जैसा आप बता रहे थे अभी एड में कि 30%, ये हम नहीं कहते हैं, जो एनर्जी स्टार विंडोज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके 30% की बिल की बचत करती है। तो अगर आप मान के चले $400 आपका या $300 फर्नेस का बिल आता है, आप उसको 30% कर लीजिए, $90 बनता है।
10: सही बात है, ठीक
11: ठीक है जी। तो अगर $70 पर मंथ में आपकी अगर विंडो चेंज हो रही है आपकी, वहां भी सेविंग हो रही है।
10: बिल्कुल ठीक है। नंबर नोट करें 416-206-3200। अच्छा, इसकी वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, क्योंकि जाहिर है ये एक ऐसी चीज है जिसको इंसान 10-15-20 साल के तो लगाता ही है ना?
11: जी जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल भट्टी साहब। तो हम देते हैं सर लाइफ टाइम वारंटी।
10: अच्छा, वेरी गुड।
11: जिसके अंदर जी जिसके अंदर ग्लास भी लाइफ टाइम वारंटी है, लॉक्स भी लाइफ टाइम गारंटी है, फ्रेम्स भी लाइफ टाइम गारंटी।
10: सही है। और क्या टाइमिंग क्या है, मतलब अगर आपको कोई मतलब कॉल करता है, एक तो जाके एस्टिमेट आप उसके लिए कुछ पैसे लेते हैं, एस्टिमेट फ्री है, और कितना टाइम लग जाता है?
11: देखिए एस्टीमेट बिल्कुल फ्री है, बल्कि हम आपको एक आइडिया भी दे देते हैं कि फर्ज करिए आपके पास इनिशियल कुछ भी देने को नहीं है, या आप थोड़ा बहुत ही $500,000 ही दे सकते हैं, तो हम आपका वो भी बना सकते हैं प्लान जिसके अंदर आपको 0% पे 3 महीने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, 3 महीने के बाद आपकी पेमेंट शुरू होगी।
10: अच्छा, वेरी गुड हो गया। और कितना मतलब आज किसी के पास जाएं तो विद इन अ मंथ और सो ये हो जाता है, मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह हो?
11: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। अगर कस्टमर रेडी है हम इमीडिएटली लोन अप्लाई कर देते हैं, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 600-650 के ऊपर है तो डेफिनेटली आपका लोन अप्रूव हो जाता है, आपका लोन अप्रूव होने के बाद ही हम काम चालू करते हैं।
10: वेरी राइट जनाब, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि जो आजकल की सूरत हाल है गैस की प्राइसेस वगैरह, तो ये ओवरऑल तमाम चीज़ों पर असर पड़ रहा है, महंगाई ज़ाहिर हो रही है, तो इनकी प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं। 416-206-3200 पे रब्ता कर लीजिए। कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप?
11: बस मैं ये कहना चाहूंगा भट्टी साहब कि देखिए आपने जैसा कहा कि गैस और बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं, तो आप ये भी मान के चलिए कि आज फिर से यही खबर आ रही है कि फिर से कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है उधर, तो गैस के प्राइस अब जो आने वाली विंटर है उसमें इंपैक्ट तो आएगा।
10: आज 8 सेंट बढ़ जाएंगे रात को
11: जी, तो आप देखिए तो, और ऐसा तो नहीं होता कि पेट्रोल ही बढ़ रहा है, गैस के रेट तो फर्नेस का बिल भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा,
10: चीज के ऊपर वो असर करता है, जाहिर है ग्रोसरी पे भी है, बहुत सारी चीजों में। ठीक है
11: जी।
10: और जनाब आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं, इनसे रब्ता कर लें, पूछ लें, डिटेल ले लें, और एस्टिमेट फ्री है, आपके आके बता देंगे आपको कितना आपका खर्चा हो सकता है और किस तरह इंस्टॉलमेंट बन सकती है। नंबर नोट करें 416-206-3200 राइट विंडो फोर्स। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, कोशिश करते हैं अगले प्रोग्राम में से बात करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अभी कॉल कर लें 416-206-3200 416-206-3200। ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.5. 5 جون کا وفاقی بجٹ اجلاس مؤخر کر دیا گیا ہے، نئی تاریخ کا فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے۔ بجٹ پر پیپلز پارٹی کے خدشات ہیں، اسے دور کرنے کے لیے وزارت خزانہ میں حکومت پیپلز پارٹی کے منگل کی رات مذاکرات ہوئے، مگر پیپلز پارٹی خدشات دور نہیں کیے جا سکے۔ پیپلز پارٹی حکومتی ٹیموں کا دوبارہ اجلاس جو ہے وہ بدھ کو دوبارہ ہوگا، کل ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو گلا ہے کہ بجٹ پر انہیں اعتماد میں لے گیا اور 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات ہیں اور اس کو دور کرنے کے بعد ہی بجٹ کا اجلاس ہوگا۔ اگر تب بھی نہیں مانیں گے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے حکومت کے پاس اور مسئلے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر افہام و تفہیم سے کام نہ ہوں تو وہ بعض اوقات جو ہانڈی ہے بیچ چوراہے میں پھوٹ جاتی ہے۔ حکومت بجٹ سے پہلے اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی موجودہ تارمیم کی مخالف ہے۔ اب کیا کیجیے، آپس میں جو ہے تعلقات بھی ہیں اور کچھ کچھ شکایات بھی ہیں، ہوپفلی یہ شکایت دور ہو جائیں گی اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن کچھ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM۔

0: 416. That's 416-625-2636.
1: डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स अब मिसिसागा के बाद स्कारब्रो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट लॉरेंस और ब्रिस्ट माउंट का इंटरसेक्शन 416-757-9999 दांतों की कोई भी बीमारी हो आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 905-232-5678
2: टोरंटो तैयार हो जाओ सबसे ज्यादा इंतजार करने वाली फैमिली एंटरटेनमेंट नाइट इनाम घर कनाडा 28 जून को जिसमें शामिल हैं मजेदार डिनर दिलचस्प गेम बड़े इनाम और लाइव कॉन्सर्ट टिकट सिर्फ $25 10 जून के बाद $39 बुकिंग के लिए अभी कॉल कीजिए 416-710-6777 ई ट्रांसफर इनाम घर कनाडा @gmail.com
1: SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टीमोर हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए ऑयल चेंज टायर चेंज लाइट रिपेयर ब्रेक्स सस्पेंशन मफलर सर्विस इंजन सर्विसेज इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू सिटी ऑफ ब्रामटन शहरियों को 7 जून दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक गेज पार्क ब्रामटन में ईद की खुशियों में शामिल होने की दावत देती है इस फैमिली फ्रेंडली तकरीब में बच्चों के लिए फ्री एक्टिविटीज लाइव कल्चरल परफॉर्मेंसेज दिलचस्प खेल और हलाल फूड के स्टॉल्स होंगे मेहमानों से गुजारिश है कि वो मकामी तंजीमों की सपोर्ट के लिए नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स या नए अनरैप्ड खिलौने लेकर आएं मजीद मालूमात के लिए brampton.ca/eid पर लॉग इन हों अलकरम ज्वेलर्स अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन कड़े झुमके हार और सोने के बेहतरीन सेट्स शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स 3465 प्लैटिनम ड्राइव यूनिट 99 मिसिसागा 9058280009 It's 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aapki guarantee hamari.
3: Apna hum safar global travel and tours.
4: Global travel and tours. Mrs. Sad-

0: उम्रा और ज़ियारत की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555 905-275-3555
1: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga पाकिस्तान के नंबर वन डेवलपर HMR ग्रुप आपके लिए ला रहे हैं कराची में HMR वाटर फ्रंट। इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक्सक्लूसिव इवनिंग संडे 7 जून शाम 5 से 9 बजे तक हिल्टन गार्डनिंग 1870 मैथिसन बुलेवार्ड मिसिसागा में। इस लग्जरी वाटर फ्रंट लिविंग की डिटेल के लिए कराची से HMR की टीम यहां तशरीफ ला रही है। लेट्स कनेक्ट इनोवेट एंड शेप प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। आपको इस एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट में शिरकत की दावत दी जाती है। रजिस्ट्रेशन के लिए HMR waterfrontcanada.com पे लॉगिन हो या मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए नजमा मलिक 6478241485 या फरहान अबसार 6479190645।
2: अच्छा जनाब, HMR waterfront एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कराची में और HMR का नाम ही कामयाबी की निशानी है। इस हवाले से एक प्रोग्राम होने जा रहा है, मीट एंड ग्रीट है और HMR की टीम कराची से यहाँ पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और आप तमाम लोग शिरकत कीजिए। रजिस्ट्रेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी। नजमा मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केटिंग हेड हैं और तमाम हवाले से हम देखते हैं कि मार्केटिंग के हवाले से इनका अपना नाम है यहाँ बहुत, तो मज़ीद डिटेल उन्हें से लेंगे। नजमा साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है?
2: बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। इस बताइएगा, इस प्रोग्राम के हवाले से एक्सक्लूसिव इवनिंग होने जा रही है, क्या कुछ इसमें हो रहा है?

0: लोग किस तरह से शिरकत कर सकते हैं?
1: अच्छा, ये देखिए, एक तो मेन HMR प्रोजेक्ट के राजीव क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान की भी अपनी टीम आ रही है, तो अगर यहाँ पे जो ओवरसीज है पाकिस्तानी है, अगर उनको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है या अपना घर लेना, क्योंकि दिस इज अ वेरी लग्जरी, जैसे हम एज अ कैनेडियन स्टैंडर्ड के लिहाज से पाकिस्तान कराची में वाटर फ्रंट के पास ये प्रोजेक्ट है, तो कैनेडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपको पाकिस्तान में चाहिए तो ये वो इन्वेस्ट प्रोजेक्ट है। सेकेंड टीम खुद आ रही है तो आप इस इवेंट में आए। अच्छा, ये इवेंट सिर्फ इस HMR के लिहाज से नेटवर्किंग इवेंट भी हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारे लोकल पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं, जो कम्युनिटी है, मीडिया है, जो भी है, सब ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक नेटवर्किंग इवेंट है। सेकंड जो टीम आ रही है, आप उनसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि क्या पेमेंट प्लान है, क्या सिक्योरिटी है, क्योंकि मेन चीज जो यहाँ के जो लोगों को होता है पाकिस्तान इन्वेस्ट करने के लिहाज से, तो वो होता है कि सिक्योरिटी है, पेमेंट की ट्रांजेक्शन कैसे होगी, डिपॉजिट कैसे होगा, बाकी ट्रस्ट, तो वो क्वेश्चंस वो डायरेक्ट वो आंसर कर सकते हैं। तो मेरा अगर कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन करो, और अगर कोई भी बिजनेस के रिलेटेड यानी कि बिजनेस पर्सन है तो वो भी एज ए नेटवर्किंग भी ज्वाइन कर सकते हैं ये इवेंट।
0: वेरी राइट। और क्या तरीके का, एक तो नंबर मैं बता देता हूँ, नजमा मलिक साहब का नंबर नोट करें, 647-824-1485 या फरहान अफसार साहब से भी रابطہ कर सकते हैं 647-919-0645। अच्छा, फोन के जरिए भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है या वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगी?
1: हाँ, रजिस्टर आप वेबसाइट थ्रू भी कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और HMR waterfrontcanada.com पे आप जाके साइन अप कर लें, टोटली फ्री इवेंट है।
0: HMR waterfrontcanada.com आप वेबसाइट पे जाके भी रजिस्टर हो सकते हैं, या नजमा मलिक साहबा को आप टेक्स्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, 647-824-1485 रबते का नंबर है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है रजिस्ट्रेशन के, आइडिया होता है कि कितने लोग, क्योंकि फ्री इवेंट है तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो थोड़ा ईजी इनके लिए हो जाएगा, इनको पता होगा कितने लोग आ रहे हैं। अच्छा, आपने जिस वास्ते सिक्योरिटी की बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइसिंग के हवाले से, मतलब ज़ाहिर है वो तो खुद ही सारी डिटेल बताएंगे, मतलब कंपेटेबल हैं, मतलब ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो सस्ती होनी चाहिए ना यहाँ से तो चीज़ें?
1: नहीं, पाकिस्तान में खर्च ज्यादा महंगा चल रहा है यहाँ के, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप देखें ना, क्योंकि वो जिस जगह पे DHA है, वाटर फ्रंट है, और जो कंस्ट्रक्शन है, जो चीजें हैं, वो कनाडा के हाल लिहाज से, कनाडा के लिहाज से तो कम है। जैसे मेरे ख्याल से उनकी जो स्टार्टिंग है, अगर मैं 3-4 करोड़ की जो पाकिस्तानी 1-1.5 लाख क्योंकि लग्जरी के लिहाज से, वाटर फ्रंट के लिहाज से DHA जो भी पाकिस्तान, उनको पता है DHA की क्या वैल्यू चल रही है, तो उसके लिहाज से बेस्ट प्रोजेक्ट है। और मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि अगर हम अब कनाडा से जा रहे हो और आपको कोई ऐसी जगह चाहिए जो आपको कनाडा के स्टैंडर्ड के लिहाज से वहाँ पर लिविंग हो, तो वो स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से HMR पूरा करता है।
0: जबरदस्त है, और जाहिर है इनका नाम है बना और ये जगह भी बहुत जबरदस्त है, तो मेरे ख्याल में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहें वो आए, पहले अपने तसली करें, टीम खुद आ रही है, वहां देखें, उनसे मिलें और जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है उनसे लें।
1: कुछ जाहिर से बताया, आपको जो पाकिस्तान में, सॉरी मैंने कहा जी, जो पाकिस्तान में आपकी फैमिलीज है, उनको वहां पे भी ऑफिस में, यहाँ पे खुद टीम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई हम थर्ड पार्टी या हम इस तरह से नहीं, आपको खुद हम डायरेक्ट मिलवा रहे हैं, ताकि आप जो भी क्वेश्चन है, कोई भी चीजें आप डायरेक्ट करें।
0: और जनाब नंबर नोट कीजिए, वाटर फ्रंट कराची में शानदार प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, 647-824-1485 पे आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। निर्मल साहब, कुछ और ऐड करना चाहें आप?
1: नहीं, इंशाल्लाह मैं सबको इनवाइट करूंगी, जितने भी हमारे पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं, एक नेटवर्किंग के अच्छा इवेंट है कि सारे जो हैं, क्योंकि हमारे नेटवर्किंग इवेंट्स काफी कम होते हैं हमारी कम्युनिटी में, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस, आप आए। पाकिस्तानी टीम जो प्रोजेक्ट के लिहाज से, अगर क्वेश्चन नहीं भी है, अगर नेटवर्किंग के लिए भी आना है तो वो भी ज्वाइन करें।
0: जनाब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ बिजनेसेस, डिफरेंट बिजनेसेस भी होंगे, बहुत लोग होंगे, तो आप नेटवर्किंग के लिए, लोगों से मिलने के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए भी जो है वहाँ जा सकते हैं, जरूरी नहीं किसी प्रोजेक्ट के वाले से जाएं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल कर लें 647-824-1485। बहुत शुक्रिया आपका, फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया,
1: ओके, थैंक यू सो मच,
0: अल्लाह हाफिज। नंबर नोट कीजिए नजमा मलिक साहबा का, अभी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, 647-824-1485, 647-824-1485। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, 24 घंटे हमारे निशात रेडियो पाकिस्तान .fm पर सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV। रियल सेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल तला भट्टी 647-295-7861। घर खरीदना, बेचना, लीज करना, साइन करना, नए प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना हो, कॉल कर लीजिए, अपना ईमेल एड्रेस भी टेस्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में से ऐड कर लेंगे, जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिक उसकी डिटेल आपको मिलती रहा करेगी। डायरेक्ट कॉल कीजिए, अपना ईमेल एड्रेस टेस्ट कर दीजिए, तला भट्टी 647-295-7861, 647-295-7861। लिए चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ, जो पेश करें जनाब जुबैर उद्दीन साहब।
2: You're listening to CMR FM 101.3.